एफएमएंट 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 28वीं तिथि। तदनुसार 19 सितंबर 2026 प्रातः के 5:57 होने को है। मंगल ध्वनि के साथ ही हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएमएंट 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सम्मेलन में राज्य न्यायिक अकादमियों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इसमें 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर कल जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई। पिछले वर्ष के दौरान भारत के कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने चुने हुए जिलों के श्रम बाजार विवरण जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली बार जिला स्तर पर भी श्रम बाजार के विवरण जारी किए हैं। लगभग 57.8% जिलों में महिलाओं की श्रम भागीदारी 40% से अधिक है। सबसे अधिक आबादी वाले 50% जिलों में श्रमिक जनसंख्या दर 37.3 से 76.7% के बीच रही है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी गई थी। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान के उपयोग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित एलआईसी निवेश धोखाधड़ी के मामले में मुंबई स्थित रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, इसके पूर्व अध्यक्ष और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की शिकायत के आधार पर किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल ने आंध्र प्रदेश के डुग्गा राजपट्टनम में नया ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित करने के लिए नेशनल शिप बिल्डिंग और हैवी इंडस्ट्रीज पार्क आंध्र प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमडीएल रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न रक्षा सार्वजनिक उपक्रम है। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आईची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर इस उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आम एयर चैनल है। मीडियम वेव 493.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 6:05 ये समय है चिंतन का, तो आइए सुनते हैं चिंतन।

0: स्वावलंबन का मतलब है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर होने का तात्पर्य है अपने काम स्वयं करना, किसी भी वस्तु जरूरत के लिए किसी और पर निर्भर न होना। आत्मनिर्भर होने से इंसान के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, जिससे दुनिया की किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए इंसान स्वयं अकेला खड़ा रह सकता है। वैसे भी कहा जाता है, दुनिया में आप अकेले हैं, अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे, अकेले ही जीना है और अकेले ही सुख दुख सब पीना है। जब सब कुछ अकेले ही करना है तो इस दुनिया में किसी की निर्भरता क्यों, किसी का बोझ नहीं बनना चाहिए। हमारी रचना यही सोचकर की गई है कि हमें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। हमें हाथ पैर मस्तिष्क हृदय व शरीर के कई अंग दिए गए हैं जो अपना काम स्वयं करते हैं। हमें ऐसा बनाया गया है कि हमें अपने कामों के लिए किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। हम पहले अपने शरीर के लिए आत्मनिर्भर बने। स्वावलंबन बनने की कोई कुंजी नहीं है, अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव करने होंगे जिनकी मदद से दुनिया आपको आत्मनिर्भर कहेगी। आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको आत्मविश्वास को मजबूती से थामना होगा और अपने दम पर अपने देश और अपने समाज में अपना नाम करना होगा। आत्मनिर्भर होने का मतलब ये नहीं कि आप पैसे वाले हों या आपका बहुत नाम हो। किसी भी काम के लिए दूसरों की ओर ना देखें। स्वावलंबी बनने के लिए अपने ऊपर आश्रित होना होगा। जब हम स्वयं स्वावलंबी बनेंगे तो समूचा देश विकास करेगा और हम विकासशील नहीं विकसित देश के नागरिक कहलाएंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: इस गीत के साथ ही वंदना कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं जयपुर अजमेर का आमेर चैनल। सवेरे के 6:30 होने को है। ये समय है श्री रामचरित मानस गान का। आज इस श्रृंखला की हम आपको सुनवा रहे हैं कड़ी संख्या 186। स्वर श्रीकांत पारगांवकर का है, संगीत सतीश भाटिया का।
1: अभी आप आकाशवाणी के जयपुर केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएमएंट 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:30 होने को है। मंगल ध्वनि के क्षमा करें, अब आप सुनेंगे रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

अवध के राज सिंहासन पर बैठना अस्वीकार करते हुए भरत ने अपने हृदय में धधकती जिस ज्वाला और पश्चाताप की व्यथा कथा गुरुजनों को सुनाई, उससे सबके हृदय में मर्मांतक पीड़ा के साथ एक आनंद का संचार भी हुआ। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से सने भरत के प्रिय वचन सभी के हृदय में दहकती राम विरह की ज्वाला को शांत करने वाले सिद्ध हुए। सबने भरत को मुक्त कंठ से श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मानकर उनके वन जाने के लिए सहमति प्रकट की। भरत के इस निश्चय से जैसे शोक सागर में डूबी अयोध्या नगरी को एक सहारा मिल गया। सबके हृदय में ऐसे आनंद का संचार हुआ जैसे मेघों की गर्जना से चातक और मोर आनंद विभोर हो उठते हैं। भरत का जीवन धन्य है, इस उद्गार के साथ सभी उनके शील और स्नेह की प्रशंसा करते नहीं आघाते।

अभी आप रामचरितमानस का उनका आज का प्रसंग सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएमएंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज के शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय।

हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा में अब से थोड़ी ही देर में ठीक 6:45 पर आप सुनेंगे खेती नी बात, 6:50 पर आप सुनेंगे आदिवासी लोक संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे मोहनलाल और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन। प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे वातायन। वातायन के अंतर्गत आज आप सुनेंगे देहदान एक संकल्प विषय पर डॉक्टर नीतू पुरोहित से प्रीति यादव की बातचीत। प्रातः 8:15 पर आप सुनेंगे कुछ दिल से कार्यक्रम। राजस्थानी लोक संगीत का प्रसारण समय होगा 8:45। प्रातः 9:10 और 11 आप सुनेंगे सुगम संगीत। 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। प्रातः 7:30, 9:30 और दोपहर 12 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम।

हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। शाम 7 बजे किसान श्रोताओं के लिए प्रसारित होगा उनका अपना कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम।

रात्रि में 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण की डेली हाइलाइट्स। उसके बाद आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 6:45 होने को है। लीजिए प्रस्तुत है खेती निवाद।
1: कार्यक्रम हम बरवावरा सब भाई ने सौराडियो वालजी भाई ने राम राम किसान भाइयों देखो सौरव पूरो पर तो कोई ना अपने संजय वरना टाइम में एक बीजाना विचार मलावी ने बीजे दाड़ा हूँ काम करवो है एना बारा में अपने विचार भी करा हाँ ने देखो आज सौरव पर बात करी रहा हाँ कि अपने जो दलहनी खरीफ फसलें हैं एना में आ अंतिम समय में खरपतवार ने कीट नियंत्रण बारा में बात करी रहा हाँ। किसान भाइयों देखो खरीफ मौसम में जो उगाड़ी दवा वाली फसलें हैं दलहनी फसलें जिनके मूंग है उड़द है अरहर है आना में प्रभावी खरपतवार नियंत्रण हारू निराई गुड़ाई ने रासायनिक उपायनों समय ऊपर उपयोग करवो जरूरी है। खरीब दलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण ना मुख्य उपाय जिनके यांत्रिक नियंत्रण आ किसान भाइयों शुरुआती दौर में फसल हारू बेहद संवेदनशीलताएं हैं इसलिए आना दौरान खेतर में खरपतवार थकी मुक्त राखू जुए फसल उगवा बाद भी निराई गुड़ाई करता थका रहे वो जुए जरूरत पड़वा बाद भी अपने भाइयों ने बराबर जितली बार फसल पाकी ने न आवे इतली बार आ खरपतवार नियंत्रण नो काम कीट नियंत्रण नो काम अपने करतो तो कोरे उजुए एक है किसान भाइयों रासायनिक नियंत्रण भी अपने करी सका ने आप करी भी रहा थका हो किसान भाइयों देखो रासायनिक नियंत्रण यदि मजदूरों की कमी हो तो अनुशंसित खरपतवार नाशक जिम के पेंडा मेथलिन ने सही मात्रा नो प्रति एकड़ ना हिसाब थकी नमी युक्त खेतर में छिड़काव करवो जुए। खड़ी फसल में खरपतवारों ना कुछ अलग प्रभाव भी रहे हैं जिनके कुछ चोड़ी ने संकीर्ण पत्ती वाला खरपतवार ने अना आधार पर कृषि विशेषज्ञों ने सलाह थकी दवानों प्रयोग करवो जुए तो किसान भाइयों आना तरीके थे कि अगर आपने खरपतवार है कीट नियंत्रण नो आपने सही प्रबंधन कर ला तो किसान भाइयों कुल मलावी ने अपनी फसल जो है ये आपने बसावी शका ने इनी उपज जो है आपने जो मेहनत करी रहा तो इनी उपज जो है ये आपने पूरी पूरी लई शका। किसान भाइयों प्राचीन काल थकी भारत में उगाड़ी जावा वाली जो आप फसलें हैं जिनके दलहनी फसलों नो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है किमके आ खावा में काम आवे हैं दाल वाली जो फसलें हैं जिन्हें आपड़े दलहनी फसलें कह आ फसलें आमतौर पर प्रोटीन ना मुख्य स्रोत भी माना है। दलहनी फसलों ना अंतर्गत मुख्य रूप थकी अरहर मूंग ने उड़द ने खेती थकी किसान भाई काम करे हैं ने इन्हें थकी आपड़ी आमदनी भी सुदृढ़ करे हैं। अरहर नी फसल में फली बेदक मक्खी फली बग आवा तरह ना कीट हारू नियंत्रण हारू मोनोक्रोटोफास या पसे डाई मेथोएट ना छिड़काव थकी किसान भाई अपनी फसल ने बसावी सके आने अलावा भी किसान भाईओ ब्लिस्टर बीटल पीला मोजेक रस चूसवा वाला कीट जिम के सफेद मक्की है चेपा है तेला है आवा कीट थकी नुकसान थवा थकी अपने ऑक्सी डेमेटान मिथाइल 250 मिलीलीटर या पसे मेलाथियान 375

0: माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 6:50 होने को है। आइए अब सुनते हैं आदिवासी लोक संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे मोहनलाल और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन।
1: आज का विषय है

0: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट।

0: इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: अभी आप आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत मोहनलाल और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: अभियान आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत मोहनलाल और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है वातायन। वातायन में आज आप सुनेंगे देहदान एक संकल्प। इस विषय पर डॉक्टर नीतू पुरोहित से प्रीति यादव की भेंट वार्ता।
1: आज का विषय है देहदान एक संकल्प। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर नीतू पुरोहित, जो सह आचार्य एवं विभाध्यक्ष शरीर रचना विज्ञान विभाग राजकीय मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा में कार्यरत है। नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: नमस्कार प्रीति जी।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि बहुत से लोग अंग दान और देह दान को एक ही समझ लेते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है?
2: ये बहुत ही अच्छा सवाल है प्रीति जी, और बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा भ्रम उत्पन्न करता है। अंग दान में हम प्राय जो ब्रेन डेड घोषित मरीज होते हैं, उनका हृदय, गुर्दा, यकृत और भी अन्य अंग निकालकर जीवित मरीज में प्रत्यारोपित करते हैं, जिसका उद्देश्य किसी की जान बचाना होता है। जबकि देहदान इससे अलग है। इसमें मृत्यु के बाद पूरा शरीर मेडिकल कॉलेज के शरीर रचना विभाग यानी एनाटॉमी डिपार्टमेंट को शिक्षा एवं शोध के लिए सौंपा जाता है, जिसका उद्देश्य होता है जान बचाने वाले चिकित्सक तैयार करना। सरल शब्दों में यही कहूंगी कि अंग दान एक जीवन बचाता है और देह दान जीवन बचाने वालों को जन्म देता है। एक व्यवहारिक बात भी ध्यान रखिए, यदि बहु अंग दान हो चुका हो तो उसके बाद देह दान संभव नहीं होता, क्योंकि वह देह अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं रह जाती। परंतु केवल नेत्रदान हो जाने के बाद हम देह दान की प्रक्रिया स्वीकार करते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अब आप ये बताइए कि देह दान क्यों करना चाहिए?
2: जैसा कि प्रीति जी मैंने आपको बताया कि देह दान से जान बचाने वाले चिकित्सक तैयार होते हैं, और चिकित्सक का सबसे पहला गुरु कौन होता है, यह प्रश्न जब मैं अपने विद्यार्थियों से पूछती हूँ तो उत्तर यह रहता है, वह देह जिस पर पहली बार हमने शरीर रचना को समझा। MBBS के पहले वर्ष में विद्यार्थी शव विच्छेदन यानी डिसेक्शन के माध्यम से मनुष्य के शरीर को अपनी आंखों से देखता है और अपने हाथों से समझता है। किताबें, मॉडल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वे सब सहायक हैं पर विकल्प नहीं, क्यों कि हर मनुष्य का शरीर एक जैसा नहीं होता। नसों का रास्ता, धमनियों का बंटवारा, अंगों की स्थिति हर देह में थोड़ी अलग होती है, और यही विविधता विद्यार्थियों को सच्चा ज्ञान देती है। और इसके अलावा अनुभवी शल्य चिकित्सक भी नई शल्य तकनीक के पहले सौ पर ही सीखते हैं, मरीज पर नहीं। और सच्चाई यह है कि हमारे देश में आज भी शरीरों की भारी कमी है। कई संस्थानों में एक देह पर 20 से 25 विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ता है, इसलिए एक व्यक्ति को देहदान सैकड़ों डॉक्टरों के प्रशिक्षण का आधार बन जाता है, और उन डॉक्टरों के हाथों बचने वाले मरीजों की संख्या तो अनगिनत है।
1: देहदान कौन कर सकता है?
2: ये भी बहुत अच्छा सवाल है। प्रायः ये देखा गया है, पता ही नहीं होता देहदान कौन कर सकता है और उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना होता है। इसका उत्तर यह है कि देहदान लगभग कोई भी कर सकता है। संकल्प लेने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 से अधिक का भारतीय नागरिक होना और स्वस्थ चित्त से सहमति देने में सक्षम होना पर्याप्त है।
1: यदि कोई देहदान का संकल्प लेना चाहे तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी?
2: प्रक्रिया बहुत सरल है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता। अपने निकटतम मेडिकल कॉलेज के शरीर रचना विभाग में जाइए, देहदान का सहमति पत्र यानी डोनेशन फॉर्म लीजिए, और संस्थान की वेबसाइट से भी ये फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म में आप जितना बताया जाता है विभाग में वो सभी कार्यवाही करके दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाइए, और कम से कम एक निकट परिजन के हस्ताक्षर लीजिए, साथ में एक पासपोर्ट आकार का फोटो।

0: पहचान पत्र या आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र संलग्न कर दीजिए। विभाग आपको एक डोनर कार्ड दे देता है जिसे आप अपने पास रखिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कागज नहीं बातचीत होती है, आप अपने परिवार को अवश्य बताइए, क्योंकि मृत्यु के बाद अंतिम सहमति परिजनों को ही देनी होती है। यदि परिवार सहमत नहीं होगा तो संकल्प के बावजूद देहदान नहीं हो पाएगा, इसलिए संकल्प के साथ साथ परिवार को समझाना भी उतना ही आवश्यक है। प्रीति जी,
1: जैसे कि आपने प्रक्रिया समझाई, तो अब ये बताइए कि देहदान किसकी स्वीकार की जाती है और किसकी नहीं?
0: स्वीकार वही देह की जाती है जिसमें मृत्यु स्वाभाविक कारणों से हुई हो, शरीर सुरक्षित अवस्था में हो, निर्धारित समय के भीतर विभाग तक शरीर पहुंच जाए और परिजनों की लिखित सहमति उपलब्ध हो। अब मैं ये बताना चाहूंगी कि किन स्थितियों में देह स्वीकार नहीं की जाती, जैसे कोई संक्रामक बीमारी हो, HIV, हेपेटाइटिस बी सी या सक्रिय क्षय रोग, सेप्सिस, ग्रेस गैंग्रीन, टिटनस, ऐसी बीमारियों में हम देह स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ संस्थान कैंसर और कोविड की स्थिति में भी देह नहीं लेते। कारण भावनात्मक नहीं बल्कि यह है कि किसी देह विद्यार्थियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा भी बन सकती है। दूसरा, जो भी मेडिको लीगल केसेस होते हैं, यानी कि सड़क दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या, जलने या डूबने से कोई मृत्यु, इसमें पुलिस या पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अनिवार्य होती है, ऐसी देह भी हम नहीं लेते हैं। तीसरा, जिस देह का पोस्टमार्टम हो चुका हो। चौथा, जिसमें अत्यधिक क्षतिग्रस्त या विकृत देह हो, या वो देह जो कॉलेज में बहुत देरी से पहुंची हो, या फिर बहुत बार अंगदान हो चुका हो।
1: जी बिल्कुल। अब यदि मृत्यु हो गई है तो उसके बाद परिजनों को तुरंत क्या करना चाहिए?
0: हाँ, समय इस पूरी प्रक्रिया का सबसे संवेदनशील कड़ी है। मृत्यु होते ही यथासंभव आधे घंटे के भीतर संबंधित मेडिकल कॉलेज के विभाग को सूचना दे देनी चाहिए। सामान्यतः हम देह मृत्यु के 6 से 8 घंटे के भीतर विभाग तक पहुंचा देते हैं या पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद उत्तक खराब होने लगते हैं और देह परिरक्षण के योग्य नहीं रहती। यदि किसी कारण से देह देरी हो रही हो तो देह को वातानुकूलित कक्ष या शव पेटिका में रखिए एवं गर्मी से बचाइए। जो दस्तावेज साथ चाहिए होते हैं वे चिकित्सक द्वारा जारी मृत्यु का कारण प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक और निकट परिजन के पहचान पत्र, परिजनों का लिखित सहमति पत्र आवश्यक है। यदि मृत्यु अस्पताल के बाहर हुई है तो पुलिस का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आवश्यक हो सकता है।
1: अब डॉक्टर साहब, ये बताइए कि देह सौंप देने के बाद उसके साथ क्या होता है? परिवार के मन में यह प्रश्न सबसे ज्यादा रहता है।
0: ये प्रश्न प्रीति जी स्वाभाविक है, क्योंकि इसका उत्तर परिवार वालों को बहुत अच्छे से आश्वस्त करेगा कि देह विभाग में पहुंचते ही उसका परिरक्षण किया जाता है, जिसे हम एम्बाल्मिंग कहते हैं। ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हम धमनियों के माध्यम से फॉर्मलिन को बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं, जिससे देह वर्षों तक सुरक्षित रहती है। इसके बाद वह देह शिक्षा और शोध में उपयोग में लाई जाती है। हमारे विद्यार्थी डिसेक्शन हॉल में प्रवेश से पहले प्रार्थना करते हैं प्रीति जी, और देहदानी को प्रथम गुरु कहकर संबोधित करते हैं, और उपयोग पूरा हो जाने के बाद अवशेषों का विधिवत और सम्मान पूर्वक अंतिम निस्तारण किया जाता है। एक बात परिवार को पहले ही जान लेनी चाहिए प्रीति जी, कि प्राय अस्थि या भस्म परिजनों को लौटाई नहीं जाती है।
1: अब समाज में इस विषय को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं और झिझक भी है, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगी?
0: प्रीति जी, यही सबसे बड़ी बाधा है। इन्हीं भ्रांतियों और झिझक के चलते बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और सच कहूं तो कानून या प्रक्रिया बाधा नहीं है, बाधा भावना और भ्रांति है। सबसे आम आशंका है कि अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा, यह सही नहीं है, परिवार अंतिम दर्शन नहीं कर सकता, माल्यार्पण कर सकता है, अपनी धार्मिक विधि भी पूरी कर सकता है, और यह सब देह सौंपने से पहले हम पूरी तरह संभव करवा देते हैं। दूसरी आशंका ये रहती है कि मोक्ष मिलेगा कि नहीं। मैंने विनम्रता से आपको ये प्रीति जी कहना चाहूंगी कि हमारे शास्त्र और स्वयं महर्षि दधीची, राजा शिवी, दानवीर कर्ण का उदाहरण देते हैं, जिस परंपरा में देह का दान ही सर्वोच्च त्याग माना जाता है, उसमें देह दान को प्रीति जी अशुभ नहीं कह सकते। तीसरी आशंका जो आम जनता में और परिवार में होती है वो ये कि शरीर के साथ अनादर होगा। मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि डिसेक्शन हॉल में जितना अनुशासन और आदर होता है उतना कहीं कम ही देखने को मिलता है। और चौथी बात ये कि परिवार में मतभेद, इसका एक ही उपाय है, जीते जी खुले मन से घर वालों से बात कर लीजिए और अपनी इच्छा लिखकर दे दीजिए।
1: जी बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है। और अंत में आकाशवाणी के श्रोताओं और विशेषकर युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगी?
0: मैं बस इतना कहना चाहूंगी, मृत्यु निश्चित है, ये हमारे हाथ में नहीं, परंतु मृत्यु के बाद भी किसी के काम आते रहना, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। प्रीति जी, युवाओं से मेरा विशेष आग्रह है।

0: यह विषय अशुभ नहीं है। अपने माता पिता से, अपने परिवार से इस पर खुलकर बात कीजिए। समाज से आग्रह है कि जो परिवार यह साहसिक निर्णय लेते हैं उनका सार्वजनिक रूप से सम्मान कीजिए, क्योंकि उनके लिए यह क्षण सबसे कठिन होता है। बस यही एक मेरा संदेश है जो मैं युवाओं को देना चाहती हूँ।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने हमें देहदान संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप वातायन के अंतर्गत देहदान एक संकल्प विषय पर डॉक्टर नीतू पुरोहित से प्रीति यादव की बातचीत सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 7:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें आशा भोसले, अमिताभ बच्चन और शरद कुमार की थी। आनंद बख्शी के बोल थे, आर डी बर्मन की तर्ज थी।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
0: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है काम करना बंद कर देता है।
0: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहां से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: शैलेन्द्र सिंह और उषा मंगेशकर की आवाजों में तराना फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इसे लिखा था तिलक राज थापर ने और धुन बनाई थी राम लक्ष्मण ने। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का,
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरी गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: एक विलक्षण गायक,
3: अरे ओरे हे,
0: संगीत के साधक,
3: ओरे पथिकुआ मत जइयो तू मेरा बना,
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है,

0: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: 1 अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:00

लता मंगेशकर और बप्पी लहरी की आवाजों में सुरक्षा फिल्म का गीत अभी आपने सुना, इसे रमेश पंत ने लिखा था और बप्पी लहरी ने इस गीत की धुन बनाई थी। हम हैं राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में अब समय है कि एक बहुत छोटा सा अंतराल लिया जाए।

हम भी राही प्यार के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजों में ये कुर्बानी फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी।

0: मैं मधुरफी आशा भोसले की आवाजों में एंडीवर का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का था। फिल्म का नाम था कुर्बानी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था

0: उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता एक विराट जीवन की कहानी
2: दिल तो पागल है दिल दीवाना है
3: जब उसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो फिल्म हाउस में लाइन लगी होती
0: उजाली उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
4: चिट्ठी न कोई संदेह
0: 20 सितंबर से

0: कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा। मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
1: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव से।
0: मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक की तन्हाई थी। वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहाँ पहले मेरे भाई थी।
1: शनिवार 19 सितंबर को दिन में 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैम्प लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

साया, दिल रोके रुक ना पाया, तुमने इतना उकसाया, दिल रोके रुक

मोहम्मद रफी और उषा मंगेशकर की आवाजों में अभी आपने काला पत्थर फिल्म का गीत सुना। गीतकार थे साहिल लुधियानवी और संगीतकार थे राजेश रोशन। इसी गीत के साथ ही आज का हम ही राही प्यार के ये कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सविता सिंह को नमस्कार।

0: अभी आप विविध भारती के मुंबई केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, FM 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8 बजने को है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र का प्रसारण, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल है। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
2: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंटर सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है, हम निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पैरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।
3: व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए, नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी, एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा करी। क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने ओसीएम्स और एपीडी जो है वो लगा ली है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

0: समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है वर्ष 2020 से शुरू हुई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर हमारी विशेष श्रृंखला।
1: स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सुधार देखा जा रहा है। आईआईटी मद्रास के इंजीनियरों की टीम द्वारा शुरू किए गए स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला एप्टो एसएआर सैटेलाइट मिशन दृष्टि विकसित किया है। गैलेक्सी आई के सीईओ और को फाउंडर सूर्य सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों के फायदों के बारे में बताया है।
2: सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और ज्यादा फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसमें 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। इससे हमारी जैसी नई कंपनियों को मुश्किल चुनौतियों का सामना करने, भारत में अहम टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम को अगले चरण में ले जाने के लिए सार्थक योगदान का आत्मविश्वास मिलता है।
1: गैलेक्सी आई के सीईओ सूर्य सिंह का कहना है कि स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यू चेन के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही इन स्पेस इंडस्ट्री को मंजूरी दिलाने और इसरो की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इससे हमें सैटेलाइट सिस्टम और मिशन ऑपरेशन के क्षेत्र में अपनी इन हाउस क्षमताएं बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और जरूरी फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जिसमें स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी के लिए इससे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और भारत में जरूरी टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम के अगले चरण में अहम योगदान देने में भी मदद मिल रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 41 बाजारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडिश कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वीडिश निर्यात बाजारों में आर्थिक प्रदर्शन, कारोबारी संभावनाओं और कामकाज की परिस्थितियों की तुलना के लिए एक आधार उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई।
2: वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 7,569 सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनियों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 2,363 कंपनियों ने जवाब दिया। कुल अनुमानित सॉफ्टवेयर निर्यात में इन कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। 31.8% के साथ यूरोप दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की हिस्सेदारी 15.4% थी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी कंपनियों का स्थानीय सॉफ्टवेयर व्यापार वर्ष 2025-26 में $14 अरब से बढ़कर लगभग $18 अरब हो गया। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक

0: तक तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल, केरलम और माहे में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22 सितंबर के आसपास ओडिशा में खासकर दक्षिणी हिस्सों में वर्षा की संभावना बढ़ सकती है।
1: बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण इस महीने की 22 तारीख के आसपास उड़ीसा में फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये सिस्टम आज शाम के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उसे सटे इलाकों में बन सकता है। उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और मजबूत होगा और अगले 3-4 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम तट के करीब आएगा, दक्षिणी उड़ीसा में बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की बार बार की मांगों को लेकर महीनों से चल रहा तनाव समाप्त हो गया है। समझौते के अंतर्गत ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार बना रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमरीका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ममता को दोहरा झटका, बगावत के चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह किया जब्त। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, बंगाल में खेला तृणमूल में अब फुटबॉलर वर्सेस लिफाफा। पंजाब केसरी का कहना है, निर्वाचन आयोग का यह फैसला, दो उपचुनावों के लिए अंतिम निर्णय बाद में। दो न्यायाधीशों की पीठ जाएगी एनटीए मुख्यालय। जनसत्ता के अनुसार एनटीए मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, सुधारों को देखने के लिए खुद जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। पीठ ने मामले में मांगी है प्रगति रिपोर्ट। वायुसेना को तेजस की मिली अंतिम खेप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल ने भारतीय वायुसेना को 20 तेजस विमानों की डिलीवरी का अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध की बदलती तस्वीर को देखते हुए स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी समय की मांग। रेटिंग एजेंसियों मूडीज और जेफरीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 7%। दैनिक भास्कर लिखता है, ईरान युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच 5 महीने में भारत की ग्रोथ स्टोरी की तस्वीर बदली। पंजाब के अमृतसर में एएसआई की गोली मारकर हत्या, दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। ड्यूटी के दौरान दो हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार को निशाना बनाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 17 साल में सबसे सूखा रहा 2026 का मॉनसून। राजस्थान पत्रिका के अनुसार अलनीनो के लगातार बढ़ते असर से देश में 346 जिले प्रभावित, खरीफ उत्पादन घटने की आशंका।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ दिल से।

कुछ दिल से कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को ख्याति गांधी का नमस्कार। श्रोताओं, आज का हमारा जो विषय है उसका ना कोई रंग है, ना कोई रूप, ना कोई आकार, लेकिन फिर भी इसकी दुनिया बहुत बड़ी है। यह कभी हमें अचानक कुछ नया करने के लिए उकसाता है, कभी बिना वजह किसी बात पर मुस्कुरा देता है, कभी किसी पुराने गीत पर ठहर जाता है और कभी आने वाले कल के लिए ऐसे सपने बुनने लगता है जिसके बारे में हमने खुद भी नहीं सोचा होता। इसकी कोई दिशा नहीं है, कोई तय समय नहीं है, फिर भी हमारी जिंदगी का शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब हम इसके साथ बात ना करते हो। सुबह हमारी आंख खुलने से लेकर रात को आंखें बंद करने तक यह हमारे साथ चलता है, कभी विचार बनकर, कभी इच्छा बनकर, कभी यादें बनकर और कभी एक नई उम्मीद बनकर। दिल की धड़कनें सुनाई देती है तो सांसों का एहसास होता है, लेकिन हमारे भीतर क्या चल रहा है उसे महसूस करने के लिए किसी आवाज की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा ठहरना होता है, क्योंकि हमारे भीतर एक ऐसी दुनिया है जो दिखाई नहीं देती लेकिन हमारी पूरी जिंदगी को अपने रंगों से भरती रहती है। और इस खूबसूरत रहस्यमयी दुनिया का नाम है हमारा मन।

दोस्तों मन की यही खूबी है कि वह एक ही पल में कई दिशाओं में चल सकता है। जहां हमारा शरीर मौजूद होता है, जरूरी नहीं कि मन भी वहीं हो। और शायद इसी वजह से मन को समझना खुद को समझने की शुरुआत है। मन को अक्सर चंचल कहा जाता है, क्योंकि इसे एक जगह रोक कर रखना आसान नहीं है। हम किताबें खोलकर बैठते हैं, लेकिन मन कहीं और पहुंच जाता है। कभी किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन भीतर कोई दूसरी बात चल रही होती है। कभी मन बीते हुए समय में घूमता है और कभी आने वाले समय की तस्वीरें बनाने लगता है। जो अभी सामने है, कई बार हमारा मन उसमें पूरी तरह मौजूद ही नहीं होता। यही चंचलता कभी हमें नए सपने देखने के लिए प्रेरित करती है, तो कभी बेवजह की उलझनों में भी डाल देती है। लेकिन मन का चंचल होना हमेशा कमजोरी नहीं है। इसी मन की कल्पना से कला जन्म लेती है, नए विचार आते हैं और असंभव लगने वाली चीजों को संभव बनाने की इच्छा पैदा होती है। जरूरत बस इतनी है कि मन हमें ना चलाए, बल्कि हम धीरे धीरे अपने मन को दिशा देना सीखें।

दोस्तों, मन की आवाज हमेशा शब्दों में नहीं होती। कभी कभी वह किसी काम को करने की इच्छा बनकर आती है, तो कभी किसी रास्ते से दूर रहने का संकेत देती है, और कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के हमें बताती है कि कुछ सही नहीं लग रहा। बचपन में हम अपने मन की सुनते हुए बहुत कुछ कर जाते थे। जो अच्छा लगता था उसी तरफ चलते जाते थे, और जो अच्छा नहीं लगता उससे दूरी बना लेते थे। लेकिन उम्र के साथ जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं और परिस्थितियां बढ़ती जाती हैं, और हम कई बार मन की जगह सिर्फ परिस्थितियों के हिसाब से जीने लगते हैं। इसलिए कभी कभी खुद के साथ बैठना भी जरूरी है, बिना किसी शोर के, बिना किसी जल्दबाजी के, यह जानने के लिए कि हम वास्तव में चाहते क्या है, किस बात से खुशी मिलती है, और किस चीज का बोझ हम सिर्फ इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि इसे छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। मन सिर्फ इच्छाओं का नाम नहीं है, इसमें यादें भी हैं, रिश्ते भी हैं और भावनाएं भी हैं, जिन्हें हम शब्दों में नहीं कह पाते।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, कुछ लोग हमारी जिंदगी से दूर चले जाते हैं, कुछ पल बीत जाते हैं, कुछ जगहें पीछे छूट जाती हैं, लेकिन मन उन्हें अपने भीतर कहीं संभाल कर रख लेता है। यही वजह है कि कोई पुराना गीत अचानक हमें कई साल पीछे ले जाता है। किसी खुशबू से कोई पुराना आंगन याद आ जाता है और किसी तस्वीर को देखकर बीता हुआ समय फिर से आंखों के सामने गुजर जाता है।

जाता है। यादें भी मन की एक अनोखी संपत्ति है। वे हमें बताते हुए चलती है कि हम कहां से आए हैं और किन अनुभवों ने हम जो आज हैं हमें वो बनाया है। हर याद को पकड़े रहना जरूरी नहीं, लेकिन हर याद से भागना भी जरूरी नहीं। कुछ यादें मुस्कुराना सिखाती हैं, कुछ समझदार बनाती हैं, और कुछ यह एहसास कराती है कि समय कितना कुछ बदल देता है। मन की खूबसूरती शायद यही है कि वह बीते हुए कल को संभाल कर भी आज में जीने की जगह बनाए रखता है। और जब मन बीते हुए कल को याद करता है तो कई बार उसी के साथ एक और चीज जुड़ जाती है, उम्मीद। क्योंकि मन की दुनिया में कल की यादों के साथ आने वाले कल के सपने भी होते हैं।

दोस्तों, मन को हर वक्त खुश रखना संभव नहीं है और शायद जरूरी भी नहीं है। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही मन के भाव भी बदलते रहते हैं। कभी उत्साह होता है तो कभी थकान, कभी खुशी और कभी बिना किसी स्पष्ट वजह के उदासी। जरूरी यह है कि हम अपने मन के हर भाव को जगह दें, लेकिन किसी एक भाव को अपनी पूरी जिंदगी ना बनने दें। मन परेशान हो तो उसे थोड़ा समय दें, मन खुश हो तो उस खुशी को महसूस करें, और मन उलझा हो तो हर सवाल का जवाब उसी वक्त ढूंढने की कोशिश ना करें। कुछ बातें समय के साथ अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। शायद मन को संभालने का सबसे सरल तरीका यही है कि हम उससे लड़ने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि मन हमारा विरोधी नहीं है। वह हमारे अनुभवों, इच्छाओं, डर, सपनों और यादों से बना हुआ हमारा ही एक हिस्सा है। उसे समझना दरअसल खुद को थोड़ा और समझना है।

दोस्तों, जिंदगी में हर चीज हमारे मन के मुताबिक नहीं होती, लेकिन जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हर इच्छा का पूरा होना जरूरी भी नहीं है। जरूरी यह है कि मन में आगे बढ़ने की इच्छा बनी रहे, क्योंकि जिस मन में उम्मीद बची रहती है वहां रास्ते खत्म नहीं होते। और आखिर मन को चाहिए ही क्या? थोड़ा सुकून, थोड़ी समझ, थोड़ी उम्मीद और अपने ही भीतर लौट जाने के लिए थोड़ी सी जगह है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए ख्याति कांती को कार्यक्रम कुछ दिल से यहीं समाप्त करने की। आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ दिल से। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 8:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे लंगा और मांगणियार के गाए राजस्थानी गीत।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में?
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
6: अभी आप राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत लंगा और मांगणियार के गए राजस्थानी गीत सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आप राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत लंगा और मांगणियार के गाए राजस्थानी गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9 बजने को है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र का प्रसारण, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में 45 स्थानों पर आज 20वें रोजगार मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। राज्य सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 80 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया और प्रदेश में मॉनसून की विदाई से पहले कई स्थानों पर बरसात का सिलसिला जारी। आज पश्चिमी हिस्सों

0: को छोड़कर अधिकांश जगहों पर बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ये नियुक्ति पत्र विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को दिए जाएंगे। इनमें राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग तथा रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। देश भर में 45 स्थानों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में जयपुर और उदयपुर में रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाले रोजगार मेले में 51 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उदयपुर में युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। गौरतलब है कि अब तक हुए रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्तियां मिल चुकी हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। साथ ही 17 देशों के न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे। प्रतिभागी प्रमुख पर्यावरणीय और जलवायु चुनौतियों पर चर्चा करेंगे, जिनमें नीति निर्माण, कार्यान्वयन और प्रवर्तन में कमियां शामिल हैं। पर्यावरण से जुड़ी गवर्नेंस की प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में पर्यावरण सुशासन और संस्थागत सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर भी विचार किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। वे कल उत्तर प्रदेश में आयोजित एक बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। श्री यादव ने कहा कि इस कार्य योजना में पुराने वाहनों से संबंधित उपाय सुझाए जाएंगे।
1: व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए, नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी, एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा। इस क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने ओसीएम्स और एपीडी जो है वो लगा ली है।
0: गौरतलब है कि एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों को मजबूत करने के लिए पिछले वर्ष दिसंबर से अब तक 30 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें स्थानीय निकायों, जनप्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के बीच समन्वय पर बल दिया गया है। प्रदेश में जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। कल से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया आज दोपहर 3 बजे तक चलेगी। 21 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, वहीं 22 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। अध्यक्ष पद के लिए 25 सितंबर को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा और मतदान समाप्त होते ही वोटों की गिनती की जाएगी। उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव 26 सितंबर को होगा। वहीं प्रदेश के बाकी 305 नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद 592 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार कुल 820 उम्मीदवार वैध रूप से नामांकित हुए थे, जिनमें से 197 ने नाम वापस ले लिया। वहीं 32 उम्मीदवार निर्विरोध रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए कुल 989 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिनमें से 85 नामांकन पत्र निरस्त और 14 नामांकन पत्र खारिज किए गए। अध्यक्ष पद के लिए मतदान 21 सितंबर को होगा, इसके ठीक बाद मतगणना की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और

0: फेसबुक एआईआर न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 80 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जयपुर में अभियान की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में संबंधित विभागों और जिला कलेक्टरों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे से प्रभावित रहे और अब इससे बाहर निकल चुके लोगों को भी अभियान से जोड़ा जाए ताकि उनके अनुभवों के जरिए जागरूकता बढ़ाई जा सके। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2020 से संचालित अभियान के तहत राज्य में अब तक 1,35,00,000 से अधिक लोगों को जागरूक किया गया है। साथ ही 3,735 नशा मुक्त मित्र पंजीकृत हैं। इस बीच जयपुर के निजी विश्वविद्यालय में एनएसएस की ओर से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत संवाद कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीमा हिंगोनिया ने युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया।
1: यहाँ पे मोटिवेशनल क्लास थी, युवाओं को कानून की जानकारी दी गई है, नशा मुक्ति अपनाने के लिए उनको मोटिवेट किया है, साथ में समस्त प्रकार की जितने प्लेटफॉर्म्स हैं पुलिस के उनके बारे में बताया है कि कैसे आप उनका उपयोग करके अपने आप को सुरक्षित बना सकते हैं, जैसे राजकोप सिटीजन ऐप हो गया, 1930 हो गया, इनको बताया गया है, साथ में 112 को कैसे आप बुला सकते हैं, ये सारा बताने का इनको प्रयास किया गया।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि एआई और तकनीक चिकित्सा कौशल के विकास में मदद कर सकते हैं लेकिन मानवीय संवेदना का स्थान नहीं ले सकती। उन्होंने ये बात जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांटेशन विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यशाला में कही। राज्यपाल ने चिकित्सकों से मूत्र रोग, प्रोस्टेट और गुर्दा प्रत्यारोपण से जुड़े रोगों के प्रभावी उपचार के साथ इन रोगों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। और अब मौसम। मॉनसून के प्रदेश से विदा होने से पहले कई हिस्सों में बरसात का सिलसिला जारी है। 12 में कल रात से शुरू हुआ बरसात का दौर रात भर रुक रुक कर चलता रहा। आज सुबह भी थोड़ी देर के लिए बादल बरसे। बालोतरा में कल शाम को कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। बाड़मेर जिला मुख्यालय सहित कई इलाकों में कल मध्यम से तेज बरसात हुई। इससे बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ और तिल की फसलों को जीवनदान मिला है। प्रदेश में आज पश्चिमी जिलों को और शेखावटी क्षेत्र को छोड़कर ज्यादातर स्थानों पर बारिश का येलो अलर्ट है। इन स्थानों पर कहीं कहीं मध्यम और कहीं तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 21 सितंबर को मॉनसून की रवानगी शुरू होगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राज्य में आधारभूत सुविधाओं वाले क्षेत्रों में परिवारों को प्राथमिकता से घरेलू पाइप्ड प्राकृतिक गैस यानी डीपीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने ये बात जयपुर में सीजीडी संस्थाओं के साथ डीपीएनजी नेटवर्क के विस्तार की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर तक 40,000 नए परिवारों को डीपीएनजी सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में 45 स्थानों पर 20वें रोजगार मेले का आज आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। राज्य सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 80 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया और प्रदेश में मॉनसून की विदाई से पहले कई स्थानों पर बरसात का सिलसिला जारी। आज पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर अधिकांश जगहों पर बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है, एफएम बैंड 101।
3: आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम के गाए गैर फिल्मी गीत।

0: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में?
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

अभी आप सुगम संगीत के अंतर्गत सोनू निगम के गाए गैर फिल्मी गीत सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आप सुगम संगीत के अंतर्गत सोनू निगम के गाए गैर फिल्मी गीत सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है एफएमएंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: भी।
1: उन्होंने भी फोन किया कहने लगे यहाँ हम डोरियां रिकॉर्ड करना चाहते बना दो रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करती दो लाइन चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के मैं उसकी ट्यून बना ली चंदा।

0: प्याले में।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
2: श्रोताओं नमस्कार। कुछ आवाजें हमें रूहानी एहसास करवाती हैं, तो कुछ आवाजें हमें हमसे ही मिलाती हैं। एक ऐसी ही रूहानी, दिल को छूने वाली आवाज की बात आज हम करने वाले हैं। उस आवाज ने हमें सहलाया, दुलारा और खुद से प्यार करना भी सिखाया। आज बात लाखों दिलों को छूने वाली आवाज के मालिक जुबीन गर्ग की। जुबीन गर्ग के लिए एक बात कही जा सकती है कि वो कोई आम गायक नहीं, बल्कि आम जन के दिलों को छूने वाली आवाज रहे। उनकी लोकप्रियता की कहानी बताने से पहले उनके जीवन की कहानी को जानना भी जरूरी है। 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में मजिस्ट्रेट मोहिनी मोहन बोर ठाकुर और गायिका अभिनेत्री ईली बोर ठाकुर के घर जन्मे जीबोन बोर ठाकुर, जिन्हें हमने जाना, पहचाना और सराहा जुबीन गर्ग के नाम से। इस नाम की कहानी भी संगीत से ही जुड़ती है। जीबोन बोर ठाकुर ने अपना नाम चुना पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के विश्व प्रसिद्ध पहले भारतीय कंडक्टर यानी ऑर्केस्ट्रा संचालक जुबीन मेहता के नाम से। ये एक तरह से उनके प्रति सम्मान था और उस नाम के पीछे लगाया अपना गोत्र नाम, और इस तरह वो बन बैठे जुबीन गर्ग।

संगीत बचपन से ही घर में मिला। पिता मजिस्ट्रेट होने के साथ साथ कपिल बोर ठाकुर के नाम से कविताएं और गीत लिखा करते। माँ इली बोर ठाकुर गायिका तो थी ही और उन्होंने ही संगीत का बीज नन्हे जुबीन के मन में बोया। 3 साल के थे तभी से माँ ने जुबीन को संगीत सिखाना शुरू कर दिया। थोड़े बड़े हुए और पंडित रॉबिन बनर्जी से तबला सीखने लगे। बाद में उन्होंने रमानी राय से असमिया लोक संगीत की तालीम भी ली। स्कूल के दिनों से ही जुबीन गानों की धुन तैयार करने लगे थे। जब 3 साल के थे तभी पहले गीत की धुन तैयार की थी। वो गीत था गाने की आने और उसे उन्होंने अपने पहले एल्बम अनामिका में शामिल भी किया। कई गीतों वाला ये एल्बम जुबीन ने लॉन्च किया जब वो 19 साल के थे। इसी साल उन्होंने अपने वेस्टर्न सोलो परफॉर्मेंस से यूथ फेस्टिवल में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया था।

अनामिका के बाद जुबीन ने और भी कई एल्बम लॉन्च किए, जैसे माया, आशा, पाखी। ये सभी गीत लोगों ने पसंद किए। जुबीन की आवाज की ईमानदारी, सीधे दिल को छूने की गहराई और लोक गीतों की मिठास उनकी आवाज को लोगों के दिलों तक पहुंचाती रही। बिहू के मौके पर लॉन्च किया गया उनका एल्बम उजन प्रीति सुपरहिट रहा। जुबीन ने इसी समय एक बड़ा कदम लिया। अब तक असमिया और बांग्ला भाषा में गाते जुबीन ने हिंदी गीतों की ओर रुख किया, क्योंकि मौका था कुछ बड़ा करने का। और यही ठानकर जुबीन अपनी जादुई आवाज के साथ आ पहुंचे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई। 1995 में 22 साल के जुबीन

यहाँ आए और एल्बम चांदनी रात, श्रद्धांजलि, यूं ही कभी जैसे कई एल्बमों में उन्होंने गीत गाया। साथ ही गद्दार, पुराने कब्र, डोली सजा के रखना, फिजा, कांटे जैसी कई फिल्मों में भी जुबीन की आवाज़ गूंजी।

लगातार काम मिलता रहा। मुद्दा, चुपके से, मुंबई से आया मेरा दोस्त, जाल जैसी फिल्मों में भी उनके गीत आए, लेकिन बात वही थी कि जुबीन की आवाज को सराहा गया लेकिन अब भी वो बुलंदी और पहचान नहीं मिली थी जिसके वो हकदार थे। फिर साल 2006 में आई फिल्म गैंगस्टर और आते ही या अली गीत में जुबीन की आवाज गूंजी तो जैसे सभी उनके साथ झूम उठे। इस गीत की लोकप्रियता का आलम यह है कि उसकी गूंज आज तक कायम है। जुबीन इस गीत में नजर भी आते हैं। ये गीत उनकी पहचान बन गया।

जुबीन को इस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक का ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड भी मिला। इसके बाद जुबीन ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कई यादगार गीतों को अपनी आवाज दी, जैसे बिग ब्रदर में उस्ताद सुल्तान खान के साथ गाए उनके गीत जग लाल लाल ने भी धूम मचाई। जुबीन ने न सिर्फ हिंदी बल्कि असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी और भारत के उत्तर पूर्वी भाग की कई लोक भाषाओं के साथ तकरीबन 40 भाषाओं में 32,000 से अधिक गीत गाए। जितनी भाषाएं उतने ही भाव, भक्ति गीत, लोक गीत, गम, खुशी, प्यार जैसे हर भाव के गीत जुबीन की आवाज में मौजूद हैं। जुबीन जहां एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में कामयाब रहे, वहीं वो अपनी मिट्टी से भी उतनी ही दृढ़ता से जुड़े रहे। उन्होंने पूर्वोत्तर की तकरीबन 250 लोक जातियों से जुड़कर उनके लोकगीतों को एक नई पहचान दी, उसे लोगों के सामने लाने में बड़ी भूमिका निभाई।

यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि जुबीन गर्ग केवल एक आवाज ही नहीं बल्कि संगीतकार, गीतकार, म्यूजिक प्रोड्यूसर, अभिनेता, फिल्म निर्माता, स्क्रिप्ट राइटर भी रहे। बचपन से ही संगीत से लगाव इतना था कि अलग अलग भाषाओं और लोकगीतों से जुड़ाव तो रहा ही, साथ ही वाद्यों से भी उनका लगाव अनोखा था। उन्हें तकरीबन 12 किस्म के वाद्यों में महारत हासिल थी। ढोल, दो तारा, ड्रम, गिटार, माउथ ऑर्गन, हारमोनियम, मैंडोलिन, कीबोर्ड, तबला और कई तरह के ताल वाद्य उनके संगीत के जादू के साक्षी थे।

कलाकार का जीवन जितना लोगों के सामने होता है उससे भी ज्यादा गहराई उनके मन में होती है। कुछ ऐसा ही मन जुबिन गर्ग का भी महसूस होता है। मुंबई जैसी सपनों की नगरी में कोई भी एक बार आता है तो बस यहीं का होना चाहता है, लेकिन जुबिन ने यहाँ बसना नहीं चाहा। वो अपनी मिट्टी से इतना लगाव रखते थे कि वो कहीं भी रहें उन्हें वापस अपनी मिट्टी की याद खींच ले जाती। शायद यही एक कारण था कि उन्हें भारत के उत्तर पूर्वी भाग में एक गायक या संगीतकार की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जाना जाता था जिसे लोग सम्मान की दृष्टि से देखा करते और अपना समझते। जुबिन उस सम्मान को सिर्फ यूं ही नहीं पा रहे थे बल्कि उन्होंने वो सम्मान कमाया था लगातार अपने उन कामों से जो वो लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से किया करते।

संगीत के साथ साथ समाज सेवा के कई कामों से भी जुड़े हुए थे। असम बाढ़ के दौरान भी उन्होंने काफी सहायता की और लोगों से भी सहायता की अपील की। उनकी संस्था कलागुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन के साथ वो आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों की सहायता करते, जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई, रहन सहन देखते। हम जुबीन के सेवा भाव का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि कोविड के दौरान उन्होंने 19 कोविड सेंटर्स को हर सुविधा प्रदान की। उन्होंने 16 बच्चों को गोद लिया और उनके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी उठाई। न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों से भी उनका प्रेम कम नहीं। डॉग शेल्टर, बंदर और पक्षियों के लिए भी कई तरह की व्यवस्था की गई। यहाँ तक कि उन्होंने उस दौरान अपने गुवाहाटी के घर को भी कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए दे दिया। कहते हैं एक कलाकार की ईमानदारी और सच्चाई उसके काम में झलकती है। शायद यही बात जुबीन को भी लोगों से जोड़ती है।

बतौर अभिनेता और निर्देशक पहली फिल्म थी साल 2000 के शुरुआत में आई फिल्म तुम्ही मोड़ मथु मोड़। कुछ अन्य फिल्में जिनमें जुबीन बतौर अभिनेता नजर आए, प्रेम अरुप्रेम, दीना बंधु, मोन जाई, भल पाबो न जानीलू, गाने की आने, मिशन चाइना, प्रियार प्रियो, द अंडरवर्ल्ड, कंचन जंघा, राजनीति, शिकार और रोई रोई बिनाले। इनमें से मिशन चाइना पहली ऐसी असमिया फिल्म बनी जिसने 6 करोड़ कलेक्शन किया और इसका रिकॉर्ड तोड़ा जुबीन की ही फिल्म कंचन जंघा ने 7 करोड़ का कलेक्शन करके।

2009 में जुबिन गर्ग को शॉर्ट फिल्म इकोज ऑफ साइलेंस के लिए गैर फिल्मी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 2022 में उनकी 20 फीट ऊंची प्रतिमा दिग्बोई में अनावृत की गई। अपने 33 साल के करियर में जुबिन ने कई गीतों को अपनी आवाज दी, लेकिन वो अक्सर कहा करते कि उनका गाया गीत मायाबिनी उनके दिल के करीब है। अपने फैंस को लगातार नाराज करते हुए वो ये तक कहा करते कि ये गीत उनकी अंतिम यात्रा में गाया जाना चाहिए और किसे पता था कि ये दिन भी देखना ही होगा। 19 सितंबर 2025 वो तारीख थी जब लोगों को ये दिल दहलाने वाला समाचार मिला। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए सिंगापुर गए जुबिन वहाँ समुद्र में स्कूबा डाइविंग कर रहे थे और एक हादसे में 52 साल की उम्र में जुबिन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके संसार छोड़ने के विचार ने चाहने वालों को एक ऐसे शोक में डुबो दिया जिससे बाहर लाने का काम भी केवल जुबिन की आवाज ही कर सकती थी।

पार्थिव शरीर को जब भारत लाया गया तो उनकी अंतिम यात्रा में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। चाहने वालों का ये हुजूम थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। 23 सितंबर तक ये दौर यूं ही चलता रहा। अपने चहेते सितारे को देखने के लिए आए लोगों के आंसू लगातार बह रहे थे। विश्व में किसी की अंतिम यात्रा में लोगों का ऐसा जमावड़ा चौथी बार ही देखा गया और भारत में पहली बार। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज भी किया गया। गुवाहाटी में जुबीन को अलविदा कहने के लिए फैंस ने उनके ही गीतों को एक साथ गाया। इसमें जुबीन का पसंदीदा गीत मायाबिनी भी शामिल था। जुबीन का जाना असमिया संगीत के एक दौर का खत्म होना माना गया, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि एक कलाकार कभी खत्म नहीं होता। वो अपनी कला के जरिए मौजूद रहता है और कुछ न कुछ सिखाता रहता है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक, संगीतकार, अभिनेता और बहुमुखी प्रतिभा के धनी जुबीन गर्ग पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, संपादन प्रभा भटनागर का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है अलका सिन्हा की लिखी कहानी रिहाई, वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी का।
3: उसे उम्र कैद की सजा हुई थी, मगर उसके अच्छे चाल चलन के कारण उसे 2 साल पहले ही रिहा कर दिया गया। बरसों बाद आज वो अपने ही घर के सामने अजनबी सा खड़ा था। लंबी सांस भर बहुत संयत मन से उसने कंधे पर टंगे झोले में से चाबी निकाली और ताले में डालकर घुमाई। ताला ढीठ सा अड़ा रहा। इसी दशा में टंगे टंगे ये ताला भी उम्र कैद जितनी लंबी अवधि काट चुका था। यूं दरवाजा जोर से धकेलने पर शायद ताला खोलने की जरूरत ही न पड़ती, मगर ये बात उसके दिमाग में आई ही नहीं। एक आंख बंद कर उसने ताले की मोरी के भीतर झांकते हुए चाबी घुसेड़ कर पूरी ताकत से मरोड़ दी। कड़ कड़ की आवाज के साथ कराहता वो ताला आखिर होश में आया तो जैसे नींद से जागकर अविश्वास से पूछने लगा,
4: कौन हो भाई? यहां तो बरसों से कोई आया ही नहीं है।
3: तो क्या ओमी भी कभी आया नहीं मेरे पीछे? वो हल्के से बुदबुदाया।
4: ओमी? कौन ओमी? दरवाजा भी अब तक बूढ़ा हो चुका था और

उसकी याददाश्त पहले जैसी नहीं रह गई थी। खैर, उसने दरवाजे को जोर से धकेला तो बरसों की जमी धूल उस पर छिटक कर गिर पड़ी। चलो, किसी ने गले लगाकर स्वागत तो किया। वो हंसा तो धूल मुंह में घुस गई और वो खांसने लगा। भीतर का दृश्य जैसे फ्रीज हुआ पड़ा था। लंबे अरसे से एक ही स्थान पर रखी चीजें पड़ी पड़ी जम चुकी थीं। कुछ साफ नहीं दिख रहा था। हर तरफ पड़ी धूल की मोटी परत से उसका रंग रूप ही बदल चुका था। मैं किसी गलत घर में तो नहीं आया ना? ये मेरा ही तो घर है ना? अब किसके सहारे छोड़ गया था मैं अपना घर? ओमी, उसने पुकारना चाहा, मगर गहरे निश्वास के साथ आंख नाक और मुंह में धूल भर आई। हाँ, बाथरूम भी यही है। हाँ, यही तो है बाथरूम। यानी घर तो मेरा ही है। बाकी सब भी धीरे धीरे साफ हो जाएगा। झाड़ू भी मिल गई, रसोई के दरवाजे के पीछे रखी थी, ठीक वहीं जहां हमेशा रहती थी। और इस एक छोटी सी बात ने उसे यकीन दिला दिया कि ये घर सचमुच उसका है। रात होते होते उसने घर को काफी हद तक ठीक कर लिया। यानी ओमी कभी आया ही नहीं मेरे जाने के बाद। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उसी के भरोसे सब कुछ छोड़ के गया था। वो जरूर यही कहीं छुपा बैठा होगा, नालायक, यही कहीं बैठा होगा। उसने ओमी को खोजना चाहा, पलंग के नीचे, पर्दे के पीछे, खिड़की के बाहर, बगीचे में, हर तरफ देख लिया। ओमी कहीं नहीं था। अंधेरा गहराने लगा था। उसने बत्ती जलानी चाही तो तारे कटी हुई मिली। शायद चूहा कुतर गया था। किसी तरह तारे जोड़ी और स्विच दबाया तो बल्ब चनक कर टूट गया। खाने का मन भी नहीं था उसका और खाने को कुछ था भी नहीं। वो वैसे ही अंधेरे में लेट गया, एकटक पंखे को देखता रहा, भीतर ही भीतर ओमी को पुकारता रहा।

खुली तो दिन चढ़ आया था। वो हड़बड़ाकर उठा, ओह इतनी देर हो गई। मैं तो इतनी देर तक सोता ही नहीं था, अब तक सब जग गए होंगे। उसने दाएं बाएं देखा, फिर उसे याद आया कि वो अपने घर में है, जेल की सलाखों से बाहर। अब तो वो खुद अपनी मर्जी का मालिक है। जब तक चाहूंगा सोऊंगा, जहां चाहे जाऊंगा, अब मैं आजाद हूं। अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। सुन रहे हो ना ओमी, ओमी ओमी सुन रहे हो ना, अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। हाँ। उसे फिर ओमी की याद हो आई। याद आई कि ओमी को तो पता ही नहीं होगा कि उसे समय से पहले ही रिहा कर दिया गया है, और वो अपने घर उसका इंतजार कर रहा है। उसका मन मायूस हो गया। आखिर ओमी के बिना ये आजादी किस काम की? आएगा ओमी, आज जरूर आएगा। आएगा तो उसे क्या खिलाऊंगा? अच्छा चलो बाजार से कुछ सब्जी भाजी खरीद ले आता हूं। आज अपनी पसंद की सब्जियां लाऊंगा। रोज रोज घी आग कद्दू खा खाकर रुकता चुका हूं। और हाँ, नया बल्ब भी तो लाना है। ओमी जरूर कहीं दूर से इस घर पर नजर रखता होगा, जलती बत्ती देखकर दौड़ा चलाएगा। हाँ, उसे क्या मालूम कि मैं समय से पहले ही रिहा हो गया हूँ। जरूरत का सामान खरीद कर वो घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने बड़े चाव से सब्जी बनाई। गोल गोल नरम नरम रोटियां सेकते हुए भीतर ही भीतर ओमी को पुकारता रहा। सोचा पास पड़ोस में पूछूं कि पिछली बार ओमी कब आया था यहाँ, मगर हिम्मत नहीं हुई। बाहर की दुनिया पराई हो गई थी। एक सजायाफ्ता से कौन बात करना चाहेगा? लोग उसे नहीं पहचानते अब, ये भी अच्छा ही है। उसने राहत की सांस ली और खा पी कर सो गया। बत्ती जली ही छोड़ दी। उसे भरोसा था कि बत्ती जलती देखकर ओमी दौड़ता हुआ यहाँ आएगा। नींद में भी वो हर खटके से जागता रहा, पर सुबह हो गई और ओमी नहीं आया। अगला दिन भी बीत गया, फिर एक और रात ओमी नहीं आया। वो हर रात बत्ती जली छोड़ देता, इस उम्मीद में कि उजाला देख कोई तो दौड़ा चला आएगा। लगातार चलता पंखा उसे बरसों पीछे लिए जा रहा था, बहुत पीछे, कॉलेज की गहमा गहमी के बीच। कॉलेज का वार्षिक उत्सव, सजी धजी भीड़ मंच की तरफ देख रही थी। भीड़ उत्साह से ओमी ओमी ओमी ओमी पुकार रही थी। भीड़ में से आवाजें आ रही थी, ओमी ओमी। वो देख रहा है ओमी मंच पर खड़ा है। मंच पर इतनी तेज रोशनी है कि आंखें चुंधिया जाएं। तेज रोशनी में वो ओमी को ठीक से देख भी नहीं पा रहा, मगर वो उसकी आवाज सुन रहा है। वो कह रहा है, दोस्तों आज की ये महफिल किसी खास के नाम, देखता हूं मेरी आवाज उस तक पहुंचती है या नहीं। महफिल में तालियों की आवाज, सीटियां और उत्साह भर उठता है। ओमी एक तान भरता है और हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सबकी धड़कनें रुक गई हैं। वे सांस रोके ओमी का गीत सुन रहे हैं, उसे अपलक देख रहे हैं, और ओमी है कि आंखें बंद कर गा रहा है। मखमली आवाज का जादू हर किसी पर छाने लगा है।

0: सुनिए, क्या क्या खूब गाते हैं आप। मैं तो खो ही गई थी, मगर ये गीत नहीं था, मेरे दिल की आवाज थी। और आपने क्या कहा कि आप तो खो गई। अरे आप खो जाएंगी तो मैं खुद को कहाँ ढूंढूंगा। अच्छा, अपना नाम तो बता दीजिए ताकि ढूंढने में कुछ आसानी हो। जी मैं, मेरा नाम मेरा नाम गीत है। अरे वाह, आप गीत और मैं गायक, क्या खूब है। अब समझा ये निगाहें क्यों बार बार आपकी तरफ खींची चली जा रही थी। चलिए, आप तो बातें बनाते हैं। उसे खूब याद है ओमी और गीत की वो पहली मुलाकात, जिस दिन ओमी के दिल की आवाज गीत तक पहुंची गई। फिर तो वो हर जलसे में ओमी की आवाज के साथ खींची चली आती। यही हाल ओमी का भी था। जब वो गाने लगता तो सबसे पहले उसी की ओर देखता, फिर आंखें बंद कर तसल्ली से गीत में डूब जाता। गीत उसकी जिंदगी थी, इसीलिए तो उसने अपने बैंड का नाम ओम बैंड से ओम गीत बैंड कर दिया था। ओमी के दोस्त उसे गीत का नाम लेकर खूब चिढ़ाते थे, मगर वो चिढ़ता नहीं था, उल्टे एक मीठी मुस्कान उसके होठों पर आ जाती, जैसे कोई अपना सबसे प्यारा राज सुन ले और भीतर ही भीतर खुश हो जाए। उसके दोस्त जानबूझकर उससे बात करते हुए गीत का नाम बीच में डालते हुए दोहरी जुबान में उससे पूछते, ओमी भाई, आज के जलसे में तुम्हारे गीत ने गजब ढा दिया भाई। ओमी हंसकर कहता, यार गीत ने मंच पर ही नहीं, मेरे जीवन के रंगमंच पर भी गजब ढा दिया है। हाँ। वो कुछ देर हंसता मगर फिर संजीदा होकर कहता, हाँ पहले मैं गाता था, अब जिंदगी गाती है। मेरे गीतों के शब्द अब लगे बोलने, जब से सुर पर उन्हें वो सजाने लगी है। दूर कहीं कोयलिया गाने लगी है। उसे संजीदा देखकर दोस्त भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते। अम्मा यार, ये तो सच है, जब से गीत तेरी जिंदगी में आई है, तेरी आवाज में बला का जादू आ गया है, एक नशा सा छा गया है तेरी गायकी में। ओमी एक पल के लिए रुका, जैसे वो इस बात की गहराई को तौल रहा हो, फिर धीरे से अपने भीतर ही बोल पड़ा, हाँ मेरे हर बोल में वो होती है, हर सुर में उसका चेहरा होता है। जब उसकी झुकी हुई नजरों को देखता हूँ तो मेरी तान खुद ब खुद ऊपर उठती चली जाती है। सब जानते थे कि ओमी और गीत एक दूसरे के लिए बने हैं, ये जोड़ी कुछ अलग ही है। ये बात अब किसी से छुपी नहीं थी। जलसों में लोग ओमी का गाना सुनने आते थे, मगर कनखियों से गीत को भी देखते रहते। ये अनूठी संगत थी,
1: इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और इस पूरे प्रयास के केंद्र में रहा

उधर गीत की सहेलियां भी कहां कम थी। हर वक्त उसे ओमी के नाम की मीठी झिड़कियां देती रहती। ए गाता तो ओमी है मगर भाव तेरे चेहरे पर होते हैं, ऐसा कैसे होता है गीत? देख अभी भी तेरा चेहरा कैसा सिंदूरी हो गया है। हायो रब्बा, ओमी को देखते ही ये तो किसी दूसरी दुनिया में जा पहुंचती है। उनकी बातें सुन गीत एक पल के लिए चुप हो जाती, फिर धीरे धीरे जैसे मन में सांस लेते सपने को शब्द देती भी बोल पड़ती। हाँ सच में ओमी जब तान भरता है ना तो जाने मुझे क्या लगता है, जैसे जैसे मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं, किसी और ही दुनिया में हूँ। हाँ जैसे मैं बादलों की पालकी पर जा बैठी हूँ और ओमी की तान के साथ साथ ऊपर उठती जा रही हूँ, ऊपर और ऊपर, पता नहीं कितने ऊपर। सहेलियां एक दूसरे को देखने लगती और गीत बोलती रहती। और पता है जब भीड़ तालियां बजाती है, जब सारा हॉल उसकी आवाज की जादूगरी से गूंज उठता है, तो मेरे भीतर कुछ उमड़ने लगता है, जैसे जैसे कोई नदी बरसों से शांत बह रही थी और अचानक उसमें बाढ़ आ गई हो, और मैं उस बाढ़ को रोकना नहीं चाहती, बस उसमें बहती रहना चाहती हूँ। गीत तू तो बनी ही उसके लिए है रे, यूं ही तो तेरा नाम गीत नहीं पड़ा। गीत अपनी सहेलियों के चूहल में खो जाती और कहती, माँ ने संगीत सीखा था और प्यार से मुझे गीत कहकर बुलाया करती, गीत तो बस मेरे पुकारने का नाम था। मगर जब ओमी मुझे गीत कहकर बुलाता है ना, तब सच मानो मेरे कानों में संगीत गूंजने लगता है, मुझे अपना नाम सच्चा लगने लगता है, जैसे जैसे सालों से ये नाम उसी की आवाज का इंतजार कर रहा था, वो मुझे पुकारता है और मेरे भीतर एक झनकार सी बज उठती है, जैसे किसी ने सितार की मिजराब को छू दिया हो। हाँ ऐसा लगता है मुझे। और सच में ऐसा ही था, ओमी की आवाज में गीत थी और गीत की सांसों में ओमी का सुर, दोनों एक दूसरे में इस तरह घुले थे कि अलग करना मुश्किल था, जैसे नदी में समाया आसमानी रंग, दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे बिना कहे बिना जताए।

0: उसे अच्छी तरह ध्यान है कि कॉलेज में इस जोड़ी की कितनी चर्चा थी। वो अचानक सोच में पड़ जाता है और खुद से ही पूछ बैठता है, पता नहीं
1: दोनों कैसे होंगे, कहाँ होंगे। जरूर दोनों ने शादी कर ली होगी, शायद इसीलिए यहाँ आना कम हो गया होगा। क्या पता कहीं शहर छोड़कर तो नहीं चले गए होंगे। काश कोई ओमी को ये बता दे कि मैं समय से पहले ही घर आ गया हूँ। काश कोई ओमी को बता दे। वो करवट बदलता है, उसके भीतर बेचैनी है। कैसे वो अपनी बात ओमी तक पहुंचाए, पता नहीं ओमी कहाँ है, क्या पता। कब से उससे बात नहीं हुई, हर रात यही सब सोचते हुए करवटों में बीतती है उसकी। अधनींदी सी हालत में वो बीते वक्त की परछाइयों को पकड़ने के लिए दौड़ता रहता है। बीती जिंदगी की यादें उसके भीतर शोर मचाती रहती हैं, जबकि सामने अजब सा सन्नाटा रहता है। वो उस कागज की तरह था जिस पर कुछ लिखकर मिटा दिया गया हो। न उस कागज पर लिखे को पढ़ा जा सकता था, न वो ऐसा कोरा था कि जिस पर कुछ नया लिखा जा सकता हो। बिखरी बिखरी यादें उसके जहन में आती जाती रहती। वो फिर जा पहुंचा उसी जलसे में जहां ओमी गाना गाकर उठा था और भीड़ उसे घेरे खड़ी थी। ओमी हर किसी से बात कर रहा था, मगर उसकी आंखें उधर कोने में खड़ी गीत की तरफ देखे जा रही थीं। गीत भी उसे ही देख रही थी और खुश हो रही थी कि कितने फैन थे उसके इर्द गिर्द। वो दूर से ही उनकी गिनती कर ही रही थी ताकि ओमी को बता सके। इतनी देर में उधर से मोहित बैंड के कलाकार गुजरने लगे। उसके पास से निकलते हुए उसके सिंगर मोहित ने ऊंची आवाज में कहा,
2: हीरे और पत्थर में फर्क करना सीख ले गीत, हीरा भी मैं हूँ और हीरो भी मैं ही।
0: मोहित की बात पर उसके साथियों का ठहाका गूंज उठा। गीत ने भले ही उसकी बात पर लापरवाही से कंधे उचका दिए, मगर ओमी इसे हल्के में नहीं ले पाया। वो भीड़ का दायरा तोड़कर मोहित की तरफ बढ़ा। उसके फैन भी उसके पीछे पीछे हो लिए और देखते ही देखते बैट बल्ले निकल गए। अचानक ओमी ने देखा कि गीत को मोहित के साथियों ने घेर लिया था। ओमी सब कुछ भूलकर उस चक्रव्यूह में दाखिल हो गया, जिससे बाहर निकलने के लिए गीत भरपूर कोशिश कर रही थी। ओमी के पीछे उसके दोस्त भी आ गए। भीड़ में पता नहीं कौन किस पर हावी था। चीख पुकार के बीच गोली चलने की आवाज आई और कुछ ही देर में सायरन बजाती एम्बुलेंस आ पहुंची थी और गीत को जिसमें चढ़ाया जा रहा था। उसके कपड़े खून में भीगे हुए थे।

कातर नजरें ओमी को ढूंढ रही थीं। गीत बेआवाज उसे पुकार रही थी। ओमी महसूस कर रहा था कि अगर गीत को कुछ भी हो गया तो उसकी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ओमी मन ही मन गीत को पुकार रहा था। हाँ, मन ही मन गीत को पुकार रहा था।

एम्बुलेंस के बजते हूटर की तेज आवाज से उसकी नींद उचट गई और वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। अच्छा हुआ कि उसकी नींद टूट गई। वो उस घटना को सपने में भी दोहराना नहीं चाहता था। उसने अपनी आंखें कस कर मूंद ली। वो जीवन के उस प्रसंग को पूरी तरह नकार देना चाहता था जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। मगर आंखें बंद कर लेने पर वो दृश्य और साफ साफ दिखने लगता था। आखिर वो उठकर बैठ ही गया, सोने की जबरन कोशिश छोड़ दी और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर अंधेरा था, मगर उसकी चेतना में वो दृश्य जस का तस कैद था, जिसे वो कभी दोहराना नहीं चाहता था। उसका ऐसा अतीत जिससे उसका वर्तमान इस तरह चिपका था कि उसे कभी अलग ही नहीं किया जा सकता था। यही वो पल था जहां से बदल गई थी उसकी दुनिया, वो दुनिया जो ओमी की दिलकश आवाज से गुलजार थी, वो दुनिया जिसमें गीत की मासूमियत भरे प्रेम का दरिया छलकता रहता था। मगर उस दिन सब कुछ बदल गया था। भुलाने की लाख कोशिशों के बावजूद उस दिन की घटना उसके जहन में कब्जा करके बैठी थी। उसे अच्छी तरह ध्यान है कि मोहित के एक साथी ने पिस्तौल निकाल ली और ओमी की ओर घुमा दी। बचने की कोशिश में ओमी बगल घूम गया और गोली उसके पीछे खड़ी गीत के सिर पर लग गई। ओमी ये देखकर अपना आपा खो बैठा और उस व्यक्ति पर झपट पड़ा। हाथापाई में पिस्तौल छिटक कर दूर जा गिरी। ओमी तूफान की तरह पिस्तौल की ओर लपका। वह सोच की सुरंगों में गहरे जा घुसा था कि अचानक बरामदे में जलती बत्ती गुल हो गई। शायद बिजली चली गई थी, लेकिन पंखा चल रहा था। हो सकता है बल्ब फ्यूज हो गया हो, पूरी रात जलता रहा था। अब इस अंधेरे में ओमी उसे कैसे ढूंढ पाएगा? वो बेहद परेशान हो गया ये सोचकर। ऐसा ही परेशान वो उस दिन भी था जब ओमी पिस्तौल उठाने लपका था। वो जानता था कि इस वक्त अगर ये पिस्तौल ओमी के हाथ लग गई तो वो सारी दुनिया तहस नहस कर डालेगा, तांडव मचा देगा। उसने बिना एक पल गंवाए ओमी से पहले खुद वो पिस्तौल अपने हाथ में उठा ली और ओमी को गीत का ध्यान रखने का इशारा किया, जिसे खून से लथपथ हाल में एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा था। जीवन में आया ये

कल बीत कर भी नहीं बीता और उसे आज भी उसी तरह उद्वेलित कर रहा था। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखों को जोर से भींच लिया, जैसे वो आगे की घटना को रोक देना चाहता हो, ताकि वक्त वहीं थम जाता और वो न होता जो हुआ।

वो दोबारा बिस्तर पर लेट जाता है, सोने की कोशिश करने लगता है, मगर उसे लगता है कि तब से आज तक वो नींद में ही तो जीता रहा और इसी अवस्था में इतने बरस गुजार दिए। वो करवट बदलता है और साथ ही दृश्य बदलता है। वो देखता है उसके हाथ में पिस्तौल है और पुलिस उसे पकड़ कर लिए जा रही है। ओमी उसे रोकना चाहता है, उसके पीछे पीछे आ रहा है, मगर वो ओमी को रोक देता है। तो गीत का ध्यान रख, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, वो ओमी को देखकर बुदबुदाता है। ओमी दौड़कर एम्बुलेंस में जा बैठता है। उसके बाद कोर्ट कचहरी, पेशी पर पेशी, हर पेशी पर ओमी आता है, पीछे की बेंच पर बैठता है, खामोश बेबस। वो ओमी को देखकर भी नहीं देखता कि कहीं पुलिस को ओमी पर किसी तरह का शक न हो जाए। उसे कुछ याद नहीं कौन उसकी वकालत करता है और वकालत में क्या क्या कहता है। वो बस खामोशी से सबकी दलीलें सुनता रहता है, न किसी का समर्थन करता है न विरोध। उसकी चुप्पी को हामी समझा जाता है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। ओमी दूर से उसे जेल जाता देखता रहता है। ओमी की आंखों से झांकते सवालों और उसमें तैरती अंतहीन बेबसी को अनदेखा कर वो जेल की सलाखों में कैद हो जाता है।

हर रात यही कहानी कई कई तरह से उसकी आंखों में घूमती रहती है। हर रात वो बीच नींद में जाग जाता और फिर यादों का अंतहीन सिलसिला चल पड़ता। प्याज के छिलकों की तरह एक के बाद एक घटनाओं का सिलसिला उसे मथता रहता। वो याद करने लगता कि जेल जाते वक्त ओमी ने धीरे से उससे कहा था कि वो उसका इंतजार करेगा, उसके पीछे इस घर का ख्याल रखेगा। वह ये सब कतई दोहराना नहीं चाहता। वह उस सारी कहानी को भूल जाना चाहता है। उस रात भी इसी कोशिश में लगा था कि दिमाग में छपी इस दर्दनाक इबारत को किस तरह मिटाया जाए कि अचानक कहीं दूर से उसके कानों में कोई आवाज सुनाई पड़ती है, एक मीठी तान, ऊंची तान, सुरीला आलाप। अरे अरे, ये आवाज तो ओमी की है। हाँ, ओमी की ही तो है, शत प्रतिशत ओमी की। ये ओमी ही है, ओमी ही है। वो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठता है। मैं जानता था ओमी जरूर आएगा। मैं जानता था वो जरूर आएगा, इसीलिए तो बत्ती जला रखी थी मैंने। हाँ, मगर कहाँ, बल्ब तो फ्यूज हो गया था, पर ओमी तक मेरी आवाज पहुंच गई होगी। देखा, अंधेरे की टोह लगाता ओमी आ ही गया मेरे पास। मैं आया, बस तुरंत आया। आता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ ओमी, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, कहता हुआ वो दरवाजे की तरफ लपका। चिटकनी खोलने की जल्दबाजी में हाथ दीवार से टकरा कर छिल गया, मगर उसे सुध कहाँ थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, आगे पीछे झांका, वहां कोई दिखाई नहीं दिया। ओमी, जरूर तू मेरे साथ मस्ती कर रहा है, यही कहीं छुपा होगा तू बाहर, है ना? कहाँ है ओमी? ओमी कहाँ है तू? कहाँ छिपा है ओमी? देख, सामने आ जा, कहाँ है? वो दरवाजे से बाहर निकल आया, सीढ़ियों की तरफ लपका, मगर वहां भी कोई नहीं था। कुछ पल को वो मायूस तो हुआ, मगर फिर अपनी बेवकूफी पर खुद ही हंस पड़ा। अरे, आवाज तो उधर खिड़की की तरफ से आ रही थी और मैं यहाँ दरवाजा खोलने आ गया। वो खुद पर ही हंसने लगा और दौड़कर घर के पिछवाड़े में बगीचे की तरफ दौड़ा। उसके भीतर का कौतूहल देखते ही बनता है। जिस पल का वो इतनी रातों तक जगकर इंतजार करता रहा, आखिर वो सफल हुआ। हड़बड़ी के बावजूद वो दबे पांव घर के पिछवाड़े की तरफ बढ़ता है। बेतरतीब लताओं का जाल उसे किसी जासूसी फिल्म का आभास दे रहा है। अंधेरे उजाले के बीच हर पेड़ के पीछे कोई साया छुपा सा लग रहा है। वो धीमी आवाज में पुकारता है ओमी को, ओमी, ओमी, ओमी, मगर कोई उत्तर नहीं मिलता। ओमी, वो फिर पुकारता है, इस बार थोड़ी तेज आवाज में पुकारता है, ओमी, सुन रहे हो ओमी? पीछे की तरफ हल्की सी सरसराहट मालूम पड़ती है। वो हौले से घूमकर देखता है, मगर ओमी कहीं नहीं दिखता। अलबत्ता एक बिल्ली जरूर झाड़ियों से निकलकर दूसरी तरफ भाग जाती है। वो मायूस हो जाता है, उसकी आंखें सुनसान सड़क को टटोलती हैं, मगर दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। अंधेरा और घना होने लगता है, इतना घना कि जिसमें परछाई भी दिखाई न पड़े। आखिर वो ओमी को कहां से देख पाता? वो लौटकर कमरे में आ जाता है, गहरी सांस भरकर वापस बिस्तर पर लेट जाता है।

अगली सुबह जब वो सोकर उठा तो धूप की तेज किरण आंखों पर पड़ रही थी। वो बहुत व्याकुल था। अब वह और सब्र नहीं कर सकता था। उसे ओमी को खोजना ही था और ये काम वो अकेला नहीं कर सकता था। उसे किसी के मदद की जरूरत थी। वो उठकर पड़ोस में जाने को बढ़ा। हाँ, हो न हो, वे जरूर बता पाएंगे कि मेरे पीछे यहाँ कोई कभी आया था और वो कहाँ रहता है। मैं जाकर पड़ोस में पूछ लेता हूँ। मगर दरवाजे पर दस्तक देने से पहले वो ठिठक गया। किसी ने चेताया कि अब वो क्या करने जा रहा है। वो सोचने लगा कि पड़ोसी को अपने बारे में क्या बताएगा, और ये भी कि वो इतने सालों तक कहाँ रहा और आज अचानक कैसे आ गया, और ओमी को क्यों ढूंढ रहा है। वो एक सजा याफ्ता मुजरिम था। ये जानकर पास पड़ोस के लोग पता नहीं उसके साथ कैसे पेश आए। हो सकता है उससे डरने लगे, अपने बच्चों को भी उससे बचकर रहने की हिदायत दे डाले। ऐसे में उसकी सहायता कौन करता। वो बहुत असहाय हो गया। फिर उसे ध्यान आया कि जेलर साहब उसे बहुत मानते थे। वो जेलर साहब की ओर जाने को लपका। सोचने लगा, क्यों ना जेलर साहब से ही मदद ले लूं। हाँ, उनकी वजह से ही तो मेरी सजा 2 साल कम हो गई और मैं जेल से छूटकर बाहर आ गया। हाँ, वो बहुत समझदार हैं। जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। हाँ, जेलर साहब के पास जाता हूँ, वहीं जाता हूँ मैं। वो सोचता है कि जेलर साहब कितने भले और मददगार हैं, वे जरूर उसकी सहायता करेंगे। वह याद करता है कि बिना उसके कुछ कहे ही जेलर साहब ने उसकी फाइल मंगाई थी और उसकी रिहाई के लिए अपील की थी। जेलर साहब भी एक ऐसे इंसान थे जिनसे वो अपने मन की बात कह सकता था और वही कोई रास्ता भी सुझा सकते थे। बस फिर क्या था, वो जल्दी से तैयार होकर जेल की तरफ निकल पड़ा।

0: प्यार।
1: क्या हुआ, घर में मन नहीं लगा? जेलर साहब ने पूछा। वो सीधा मुद्दे पर आते हुए बेचैनी भरे स्वर में कहता है, साहब ओमी से मिलवा दो ना। ठीक है, मिलवा देंगे, पर ये ओमी है कौन? साहब जी, वो मेरे साथ ही रहता था, बहुत अच्छा गाता था, अरसा हो गया उसकी आवाज सुने। वो मेरे साथ यहां भी आया था, मुझे जेल तक छोड़ने। उसने वादा किया था साहब कि वो मेरे घर का ध्यान रखेगा। जेलर साहब सोच में पड़ गए, कौन हो सकता है, क्योंकि उनके रहते तो कभी कोई से मिलने आया नहीं। खैर, जब ये जेलर साहब इस जेल में आए, तब अन्य मुजरिमों की तरह इसकी भी पिछली कहानी से जेलर साहब पूरी तरह नावाकिफ थे। हाँ, उसके स्वभाव की नरमी से जरूर जेलर साहब को प्रभावित किया था और उन्होंने उसकी समय पूर्व रिहाई की अपील भी लगाई थी। अपील करते समय ही उन्होंने उसकी फाइल पढ़ी थी और जाना था कि ये हत्या के जुर्म की सजा भुगत रहा है। उन्हें तब भी विश्वास न हुआ था कि ये व्यक्ति किसी का कत्ल कर सकता है। खैर, जेलर साहब ने अर्दली से कहकर उसकी फाइल मंगवाई थी कि शायद उसमें ओमी का कुछ पता ठिकाना मिल सके। अर्दली फाइल लाकर देता है। जेलर साहब उसकी फाइल पलटते हैं कि अचानक खट से एक तस्वीर फाइल से नीचे गिरती है। जेलर साहब से पहले वो लपक कर तस्वीर उठा लेता है और चहक उठता है, साहब जी, साहब जी, साहब जी, यही तो है ओमी। हाँ साहब जी, यही है ओमी, इसी को तो ढूंढ रहा हूँ मैं। इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसके बिना मेरी रिहाई का कोई मतलब नहीं है साहब जी। इसे ढूंढ दो, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो। जेलर साहब सोचने लगे कि फोटो फाइल से निकली है तो इसमें इसके बारे में भी जरूर कुछ लिखा होगा। वो फाइल के पन्ने पलटने लगते हैं। शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी को दफा 302 के जुर्म में आज तारीख। जैसे जैसे वे फाइल पढ़ते जा रहे थे, सारा रहस्य खुलता जा रहा था। जब उसे यहाँ लाया गया था और रिकॉर्ड के लिए जो तस्वीर खींची गई थी, ये वही तस्वीर थी, यानी ओमी और कोई नहीं, वो खुद था। जेलर साहब समझ चुके थे कि लंबे समय तक जेल की जिंदगी जीते जीते वो खुद को ही पहचान नहीं पा रहा था। अपने कॉलेज के ओम गीत बैंड का वो सिंगर, हिंदुस्तानी और पाश्चात्य संगीत का फ्यूजन, जिसके गाने की

खासियत थी जिसकी ऊंची तान और दिलकश आवाज के कितने ही दीवाने थे, वो और कोई नहीं खुद ही था ओमी। जेलर साहब फाइल पलट रहे थे और महसूस कर रहे थे कि एक समय में वो कितना हसमुख और हाजिर जवाब हुआ करता था, कितना खूबसूरत, कितना सुदर्शन युवक, मूछों की हल्की धारी, चमकदार आंखों वाला वो युवक, संगीत की धुन पर थिरकता आवाज।

जानलेवा हमला जिसमें इसकी गोली से गीत नाम की युवती की मौत हो गई। उसके बाद से ही ये अवसाद में चला गया, ऐसे गहरे अवसाद में कि इसने खुद को बचाने की कोशिश करना तो दूर बल्कि खुद की उसकी हत्या का इल्जाम अपने सिर ले लिया। उसके वकील ने कहना चाहा कि ये गोली बचाव के दौरान गीत को लगी थी, मगर शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी अब जीना ही नहीं चाहता था। जेलर साहब समझ रहे थे कि ओमी यानी वह खुद ही खुद को माफ नहीं कर पा रहा था और उसने अपने लिए ये उम्र कैद की सजा चुनी थी। जिस तरह सभी कैदी अपनी रिहाई के दिन गिनते रहते थे, इसने कभी भी जेल से बाहर निकलने का सपना नहीं देखा। यही उसकी दुनिया थी, मगर जब जेलर साहब की मदद से उसकी रिहाई हुई तब वो खुद ही दो हिस्सों में बट गया। वो खुद की पिछली जिंदगी को थर्ड पर्सन होकर देखता रहा और खुद को ही खोजता रहा। उसके नाम के अक्षर कैदी नंबर में तब्दील हो गए। उसके भीतर का ओमी जेल की ऊंची दीवारों में दफन हो गया। उसकी आवाज की खनक लोहे की सलाखों में गुम हो गई। जेलर साहब पूछना चाहते थे कि ये कैसी और किसकी रिहाई थी, क्योंकि जिसे कैद किया गया था वो रिहा होने से बिल्कुल अलग था। कैद तो किया था एक मशहूर सिंगर को जिसकी लरजती आवाज के कितने ही दीवाने थे, मगर जिसे रिहा किया गया, ऊंची तान लेना तो दूर, वो तो किसी से दबी जुबान में भी बात नहीं करता था। चुपचाप हुक्म की तामील करना उसे बाकी कैदियों से अलग करती थी। हंसने गाने से तो उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, उसकी कोई पसंद नापसंद नहीं थी। अब वो किसी से नहीं लड़ता था, किसी से नहीं उलझता था, कोई बहस नहीं, उसमें न तो किसी तरह की जिद थी न उत्तेजना। कैद के इन लंबे वर्षों में वो एक निहायत तटस्थ व्यक्ति हो चला था, एकदम शांत और निर्विकार। अनजाने में या आत्मरक्षा में वो खुद अपनी प्रेमिका की हत्या का कारण बन गया था। इस आत्मग्लानी में घुल घुल कर उसकी जिद पानी हो गई थी और वो अपने भीतर ही भीतर खामोश होता चला गया। रिहाई के बाद अचानक वो गुमशुदा शख्स ओमी उसके भीतर उभरने लगा था और ये व्यक्ति दो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियतों में बट गया था। जेलर साहब महसूस कर रहे थे कि वो मल्टीपल डिसऑर्डर का शिकार हो चुका था, यानी एक ही व्यक्ति में अलग अलग किरदारों को जीना। वो खुद को खुद से अलग करके देख रहा था, कुछ हद तक आउट ऑफ बॉडी जैसा एहसास। ये तुम्हारी ही तस्वीर है, समझे? तुम ही ओमी हो, शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी। सुना तुमने? समझे कुछ? तुम ही हो वो ओमी। जेलर साहब ने उसकी तस्वीर उसे वापस लौटाते हुए कहा। वह कुछ समझ नहीं पाया कि जेलर साहब क्या कह रहे हैं। वो अबूद सा जेलर साहब का मुंह ताकने लगा। फिर वो अकबकाकर कुर्सी से उठा और उस फोटो को लेकर कमरे में लगे आईने के सामने खड़ा हो गया। कभी वो उस तस्वीर वाले कमसिन चेहरे को देखता तो कभी आईने में बढ़ी अपनी अधपकी दाढ़ी को। जेलर साहब कह रहे थे कि ये दोनों चेहरे उसी के हैं, मगर उन दोनों में कुछ भी तो एक जैसा नहीं था। वे दोनों शख्स एक कैसे हो सकते थे? वह पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था, खुद से पूरी तरह अनजान। वो सोच रहा था, क्या कह रहे हैं जेलर साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं ही ओमी हूं। क्या कह रहे हैं जेलर साहब, पता नहीं, पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कभी।

गीतों भरी कहानी। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अलका सिन्हा की लिखी कहानी रिहाई। वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी का था, संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र सिंह नेगी।

अभी आप विविध भारती के मुंबई केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 11 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली की गाई गजलें।

यस, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो

0: मेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: मुहूर्त देखो ना पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में?
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
6: अभी आप सुगम संगीत के अंतर्गत गुलाम अली की गाई गजलें सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल।

अभी आप सुगम संगीत के अंतर्गत गुलाम अली की गायी गजलें सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं साधना और उदित नारायण का गाया गीत फिल्म क्यों हो गया ना से। गीत के बोल हैं समीर के और संगीत अनु मलिक का।

उदित नारायण और साधना सरगम का गाया गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म क्यों हो गया ना से। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का अगला गीत फिल्म गैंगस्टर से। प्रीतम की बनाई धुन पर गीत को आवाज दी है केके ने। शब्द रचना है सैयद कादरी की।

सिंघम फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और अजय गोगावली की आवाज में। संगीत था अजय अतुल का और गीत के बोल थे स्वानंद किरकिरे के। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का अगला गीत सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में फिल्म अरमान से।

बर्फी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। संगीत था प्रीतम का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। दोपहर के 12 बजने को है। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि विकासशील देशों को अक्सर कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो कि अनुचित है। उन्होंने कहा कि भारत G20 का एकमात्र ऐसा देश है जिसने पेरिस में आयोजित COP21 शिखर सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं को समय से पूर्व ही सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा में गहराई से निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देशभर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राज्यीय परिषद से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के उपराज्यपालों को इन केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में परिषद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति होगी।

0: दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को सुरक्षा परिषद में कहा, समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैरकानूनी प्रतिबंधों या मनमाने दखल का अवसर नहीं पड़ना चाहिए। जापान के आईची नगोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल 8 से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

मुकद्दर का सिकंदर सुन गई तो आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर का गाया अनजान के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।

लता मंगेशकर शब्बीर कुमार की आवाज इन फिल्म प्यार झुकता नहीं। एस एच बिहारी के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

0: एसएच बिहारी का लिखा गीत था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आप सुन रहे थे प्यार झुकता नहीं फिल्म का ये गीत।
1: कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
2: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव से।
1: मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक तन्हाई थी। वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहाँ पहले मेरे भाई थी।
2: शनिवार 19 सितंबर को दिन में 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर की आवाज फिल्म खिलौना, आनंद बख्शी की बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

0: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बाया हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: अंजान की रचना आपने सुनी, चित्रगुप्त का संगीत था, आशा भोसले की आवाज, फिल्म थी बलम परदेसिया।
1: एक विलक्षण गायक,
2: अरे ओरे हे,
1: संगीत के साधक,
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो

0: अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45

कर ले हमसे मोहब्बत गुजरना जाए घड़ियां टूटती है पायल तो बनती है हथकड़ियां टूटती है पायल तो बनती है हथकड़ियां

0: भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहा है तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में सुहाग। फिल्म का गीत आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। यादों की महफिल ये प्रोग्राम श्रोताओं संपन्न हुआ।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जिंदगी में कश्मकश या उलझनों का भी गजब समा होता है। श्रोताओं, समझ नहीं आता कि जिंदगी में कश्मकश है या कश्मकश का ही ताना बाना है जिंदगी। कभी मोहब्बत, कभी किसी दो बातों को लेकर, दो चीजों को लेकर, या फिर कहीं घूमने जाने को लेकर, या फिर कभी शादी ब्याह को लेकर कश्मकश तो रहती ही है। एक सुलझाया तो दूसरी उलझ गई। ऐसे में करना क्या चाहिए? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि छोड़ो, चलो कहीं घूमने निकल लेते हैं, और कभी ऐसा भी लगता है कि चलो आज रेडियो पर गीतों का आनंद लेते हैं। तो विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर है आपके रेडियो सेट पर। श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए श्रोताओं का भी। अपने फेसबुक पेज पर तो हमने आज की इबारत लिखी ही है, डाली ही है, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इसे पढ़ा भी है। अपने और भी श्रोताओं के लिए, रेडियो श्रोताओं के लिए पढ़ देते हैं एक बार फिर। जिंदगी में कश्मकश अक्सर दिल की राहों से होकर गुजरती है। कभी चाहतों में उलझते हैं ये दिन ये रात, कुछ एहसान उन आंखों का। ये कश्मकश के खूबसूरत सिलसिले कभी गम की दवा, कभी रंग में बिखरते नूर की तरह नजर आते हैं, और सही गलत के दो राहे पर ला खड़ा करते हैं। शोख फूलों की मोहब्बत का एहसास, तो कभी चंदन की खुशबू को छूने की चाहत भी मन में हलचल मचाती है और अक्सर उलझन में डाल देती है। ये उलझने रूप तो बदलती हैं थोड़ा तड़पाकर, लेकिन संघर्ष के कुछ न कुछ मायने तो सिखा जाती हैं। ये कश्मकश की रातें कट भी जाती हैं और जिंदगी में नई मंजिलें, नया सवेरा होता है।

आवाज आपको बतानी है श्रोताओं। शकील बदायूनी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में संघर्ष फिल्म से। वैजंतीमाला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये नगमा था। अगले गीत में आपको बताना है कि संगीत किसका है और इस गीत में भी यही आपको बताना है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि कभी कभी जिंदगी की कश्मकश हमें उलझाती जरूर है मगर यही उलझने हमें अपने दिल की आवाज सुनना भी सिखाती हैं। कुछ चाहतें अधूरी रह जाती हैं, कुछ आंखें बिना कहे बहुत कुछ कह जाती हैं और कुछ रास्ते तड़पा कर भी हमें नई मंजिल तक ले जाते हैं। शायद हर कश्मकश के पीछे कोई सीख और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा छुपा होता है। आज की इबारत भी जैसे दिल से यही कह रही है, उलझ रहिए नहीं, बस चलते रहिए, रास्ते खुद अपनी मंजिल बता देंगे। एक और श्रोता लिखते हैं, दिलों की राहें भी अनोखी इम्तहान लेती हैं, कभी मृदुल सफलता तो कभी कसहली कड़वाहट से भरी कश्मकश भंवर में उलझ इंसान स्वयं एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है और स्वयं को ढूंढता है। नूर के लिए तरसती निगाहों में उसे मंजिल भी एक मरीचिका सी प्रतीत होती है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज जो शब्द हैं कश्मकश मोहब्बत उलझन जिंदगी संघर्ष रात, इन शब्दों पर आधारित गीत सुनने को मिल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी की कश्मकश दिल की राहों से होकर गुजरती है, कभी चाहतों में उलझती है, ये दिन ये रात कुछ एहसास दिला जाते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है, अक्सर मेरा मन कहता है, अक्सर कोई लड़का इस हाल में एहसान होगा तेरा मुझ पर, एहसान मेरे दिल पर तुम्हारा है दोस्तों। यानी कश्मकश को लेकर जो भी कुछ गीत इनके जहन में आए

वो इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी की इस खूबसूरत कश्मकश दिल की राहों, चाहतों और सही गलत के दो राहों को बयां करता एक बेहद गहरा फिल्मी गीत जो है वो इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी की ये उलझने और जज्बात ही इंसान को भीतर से मजबूत और संवेदनशील बनाते हैं। जीवन के अनकहे एहसास, दिल की कश्मकश, दिल हमेशा किसी न किसी उलझन में उलझ कर सही राह तलाशता है। कभी कभी आंखें खामोश रहकर भी एहसान और दर्द बयां करती हैं। चाहतों, उम्मीदों और ख्वाहिशें ही इस सफर को खूबसूरत और जिंदा रखती हैं। आप अगर कलाकार भी बता दें तो क्या ही अच्छा है।

सुनील दत्त और वैजयंतीमाला पर फिल्माया गया आम्रपाली फिल्म का गीत आपने सुना। इस गीत में तर्ज थी शंकर जयकिशन की और इसके पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था तर्ज थी नौशाद की। इसका जवाब हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक दिया है। एक श्रोता लिखती है कि जीवन में जब दुविधा, मानसिक तनाव या खींचातानी होती है तब समझ में नहीं आता क्या करें। उलझन को सुलझाने में भले ही देर हो सकती है लेकिन भगवान के घर सदा के लिए अंधेरा कभी नहीं होता। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है इस गीत को इन्होंने पसंद किया है। और कश्मकश को लेकर या कश्मकश के बाद जो मंजिलें मिलती हैं उसके

0: ख्यालों को लेकर बहुत सारे गीत हमारे श्रोताओं ने भी सुझाए हैं, तो उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक बात तो बताइए श्रोताओं कि जब किसी अजनबी से पहली बार बात होती है तो बड़ी कश्मकश होती है, ऐसा कोई वाकया अगर आपको याद हो तो आप बता सकते हैं कि कभी आपको किसी से बात करने में कोई कश्मकश हुई, कोई उलझन हुई, लेकिन वो बातें इतनी प्यारी थी कि वो भी इतनी याद आई कि वो भी एक कश्मकश का कारण बन गई। और एक और सवाल का जवाब आपको ना है कि दोस्ती और प्यार इन दोनों के बीच अक्सर कश्मकश चलती है, किसी एक को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे। एक श्रोता लिखती हैं कि नई मंजिल पाने के लिए कश्मकश भरी जिंदगी में कई राहों को पार करना पड़ता है। दो प्रेमियों का मिलन वो खूबसूरत पल मन में उलझन में भी डाल देता है मन को, पर उस मीठे एहसास को पाने के लिए मन में हलचल मचा देती है और आत्मविश्वास जागरूकता है। एक न एक दिन नई मंजिल मिलेगी, नया सवेरा होगा। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मोहब्बत कश्मकश उलझन जिंदगी संघर्ष नूर रंग आंखें आंसू ये सारे शब्द हैं, तो इनसे गीत हो सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी में जो भी कश्मकश होती है वो सीधे तौर पर दिल की राहों से ही होकर गुजरती है, चाहत या तृष्णा ही इस कश्मकश का मूल कारण है। दिन रात इन्हीं चाहतों में उलझे रहना माया का प्रभाव माना जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर उलझन दुख का कारण नहीं होती, कुछ उलझनों को सुलझाने में जिंदगी बहुत गहरे सबक सिखाया करती है। और भी इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। दो सवाल जो हमने आपसे पूछा था उनके जवाब फटाफट आप भेज दें श्रोता।
1: रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा।

आप सुन रहे थे ये गीत आराधना। फिल्म का कलाकार आपको बताने हैं, एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी केवल सीधी लकीर नहीं बल्कि ये चाहतों, एहसासों और कश्मकश से भरे दिन और रातों का ये खूबसूरत ताना बना है। ये कश्मकश इंसान को अक्सर सही और गलत के दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां मन में कई तरह की हलचलें और सवाल उठते हैं। जीवन की ये उलझने और तड़प व्यर्थ नहीं जाती, ये हमें संघर्ष के असली मायने सिखाकर हमारे व्यक्तित्व को तराशती हैं। एक और श्रोता लिखते हैं, जिंदगी की यही कश्मकश ही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है, जहां दिल की राहों पर चलते हुए चाहते, यादें और फर्ज आपस में टकराते हैं, जो कभी तड़पाते हैं तो कभी चंदन की खुशबू की तरह छू कर गुजर जाते हैं। ये कश्मकश हमें कभी कभी सही और गलत के ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा करती है, जहां से कोई रास्ता नहीं सूझता। ये उलझने हमें तड़पाती जरूर है, पर यही तड़प हमें मोहब्बत का मर्म और गम को दवा बनाना सिखाती हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि जब हम दिल की राहों पर कदम बढ़ाते हैं तो उम्मीदों का एक नया आसमां खुलता है। दिल चाहता है कि सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हो, प्यार, सुकून, सफलता और रिश्ते, लेकिन जिंदगी अपनी शर्तों पर चलती है। वो हमें उन मोड़ पर लाखड़ा करती है जहां दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। यही वो बिंदु है जहां से कश्मकश की शुरुआत होती है। तो ये तो बताइए कि जब आप ऐसे उलझनों में होते हैं तो अपनी बातें किसी को कहते हैं या फिर खुद से ही फैसला लेना ठीक समझते हैं? आपको गीतकार बताने हैं श्रोताओं।

0: आजा रे आ जरा आ लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा आजा रे आ जरा आ लहरा के आ जरा आजा रे आ जरा।
1: हम से कुछ लोग ऐसे होते हैं श्रोताओं कि जब कशमकश होती है तो फैसला तुरंत ले लेते हैं। ये फैसला कुछ लोग बड़ी सोच समझ के बाद लेते हैं, यानी सोचने समझने के बाद लेते हैं। तो आप किस तरह से फैसले लेते हैं जब आपको कोई कशमकश होती है, और कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो कि जब आप किसी कशमकश में थे तो किस तरह से निकले, तो आप हमें जरूर बता सकते हैं। और ये जो कशमकश होती है कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसे में क्या रेडियो पर सुनाई देता कोई गीत आपकी कश्मकश को, आपकी उलझनों को कुछ कम करता है, तो आप हमें जरूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, दोस्ती और प्यार वैसे तो दोनों की जरूरत जरूरी है, पर दोनों में से एक को चुनना हो तो हमारा दिल दोस्ती को चुनेगा। तो इन्होंने अपनी बात तो कह दी। हमारे बाकी श्रोता भी जरूर लिखें कि दोस्ती और प्यार दोनों में से अगर आपको चुनना हो एक को, तो आप किसे चुनेंगे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि जीवन साथी ही अगर आप का सबसे अच्छा दोस्त बन जाए तो क्या बात है, और आराधना का गीत इन्हें पसंद आया। और एक और श्रोता ने लिखा है कि एक कश्मकश का सामना करना पड़ा था जब मेरी बेटी बीए इंग्लिश ऑनर्स पढ़ रही थी और टीवी भी न्यूज रीडर से प्रभावित तो हो पत्रकारिता करियर करना चाहती थी, किंतु मुझे उसकी दक्षता का अनुमान था, अतः बहुत समझा बुझाकर इस प्रभाव को दूर किया और इंग्लिश में पीजी करने को कहा, और आज वो 14 साल से आईटी सेक्टर में सीनियर पोस्ट पर है। ये उलझन दूर हुई तो क्या ही अच्छी बात है। जी हाँ, सही फैसला सही वक्त पर बहुत जरूरी होता है, और यही कश्मकश यही उलझनें फिर खुशियों में या मंजिल को पाने के लिए तब्दील हो जाती हैं।

ये गीत आप सुन रहे थे उपकार फिल्म का मुकेश की आवाज में। कमर जलाल अबादी के बोल थे, आपको संगीतकार बताने हैं और कलाकार बताने हैं। श्रोताओ, एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी भी एक झूले की तरह होती है, जैसे झूला जितना जल्दी पीछे जाता है ठीक उतना ही आगे आता है। ठीक इसी तरह सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते हैं और जाते रहते हैं, क्योंकि जिंदगी के हर फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त और हालात के भी होते हैं। हर इंसान की जिंदगी एक यात्रा है, इसे रोकर जीने से बहुत लंबी लगेगी और हंसकर जीने से कभी पूरी हो जाएगी, कब पूरी हो जाएगी ये पता भी नहीं चलेगा। जिंदगी एक अनजान किताब जैसी होती है, अगले पन्ने पर क्या लिखा है ये किसी को पता नहीं। एक और श्रोता लिखते हैं कि लिखती हैं कि जीवन के इस उतार चढ़ाव में न जाने कितनी उलझने आती हैं और जाती हैं, हमें कुछ न कुछ सिखा के जाती हैं। कभी कभी उलझे हुए रिश्ते हम चाहकर भी नहीं सुलझा सकते, एक दूर सुलझाते हैं तो दूसरा कहीं और उलझ जाता है, और कैसे सुलझाऊं मैं इस उलझन को, बताए कोई राहें धुंधली सी। तो कुछ इन्होंने अपनी पंक्तियां भी लिखी हैं। आपको कौन से ऐसे गीत हैं जो कश्मकश के हैं और आपको बहुत पसंद आते हैं? इस गीत में आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओ, और इसके पहले जो गीत आपने सुना उसमें भी कलाकार आपको बताने हैं।

नरगिस और फिरोज खान पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे रात और दिन फिल्म से। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि सबसे ज्यादा कश्मकश का समा अपने होने वाले साथी और उसके परिवार से बात करने में होती है। बहुत सारी फीमेल श्रोता मेरी बात से सहमत होंगी, ऐसा इनका लिखना है। शायद किसी नए व्यक्ति के बारे में ये लिख रही हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि सच्चा प्यार ही दोस्ती का आधार है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गीत हो सकते हैं राही मनवा, दुख की चिंता क्यों सताती है, रात भर का है मेहमान अंधेरा, चंदन सावधान। चंदन सावधान गीत तो बहुत ही खूबसूरत गीत है श्रोताओं, लेकिन आपने जो बाकी के दो पहलू दो बातें लिखी हैं राही मनवा यानी गीत के विषय में, दुख की चिंता क्यों सताती है या रात भर का मेहमान अंधेरा, तो ये तो कश्मकश के एक पहलू हो गए। कश्मकश के बहुत सारे पहलू हैं श्रोताओं, इसलिए हमने आपसे कहा था कि जिंदगी कश्मकश है या कश्मकश ही जिंदगी है, कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि कश्मकश तो हर पल साथ रहती है। एक आपसे सवाल पूछते हैं कि दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, जब ऐसी कश्मकश होती है तो दिल की सुननी चाहिए या फिर दिमाग की सुननी चाहिए। कलाकार बताएं और संगीतकार।

0: सबसे हसी ए नाम है ये, छू लेने दो नाजुक हो तुमको।
1: राजकुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया फिल्म काजल का ये गीत आपने सुना और ये तर्ज थी रवि की, हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि कश्मकश कभी भी हुई तो सोच समझ कर उस समय जो सही लगा वो किया, पर कुछ निर्णय बाद में गलत भी सिद्ध हुए। एक और श्रोता ने लिखा है कि मुकेश जी की आवाज में ये गीत जो हमने पहले आपको सुनवाया था इन्हें बहुत पसंद है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि जिंदगी आप के चाहे अनुसार ही चल सकती है क्या, भविष्य के झरोखों में क्या है इसका सिर्फ पूर्वानुमान ही किया जा सकता है, उसी के अनुसार कश्मकश के समय निर्णय लिया जा सकता है, आने वाला समय ही बताता है कि ये निर्णय सही था या गलत। एक और श्रोता ने लिखा है कि फिल्म उपकार का गीत था, भारत कुमार यानी मनोज कुमार पर फिल्म आया गया। जी हाँ, आशा पारेख भी नजर आती हैं। तो आपसे हमने पूछा था दिल और दिमाग दोनों में से आप किसकी सुनते हैं या किसकी सुनना चाहेंगे। और एक सवाल और आपसे पूछते हैं श्रोता कि क्या जब हम कॉलेज में थे तो उन विषयों को लेकर कोई कश्मकश आपके जहन में था? इस गीत को पहचानिए, फिल्म का नाम बताइए।

कॉलेज की जब शुरुआत होती है श्रोताओं, तो विषयों को चुनने में बड़ी कश्मकश होती है। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो आप जरूर लिखें। मौसम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, गुलजार का लिखा, मदन मोहन का संगीत था। एक श्रोता लिखते हैं कि दोस्ती और प्रेम में एक चुनना हो तो दोस्ती ही चुनेंगे, दोस्ती की तो बात ही अलग है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जब इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन के लिए न्यू कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बाद कॉलेज का पहला दिन था, किसी से कोई जान पहचान नहीं थी। तब काफी देर तक क्लासरूम के बाहर हम और एक अन्य लड़की टहल रहे थे। थोड़ी देर तक कोई बातचीत नहीं हुई, फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए हमने पूछा न्यू एडमिशन, तो उसने भी हाँ करके सर हिलाया, फिर बातचीत शुरू हुई। वही लड़की आज तक अच्छी सहेली है। जी हाँ, अच्छे साथी तो बहुत जरूरी होते हैं। क्या आपका भी कोई कॉलेज में अच्छा साथी बना जिसे आप शुरू में बातें करने से बहुत हिचकिचाते थे? ये फिल्म आपको बतानी है।

एक सवाल का जवाब बड़ी ही शिद्दत से दीजिए श्रोताओं, कि क्या आपके मन में इस समय क्या कश्मकश चल रही है।

अभिनेता पंकज पर फिल्माया गया कांच और हीरा फिल्म का ये गीत आपने सुना। एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी दिलों को जोड़ती भी है, जिंदगी दिलों को तोड़ती भी है। जब जिंदगी की उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, तब दिल कहता है जाऊं कहां बताए दिल। एक पैरडी जैसे इन्होंने बनाई है श्रोता, और हम इनकी सराहना करते हैं। अच्छा लिखा है इन्होंने, और हमारे जितने भी श्रोता हैं कार्यक्रम से जुड़ते हैं उन सभी का बहुत बहुत तो शुक्रिया हम कहते हैं। एक सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि जो विषय होते हैं उनको लेकर आपकी कितनी कश्मकश थी कॉलेज में, और इस समय आपके दिल में क्या कश्मकश चल रही है, अगर आप बताना चाहते हैं तो जरूर बताइए। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसी जब उलझनें होती हैं, ऐसी कश्मकश जब होती है, तो क्या कभी रेडियो विविध भारती आपका साथी बना? कलाकार आपको बताने हैं और फिल्म बतानी है।

अमानुष फिल्म का ये गीत था, प्रेमा नारायण और उत्तम कुमार पर फिल्म आया गया है। श्रोताओ, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में जिंदगी के उतार चढ़ाव, कश्मकश और उलझनों को के भाव को आज के गद्यांश ने समेटा हुआ है। अजीब है जिंदगी का ये नूर और रंग, कभी आंखों में अश्क, कभी चाहतों की उमंग, चंदन की चाहत हो या फूलों का एहसास, जिंदगी हर मोड़ पर एक इम्तहान लेती है, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर ये कार्यक्रम जो है, जब हम सुनते हैं या फिर जब हम विविध भारती सुनते हैं, तो ये हमारे

हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि दिल से यानी भावना और अंतःप्रेरणा से और दिमाग यानी तर्क और बुद्धिमता से सोचना जीवन के हर बड़े फैसले में दिल और दिमाग का तालमेल ही सही होता है।

हमारी एक और श्रोता लिखती हैं कि जीवन में हजारों बार कश्मकश आए, लेकिन मैं हमेशा अपने दिल की आवाज सुनती हूँ, फिर कोई गलत कहे या सही। इंसान का अपना भी कुछ सोच होनी चाहिए अपनी।

मोहम्मद रफी की आवाज थी और सुनील दत्त और मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। श्रोताओं, हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि विविद भारती मुंबई के श्रोता हैं हम और जीवन में आए कश्मकश और समस्याओं को इसे सुनकर हल चुटकियों में खोज लेते हैं। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। सुरीला सफर कार्यक्रम यहीं सम्पन्न हुआ।

दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं अहंकार पर। दोस्तों अहंकार इंसान का वो भाव है जो उसे उन्नति से अवनति की ओर ले जाता है। इसके विपरीत इंसान की विनम्रता उसे बड़ा और विराट बनाती है। आपके हाथ में है विकल्प, अहंकारी बनकर छोटा बनना है या विनम्र होकर विशाल बने रहना है। समय कभी एक सा नहीं रहता है। अच्छे समय में इंसान को अहंकारी नहीं होना चाहिए बल्कि अच्छे समय का आनंद लेना चाहिए। अहंकार आपको एक दिन गर्त की ओर ले जाता है।

दोस्तों, वक्त बदलते देर नहीं लगती। लोग वक्त को स्थायी मान लेते हैं, ये उनके विचारों की भूल है। आज आपके पास सब कुछ है, कल हो सकता है कुछ न हो। इसलिए जब किसी से कोई बात कहें, किसी से बुरा बर्ताव करें, तो ये ध्यान रखें कि आपके गुरूर से चूर बातों से सामने वाले का मन

कहीं आहत तो नहीं हो रहा है। कुछ लोग अहंकार में डूबकर आत्मश्लाघा में लीन हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने बारे में कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। इन बातों से बचना चाहिए।

दोस्तों, जब सचमुच किसी में काबिलियत होती है तो लदे हुए फल की तरह वो व्यक्ति विनम्र होकर झुक जाता है। कई शिखर पर पहुंचे व्यक्तियों में गुरूर जरा भी नहीं देखा गया, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति आपके आसपास जरूर होंगे जो बिना किसी लियाकत के अपनी काबिलियत के डंके पीटते नजर आएंगे। ये इंसान का अहंकार है। जब भी आप किसी से कुछ कहें तो अहंकार से भरकर नहीं बल्कि नरमी से पेश आए तो आप एक नेक इंसान कहलाएंगे। आइए त्रिवेणी तट पर अपने भीतर के अहंकार को दूर भगाने की कोशिश करें।

0: के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में है। श्री मोदी ने कहा कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में दो स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों का उद्घाटन किया। ये मेले 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। श्री सुरेश गोपी ने कहा कि रोजगार मेले राष्ट्र निर्माण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती है।

0: रही है। जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है, आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
0: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे, उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
1: श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
0: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का उल्लेख किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
2: भारत ने मैंग्रोव यानी समुद्र तटों पर उड़ने वाले पेड़ों और वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ तटीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए मिष्टी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मैंग्रोव क्षेत्रों को फिर से विकसित करने, नए पौधे लगाने और स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
3: लाइवलीहुड एंड इकोलॉजिकल रेजिलियंस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 3 न्यायाधीशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि वर्तमान में विश्व के सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का लगभग 20% हिस्सा भारत में है। श्री कृष्णन ने कहा कि सरकार ने डिजाइन प्रतिभा पर विशेष बल दिया है और लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जारी है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास के सभी पहलुओं को प्राथमिकता देगी, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला यह वायुसेना का नौवां विमान था। विदेश मंत्री डॉ एस

0: शंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक सेवा को समर्पित 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
1: युवाओं को देश की सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर 4 वर्ष तक सेवा करते हैं और इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और विभिन्न कौशल का अनुभव मिलता है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा में युवाओं की सेना में सेवा की विशेष भूमिका रही है। अग्निपथ योजना के तहत राज्य के युवा भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष फरवरी और मार्च में चंपावत के बनबसा में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सशस्त्र सेनाओं के नियमित कैडर में शामिल किए जाने का प्रावधान है। अन्य अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज और कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए वर्ष 2025 में समूह गा की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस, अग्निशमन, कारागार, वन आबकारी और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट का प्रावधान है। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विज्ञान सचिव श्री एम गणेश पिल्लई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की है।
2: इंडिया स्पेस प्रोग्राम,
3: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृषि सहित राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र अभियान और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहा है।
2: प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड लूनर लैंडिंग।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें से 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। जापान के आईची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजोहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आप सुन रहे हैं विविध भारती।

फिल्म छाया का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज थी, राजेंद्र कृष्ण की बोल सलील चौधरी की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: फिल्म ससुराल का गीत था, हसरत जयपुरी का लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज, मोहम्मद रफी की आवाज थी।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: राजकुमार फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज हसरत जयपुरी के बोलों को सुर में ढाला शंकर जयकिशन ने।
1: एक विलक्षण गायक
2: अरे ओरे
1: संगीत के साधक
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है संगीत की गहराई है भावों में।

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, मन चाहे गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी।

नमस्कार श्रोताओं, आपके रेडियो सेट पर आ चुका है आप ही के पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। खूबसूरत गीतों का ये सफर आपकी फरमाइशें और आपके पत्र और होता है आपको बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार। तो कार्यक्रम के लिए अपने रेडियो सेट के जरा करीब आइए, पास लाइए और जरा ध्यान से सुनिए, कहीं आपके पसंदीदा गीतों में से तो कोई गीत आज के कार्यक्रम में शामिल नहीं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का प्रोग्राम मन चाहे गीत में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

डिस्ट्रिक्ट साबरकांठा से इस गीत की फरमाइश भेजी विनोद भाई बी वाघेला ने और इसी गीत को सुनना चाहते थे छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सनी, कोमल यादव और ये पत्र आया शॉफ रोड राजकोट सौराष्ट्र से जुबैदा खातून, रुबीना हीना, नूर मोहम्मद लखानी, सिराज और विहान लखानी की ये फरमाइश थी और प्रमिला गंज आलोट के हमारे श्रोता हैं रतलाम के, मध्य प्रदेश के बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, अतुल कुमार पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने इस पत्र को भेजा। शीतला नगर दुर्ग के हमारे श्रोता हैं अर्पा पैरी, पार्वती, राधा भगवान और शिव चंद्राकर। आपने सुना था दो रास्ते फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज थी।

आसपास फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और गीतकार आनंद बख्शी थे। ग्राम सनोतिया जिला गुना मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हैं मांगीलाल चंदेल, अरविंद अशोक, राजकुमार और हिमांशु और कालेगांव जाफराबाद की ये फरमाइश है। सुधाकर राजे, डॉ प्रशांत राजे, संचित मोताला के हमारे श्रोता हैं प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख करडा रोड से, कुमारी सानवी देशमुख और कुमार सरवद देशमुख की ये फरमाइश है। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सभी सदस्य और इसी गीत को सुनना चाहते थे। अम्बेडकर नगर अकोले के हमारे श्रोता प्रकाश खेलकर, मीराताई खेलकर, आरती संतोष खेलकर, पूजा खेलकर और इनके परिवार के सभी सदस्य। श्रोताओं, विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे थे फिल्म अमानत में मोहम्मद रफी की आवाज साहिल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। ये हमारे श्रोता हैं शाहनगर करवीर जिला कोल्हापुर के बाजीराव ढेरे, संगीता और हर्षद ढेरे, और इसी गीत के लिए हमें पत्र भेजे गुलमोहर सिटी एक्सटेंशन होशियारपुर जालंधर रोड से रमाकांत शर्मा, रवि शर्मा, अक्षय शर्मा। और ये पत्र आया वरोड़ा चंद्रापुर से लवकुश खाडिलकर, उमा देवी, रोहित और प्रणीत की ये फरमाइश है। इसी गीत को सुनना चाहते थे राजावत कॉम्प्लेक्स से शाजापुर के हमारे श्रोता हैं ये मनमोहन राजावत, मधु राशि, चितरंजन, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, स्वीटी, रिया, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य, और सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा, मनीषा चौधरी, ये हमारे कोलकाता के श्रोता हैं।

कच्चे धागे फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, आनंद बख्शी की रचना आप सुन रहे थे। बाबुलगांव महाराष्ट्र के हमारे श्रोता इस गीत को इन्होंने पसंद किया था। प्रकाश पाटिल, अलका पाटिल, दीप्ति तृप्ति, यशोदीप की ये फरमाइश है। और दूधसागर मार्ग राजकोट के साजिद कुतुबुद्दीन मकसूद शाहीन चाणक्या ने फरमाइश भेजी। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका और सुचा सिंह ने इस गीत को सुनना चाहा। जिला लुधियाना के हमारे श्रोता हैं राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष बिट्टू, दीपक और इसी गीत को सुनना चाहते थे। बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार के ही हमारे श्रोता हैं डॉक्टर डब्लू, डॉक्टर सोनम और दानिश अंसारी। सलीमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी ने इस गीत को सुनना चाहा। और जेल रोड दिल्ली के हमारे श्रोता हैं लाल बाबू, दीवाना और दिव्या भारती।

गोलाबाजार बक्सर के हमारे श्रोता मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, आयुष और सांगवी की ये फरमाइश थी। खांजीपीर उदयपुर के हमारे श्रोता डॉक्टर निदा नाहिद फरीदा, जब्बार मोहम्मद, अशरफ खान, मंजू निमी, थाना रोड बक्सर से इस गीत को पसंद किया। आशीष सतीश और आयुष ने और लक्ष्मी बाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर के हमारे श्रोता हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण गणेश और संजना परी मालती स्वाति प्रयाग चौधरी की फरमाइश है ये।

विश्वेश्वर शर्मा का लिखा है ये नगमा, आपने सुना शंकर जयकिशन की तर्ज थी, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजें थी, आत्मा राम फिल्म का ये गीत था श्रोताओ, और यही है आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। कार्यक्रम में सहयोग मिला योगिता जाधव और धनाश्री साठे का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले, और अब दीजिए संगीता श्रीवास्तव को इजाजत, नमस्कार, लेकिन भेजते रहिए अपने पत्र, क्योंकि आपके पत्रों का हमें भी रहता है कार्यक्रम के लिए इंतजार। मन चाहे गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है, रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: नाट्य तरंग, नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटक स्वप्न वासव दत्ता। इसका पहला भाग, ये महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। रूपांतरकार हैं कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।
1: जैसा मेघदूत में वर्णित है, मालवांचल के ग्राम वृत्त वत्सराज उदयन और अवंतीराज कन्या वासव दत्ता

प्रणय गाथा के ज्ञाता थे। इसी प्रणय गाथा को महाकवि भास ने अपने दो नाटकों प्रतिज्ञा यौगंधरायण और स्वप्न वासव दत्ता में गूंथा है। प्रतिज्ञा यौगंधरायण में वत्सराज उदयन का अवंती सीमा पर बंदी होना, अवंतीराज महलों में रहकर उदयन का वासव दत्ता को वीणा की दीक्षा, उनका प्रणय और महाअमात्य यौगंधरायण के प्रयत्नों से उदयन की मुक्ति और उदयन द्वारा वासव दत्ता का हरण कर कौशाम्बी ले जाना वर्णित है। स्वप्न वासव दत्ता उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है, भास की विख्यात नाट्य कृति है स्वप्न वासव दत्ता।

0: योगेंद्रायण कैसा वन है ये, हमारी भाग्य रेखा की तरह ये घनी काली वनराजी। चलते चलते थक गई हूँ मैं, ये दिन भी देखना थे हमें।
1: आर्य वासव दत्ता, चिंतित न हो।
0: आर्य, कैसा है ये नियति का क्रूर चक्र, सोच कर कांप उठती हूँ। इधर आर्य पुत्र का शत्रुओं द्वारा पराभव, कौशाम्बी के राज महलों को त्याग, लावानक ग्राम में राज परिवार का निवास,
1: और इधर महाराजा उदयन का आखेट के लिए वन गमन, उधर लावानक ग्राम में भयानक अग्नि प्रकोप।
0: नहीं नहीं नहीं महामात्य, उसे याद न दिलाए, सिर जाती हूँ उसे याद कर। आपने ही मुझे उन अग्नि ज्वालाओं के बीच से बचाया, आप न होते तो क्या होता मेरा। और अब हम इस वन भूमि के बीच खड़े हैं।
1: हमें अपना करणी करना है देवी वासवदत्ता, मुझे विश्वास है एक दिन हम इन समस्त विपदाओं से अवश्य मुक्त होंगे।
0: हाँ, यही हो महामाती योगेंद्रायण,
1: यही होगा देवी, यही होगा। देवी, स्मरण है न आपको मेरी प्रतिज्ञा, जब तक हम शत्रुओं का पराभव कर अपने वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी पर पुनः अधिकार न कर ले, महाराजा उदयन को फिर सिंहासनारूढ़ न कर दे, मैं इसी तापस्वेश में रहूंगा। और तब तक आप भी महाराजा उदयन को नहीं दिखेंगी।
0: आर्य, आर्य पुत्र के मंगल के लिए ही आपने ये कठोर प्रतिज्ञा की है, मैं इस प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगी।
1: तो देवी, अब से मैं महाआमात्य योगेंद्रायण नहीं बल्कि एक परिव्राजक हूँ, और आप वत्सराज उदयन की महारानी नहीं बल्कि मेरी प्रिय भगिनी अवंतिका है।
0: हाँ, मैं इसे याद रखूंगी।
1: देखिए वहां सामने, देखिए जहां मृत निर्भय विचर रहे हैं, चारों दिशाओं से यज्ञ धूम उठ रहा है, जहाँ व्यवस्थित अरण्यावली है।
0: हाँ?
1: मुझे लगता है वहाँ तपोवन है, क्यों न हम वहाँ चलें?
0: हाँ आर्य, यही उचित होगा, चलिए।

0: मार छोड़ दें, आज हट जाए मार छोड़ दें।
1: आश्चर्य, यहाँ भी लोगों को हटाया जा रहा है। पूजनीय और वलकलधारी आश्रम वासियों में ये लोग क्यों भय उत्पन्न कर रहे हैं? ये अभिमानी इस तपोवन के साथ गांव का सा व्यवहार क्यों कर रहे हैं?
0: मार छोड़ें, ए आर्या हट जाएं, मार छोड़ दें।
2: पानी गंध राय, ये कौन है जो आश्रम वासियों को यूं हटा रहे
0: हैं? ए आर्या मार छोड़ दें।
2: देखिए ना, यहाँ तो मुझे भी हटाया जा रहा है। आर्य, अब तो ये थकावट मुझे इतना दुखित नहीं कर रही जितना कि ये अपमान।
1: धैर्य धैर्य देवी, अपने पतिवत्स राज उदयन के विजयी होने पर आप फिर प्रतिष्ठित होंगी। काल चक्र के घूमते अरों की भांति इस जगत का भाग्य भी घूमता है।
0: मार छोड़ दे आर्य, हट जाए, मार छोड़ दे।
3: संभाषण, लोगों को इस तरह न हटाओ।
4: आश्रम वासियों के प्रति कठोर व्यवहार उचित नहीं। ये मुनिजन नगर के अपमान से बचने के लिए इस वन में निवास करते हैं।
5: जो आज्ञा आर्य कंचुकी, ऐसा ही होगा।
1: ये कंचुकी ज्ञानवान है। देवी वासवदत्ता, आइए इसके पास चले। आर्य कंचुकी
4: जी,
1: आप रनिवास की प्रतिष्ठा के ज्ञाता हैं, ज्ञानवान हैं। हमें बताएं, लोगों को यहाँ राज से क्यों हटाया जा रहा है?
4: तपस्वी, हमारे मगध राज महाराजा दर्शक की बहन राजकुमारी पद्मावती महाराजा की माता महादेवी से मिलने यहाँ आश्रम में आई है।
1: अच्छा, तो ये ही वो मगध राज कन्या पद्मावती है जिनके लिए पुष्पक भद्र आदि भविष्य दृष्टाओं ने घोषणा की है कि ये हमारे स्वामी वत्सराज उदयन की द्वितीय रानी होगी। अपने स्वामी की भावी वधु को देखकर मेरे मन में ममत्व साक्षात्कृत हो रहा है।
6: राजकुमारी, आश्रम में प्रवेश करें।
7: स्वागत है राजकुमारी।
8: स्वागत है राजकुमारी।
7: आर्य तपस्विनी, हमारा अभिवादन स्वीकारें।
8: आयुष्मान हूँ, ये आश्रम अतिथियों के लिए उनके गृह समान ही है।
7: इन वचनों के लिए अनुग्रहित हो आर्य। बहुत सुंदर आश्रम है, कैसी शांति, कैसा सुख है यहाँ।
6: इधर इधर पधारिए राजकुमारी, इधर आइए।
8: कितनी सुंदर है राजकुमारी पद्मावती। मगध राज की सुंदर भगिनी के लिए किसी राजकुल ने विवाह प्रस्ताव तो किया ही होगा।
6: उज्जैनी अधिपति महाराजा प्रद्योत महासेन ने अपने राजकुमार की ओर से दूध भेजा है।
7: उज्जैनी से मेरे पिता अवंती नरेश ने दूध भेजा है। ओह, कितना अच्छा। तब तो पद्मावती मेरी आत्मिया हुई।
8: आर्य, क्या आश्रम में ऐसे मुनिजन हैं जो मेरी दी भेंट स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें? आर्य कंचुकी,
4: राजकुमारी की जो इच्छा।
3: आश्रम के तापस जन सुने, मगध राज कन्या पद्मावती आपको धर्मार्थ भेंट लेने आमंत्रित करती हैं। जिसे जो वस्तु इच्छित हो बताएं।
1: आर्य कंचुकी, मुझे कुछ मांगना है।
8: अवश्य मांगे, मेरा तपोवन में आना सार्थक रहा। इस आश्रम के तपस्वी हर तरह संतुष्ट हैं। ये मांगने वाला निश्चय ही कोई आगंतुक है।
4: बताएं, बताएं तपस्वी, आपकी इच्छा बताएं।
1: राजकुमारी, ये मेरी बहन अवंतिका है। इनके पति विदेश में है। मेरी इच्छा है कुछ समय इन्हें आप अपने साथ रखें, आप इनका परिपालन करें। देवी, मैंने धन वस्त्र की इच्छा से ये काषाय वस्त्र धारण नहीं किए हैं।
8: फिर क्या चाहते हैं आप?
1: आपने धर्म प्रियता का परिचय दिया, अतः आप निश्चित ही मेरी भगिनी की चरित्र रक्षा कर सकती हैं।

0: चरित रक्षा
1: क्या
0: चरित रक्षा? राजकुमारी, इनका मनोरथ बड़ा है, धन प्राण और यहाँ तक के तब भी सुखपूर्वक दिए जा सकते हैं, लेकिन धाती की रक्षा।
2: आर्य कंचुकी, घोषणा के बाद पुनः विचार उचित नहीं। अब ये जो कुछ कहे वही संपन्न हो।
0: जो आ गया राजकुमारी जी।
3: अनुग्रहित हुआ मगध राजकुमारी पद्मावती, जाओ अवंती की देवी के समीप जाओ।
2: आह, कैसा सुंदर मुख है इसका। चेटी, अवंतिका को देख ही लगता है जैसे ये कोई राजकन्या हो।
4: आर्य, लगता मुझे भी यही है, इन्होंने निश्चित अच्छे दिन देखे हैं।
2: आओ अवंती के, हमारे साथ चलो।
3: एक भार उतरा, जैसा साथी मंत्रियों के साथ निश्चित किया था कि वैसा ही संपन्न हुआ। जब मेरे स्वामी वत्सराज उदयन कौशाम्बी को जीत कर सिंहासनारूढ़ हो गए, तब उन्हें देवी वासवदत्ता को वापस लौटा दूंगा। उस समय यही मगध राजकुमारी मेरा साक्ष्य करेंगे, और ऐसी भविष्यवाणी भी है।
5: समुचित रीति से कहे ऋषि वचनों को भाग्य भी मिथ्या नहीं करता।
6: बहुत थक गया हूं, मध्याह्न हो रहा है, पर विश्राम कहां करूं? कहां जाऊं, किधर जाऊं? अरे, ये सामने शायद तपोवन है। हाँ, तपोवन ही है। निर्भय हिरण और गायों के दल घूम रहे हैं, फल फूलों से लदे वृक्ष, प्रति दिशा उठता यज्ञ धूम। निश्चित ही तपोवन ही है। चलो देखूं।
7: ब्रह्मचारी पधारे।
0: आश्रम सबका समान रूप से होता है, हम आपसे पहले यहाँ आए, आप हमारा आतिथ्य स्वीकारें। श्रीमान, लीजिए शीतल जल ग्रहण करें।
6: धन्यवाद। अब थकान दूर हुई।
0: अतिथि ब्रह्मचारी, ये हैं हमारी मगध राजकन्या पद्मावती।
2: प्रणाम।
6: आयुष्मान भव।
0: ये हैं इन तपस्वी की बहन अवंतिका।
2: प्रणाम।
0: और ये इनके भाई।
8: प्रणाम मुनिवर।
0: और ये आश्रम की तपस्विनी सेविका चेटी।
2: प्रणाम मुनिवर।
6: आयुष्मान भव।
8: ब्रह्मचारी, आप कहां से आए, कहां जाएंगे, निवास स्थान कहां है आपका?
6: मैं मगध की राजधानी राजगृह का ही रहने वाला हूं। वेदों के विशेष अध्ययन के लिए वत्स देश के लावणक ग्राम में रहता था।
2: लावणक ग्राम में।
8: अध्ययन समाप्त हुआ?
6: नहीं तपस्विन, नहीं।
8: नहीं, फिर वहां से चले आने का प्रयोजन?
6: वहां एक दुखद घटना घटी।
8: वो क्या?
6: वही लावण ग्राम में उदयन नाम के राजा रहते थे।
2: स्वामी।
6: अवंती राज प्रद्युत महासेन की कन्या उनकी परम प्रिय पत्नी थी।
2: मेरे स्वामी।
6: जब राजा अन्यत्र आखेड़ खेलने गए, तब गांव में आग लगी। और इसके बाद रानी की रक्षा का प्रयत्न करते अमात्य योगन्धरायण भी उसी अग्नि में गिर पड़े।
2: क्या?

0: आवाज पे भी गिर पड़े। फिर मुनि भाई?
1: फिर उदयन लौटे और ये संवाद सुना। प्रिय वियोग से दुखी हो वे उसी अग्नि में प्राण त्यागने को उद्यत। मंत्रियों ने बड़े प्रयत्नों से उन्हें रोका।
2: अपने प्रति आर्य पुत्र का असीम प्रेम जानती हूँ, उसी के बल आजीवित हूँ। आज भी उनकी प्रेम वीणा के स्वर, प्रेम वीणा के स्वर मेरे कानों

0: फिर महाराज उदय रानी वासवदत्ता के जलने से शेष रहे आभूषणों को हृदय से लगा मूर्छित हो गए।
1: राजकुमारी पद्मावती, आर्या अवंती का विलाप कर रही है।
2: क्या बात है अवंती की?
3: नारो नारो अवंती के, राजकुमारी मेरी ये भगनी स्वभाव से भावुक है। हाँ ब्रह्मचारी, फिर क्या हुआ?
0: फिर धीरे धीरे राजा को चैतन्य लाभ हुआ।
1: प्रसन्नता है, वत्सराज जीवित है, उनका मूर्छित होना सुन मेरा तो हृदय शून्य हो गया था।
0: लेकिन चेतना आने पर महाराज उदय सहसा उठे और
4: हाँ वासुदत्ता, हाँ प्रिय, हाँ शिष्य, वासुदत्ता।

0: देर तक विलाप करते रहे। धन्य है वो स्त्री जिससे उसका पति इस तरह प्रेम करता है। ऐसा पति स्नेह पा वो जलकर भी नहीं जली।
1: ब्रह्मचारी, उन मंत्रियों में से किसी ने भी वत्सराज को प्रकृतिस्थ करने का यत्न नहीं किया?
0: किया तपस्वी, किया। रुम्नवान नामक मंत्री ने दृढ़ प्रयत्न किया। वे ही दिन रात राजा की यत्न पूर्वक सेवा करते रहे।
2: सौभाग्यवश आर्यपुत्र अप्रत्याशित कार्यों में दक्ष रुम्नवान जैसे मंत्री के हाथों सुरक्षित हैं। भाग्य मेरे।
1: अच्छा ब्रह्मचारी, क्या राजा पूरी तरह स्वस्थ हैं?
0: इस समय तो नहीं जानता तपस्वी, लेकिन यहाँ मैं वासवदत्ता के साथ फंसा।
3: यहाँ मैं वासवदत्ता के साथ फंसा, यहाँ उससे बातें की, यहाँ रात व्यतीत की, यहाँ कोप किया। हाँ वासवदत्ता, हाँ प्रिय, हाँ शिष्य, तुम मुझे छोड़ क्यों चली गई, क्यों चली गई?
0: इस तरह विलाप करते राजा को मंत्रीगण बड़े यत्न से संभाल पाए और बाहर ले जा सके।
1: फिर
0: जिस तरह चांद तारों के अस्त होने पर आकाश श्रीहीन हो जाता है, उसी तरह उस अनाकर्षक लावण ग्राम को मैंने त्याग दिया और अब आपके समक्ष।
4: जिसकी प्रशंसा आगंतुक करते हैं वो राजा निश्चित गुणवान है।
2: क्या महाराज उदयन अब किसी अन्य स्त्री को स्वीकार सकेंगे? अन्य स्त्री को स्वीकार सकेंगे? अन्य स्त्री को? हाँ, चीटी की तरह मेरा मन भी यही प्रश्न करता है।
0: अब सभी लोगों से मैं आज्ञा लूं। आश्रम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबको मेरा आशीष।
4: प्रणाम मुनिवर।
1: अच्छा ब्रह्मचारी, प्रणाम। अब मैं भी देवी पद्मावती से जाने की अनुमति चाहूंगा।
4: आर्य, आपके बिना आपकी ये भगिनी दुखी तो नहीं होंगी?
1: नहीं राजकुमारी, साधु जनों के हाथ हो ये दुखी नहीं होगी। अच्छा, मुझे आज्ञा दे, मैं जा रहा हूं अवंत।

0: राजकुमारी, आश्रम प्रवेश का समय हो गया। इधर इधर पधारे राजकुमारी।
1: शांति वेला हो रही है, पंछी बसेरा ले रहे हैं, मुनिजन जल तर्पण कर रहे हैं, सूर्य अस्ताचलगामी हो रहा है।
0: सब लोग आश्रम प्रवेश करें।
2: चलो कंचुकी चेटी, चलो।

0: तुम्हारी बहन।
1: अब अंति के अब बस करो, अब नहीं खेल सकूंगी।
0: इन्हें राजकुमारी कुमारी का जीवन के रमणीय क्षणों का सदुपयोग करो। सुना क्या कह रही है?
1: सुन रही हूँ अवंति के। पर बताओ हमारे यहाँ की राजगृह के राजमहल में कैसा लग रहा है तुम्हें?
0: ये राजगृह के महल भी सुंदर है और इस उद्यान की सुंदरता तो बस।
1: क्या देख रही हो इस तरह मेरी ओर अपलक?
0: आज आप विशेष सुंदर लग रही हैं राजकुमारी।
1: रहने दो, तुम उपहास कर रही हो मेरा।
0: अच्छा अच्छा महासेन की भावी पुत्र वधु, मैं चुप होती हूँ।
1: ये महासेन कौन है?
0: नहीं जानती। उज्जैनी के राजा प्रद्योत, असीम सेना होने के कारण उनका नाम ही महासेन हो गया।
1: लेकिन हमारी राजकुमारी उज्जैनी का ये संबंध नहीं जाती।
0: तब किसके साथ चाहती हैं आर्य सेठी?
1: ये चाहती हैं वत्सराज उदयन को।
0: वत्सराज?
1: कुमारी पद्मावती उनके गुणों पर मुक्त है।
0: मेरे स्वामी, ये आर्य पुत्र की पति रूप में कामना करती है। नहीं नहीं,
1: क्या क्या हो देवी?
0: हाँ कुछ नहीं, मैं कह रही थी वत्सराज के साथ ही क्यों।
1: वत्सराज उदयन अत्यंत कोमल हृदय हैं।
0: जानती हूँ, मैं भी कभी उनके इस गुण पर इसी तरह आसक्त हो गई थी। उनका रूप गुण।
1: अच्छा राजकुमारी पद्मावती,
0: यदि वत्सराज उदयन कुरूप हुए तो?
1: नहीं, वे अत्यंत सुंदर हैं, दर्शनीय हैं। अवंती की, तुम उन्हें कैसे जानती हो?
0: मैं नहीं नहीं, ऐसा ही उज्जैनी के लोग कहते हैं।
1: ओह हाँ, वे अपनी ससुराल उज्जैनी के लिए तो अपरिचित नहीं।
2: कुमारी पद्मावती की जय हो।
1: कुमारी आपकी मम्मी हो गई।
0: मम्मी हो गई? बधाई हो राजकुमारी।
1: हाँ धात्री माँ, किसके साथ मम्मी हो गई राजकुमारी की?
0: वत्सराज उदयन के साथ।
1: क्या
0: वत्सराज के साथ?
1: कहाँ, कैसे? वे कुशल पूर्वक तो है?
0: हाँ वे कुशल पूर्वक है अवंती के। वे यहाँ राजगृह आए हैं और राजकुमारी पद्मावती को उन्होंने स्वीकार किया है।
1: क्या क्या स्वयं उन्होंने ये विवाह प्रस्ताव किया?
0: नहीं, वे अन्य प्रयोजन से यहाँ आए थे। हमारे महाराज मगध नरेश ने उनके आभिजात ज्ञान वय और रूप को देख यह प्रस्ताव किया है।
1: ऐसा ही है ना? तो आर्य पुत्र इसमें सर्वथा निर्दोष है।
0: मेरा मन भी यही कहता है।
1: ओ राजकुमारी बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो।

राजकुमारी पद्मावती।

पति को विवाह मंडप में छोड़, मैं यहाँ राजगृह के प्रमद वन में चली आई ताकि दुख से मुक्त हो मन बहला सकूं। मेरे दुख की भी कोई सीमा है। आर्यपुत्र, वे भी

0: मनोरथ से ही।
1: आर्या अवंतिका, आर्या अवंतिका जाने कहां गई।
2: ओ प्रियंगी लता के नीचे शिला पट पर बैठी है।
1: अरे कितने देर से मैं आपको ढूंढ रही हूँ।
0: किस लिए चेटी?
2: राजमाता का कहना है आप महाकुल से उत्पन्न हैं, स्नेहशील और चतुर हैं, इसलिए आप ही राजकुमारी पद्मावती के लिए विवाह माला गूंथे। लीजिए लीजिए फूलों की टोकरी।
0: हाय मुझे ये करना होगा, भाग्य भी कितना निष्ठुर है।
2: अरे क्या सोच रही है, जा माता उदयन मणिभूमि में स्नान कर रहे हैं, आप शीघ्र माला गूंथे।
0: ठहरो चेटी। अच्छा ये तो बताओ तुमने जामाता को देखा है?
2: कैसे हैं?
0: ऐसे हैं, ऐसे हैं जिसे मैंने कभी नहीं देखा।
2: कहना क्या सुंदर हैं?
0: धनुष वाण रहित साक्षात रतिपति कामदेव हैं।
2: अच्छा अब बस भी करो।
1: अरे क्यों रोक रही है मुझे?
2: पर पुरुष की प्रशंसा सुनना अनुचित है ना।
1: अच्छा अच्छा शीघ्र माला गूंथते,
2: मैं तो कर रही हूँ।
3: अच्छा चेटी बताओ इस फूल का क्या नाम है?
4: अविधवाकरण।
3: अविधवाकरण? जानती है इसके धारण करने से पत्नी विधवा नहीं होती।
0: तो फिर माला में इससे अधिक गूंथूंगी, अपने लिए और पद्मावती के लिए भी।
3: और इसे क्या कहते हैं?
4: सपत्नी मर्दन, यानी सौत को डहाने वाली।
0: नहीं नहीं इसे नहीं गूंथना है।
4: क्यों
0: चेटी? राजा की पूर्व पत्नी वासव दत्ता का तो देहांत हो चुका है, अब इसे गूंथने का क्या प्रयोजन।
5: जल्दी करें आर्ये, जल्दी करें, सुहागिने जामाता को विवाह मंडप में ले जा रही है।
2: हाँ हाँ लो ये माला तैयार है।
4: अरे सुंदर माला गूंथी है आपने, तुम्हें चलिए।
0: ये भी कैसा दुर्भाग्य।

स्वप्न वासव दत्ता, अभी आपने इस नाटक का पहला भाग सुना। ये महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। रूपांतरकार थे कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में। ये नाटक आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: Bombay Talkies.
1: Servants, lights, sound, camera, action.
2: दोस्तों नमस्कार। एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ, उन्होंने बाद में अपना नाम बदल लिया और रखा पूर्णिमा। पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
3: आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसी कलाकार को आमंत्रित किया है जिन्हें आप उनके बचपन से सुनते आए हैं और आज भी जब आप उनके गाए गीत सुनते हैं तो आपके और हमारे पैर थिरकने लग जाते हैं। जी हाँ, आज बॉम्बे टॉकीज में हमारी मेहमान है मधुर और दमदार आवाज की धनी गायिका पूर्णिमा। जी हाँ, वही पूर्णिमा जिन्हें बचपन में हम सुषमा श्रेष्ठ के नाम से जानते हैं। तो विविध भारती के स्टूडियो में पूर्णिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार आप सबको और मेरे सुनने वाले श्रोताओं को भी।
3: जी, हर आकाशवाणी से पूर्णिमा के गाये गीत न जाने कितने बजते रहे और आज आपको सामने पाकर मुझे लगता है हम धन्य हो गए हैं।
4: धन्य तो मैं हो गई, आप लोगों ने जिस तरह से मेरा इस्तकबाल किया
3: जी,
4: जो प्यार, जो मान मुझे आप

0: लोगों ने दिया
1: जी,
0: बहुत कम मिलता है आजकल, तो मिलता ही नहीं
1: जी।
0: पर मैंने मतलब सोचा नहीं था कि इस तरह से आप मुझे वेलकम करेंगे
1: जी,
0: तो आप सब

0: जो गायन का सफर है वो कैसे शुरू हुआ? आप हिंदी फिल्मों की पहली सफल बाल गायिका रही हैं। महज 9 साल की उम्र में आपने अपनी गायकी शुरू कर दी थी
1: जी।
0: ये सफर कैसे शुरू हुआ?
1: असल में मैंने शुरुआत तो की बहुत बचपन में।
0: अच्छा, इससे भी पहले?
1: जी जी, क्योंकि देखिए संगीत में एक मुझे वातावरण घर में मिला
0: जी,
1: विरासत में ही संगीत मिल गया तो, और मेरे मायके की तरफ की मतलब मेरी माँ, मेरी मौसियाँ बहुत सुंदर गाती हैं। माँ तो खैर अभी जिंदा नहीं है
0: जी,
1: आई कहती थी मैं माँ को
0: जी,
1: आई जिंदा नहीं, मेरी एक दो मौसियों की भी का भी इंतकाल हो गया, लेकिन जब वो थी और जो भी अभी मौसी जिंदा है, बहुत सुंदर गला। तो हो सकता है आवाज मुझे शायद विरासत में उस तरफ से मिली हो। और क्या मैं थोड़ा सा अगर अपना बैकग्राउंड बताऊं?
0: जी बिल्कुल।
1: तो उस वक्त क्या, क्योंकि डैडी असिस्ट करते थे खेमचंद प्रकाश जी को, भूलो सिरानी जी को, तो घर में काफी प्रख्यात लोगों का आना जाना, एक जैसे ना रोजाना ही वो चलता रहता,
0: बड़े बड़े संगीत
1: है ना, बंगीतकारों।

0: गायक गायिकाएं, उनमें से बहुत करीब जो थी डैडी के और आई के वो थी आशा जी।
1: अच्छा।
0: मैं आज भी उन्हें आशा काकी ही कहती हूँ, है ना। तो आशा काकी का आना जाना, तो आई मेरी जो थी वो आशा काकी की जबरदस्त फैन, मतलब कहते हैं ना एक दीवानों सा एक प्यार उनकी गायकी से, उनसे एक पर्सनालिटी जो उनकी थी
1: जी,
0: उस पर्सनालिटी से आई इतना प्यार करती थी कि मैं जब आई मुझे लेकर जब गर्भवती हुई तो आई हमेशा ये कहती थी, ये प्रार्थना करती थी
1: जी
0: कि मुझे बेटी हो, और वो आशा
1: जैसी हो। अरे क्या बात है,
0: ये बिल्कुल फैक्ट है। और हो सकता है शायद इसीलिए मेरे गानों में उनकी छवि आपको थोड़ी बहुत
1: और आपसे प्रभावित भी रही है।
0: बिल्कुल एक बाल बराबर उनकी छवि शायद नजर आती होगी।
1: नहीं, होता है कलाकार के साथ, जब हम अपना किसी को आइडल मानते
0: जी,
1: हैं
0: जी,
1: तो कहीं ना कहीं वो छवि हमारे अंदर होती है।
0: और आइडल तो आई मानती थी, उसके बाद मैं तो वो डबल हो गया।
1: आप ही का गाया वो सुनते
0: जी, बिल्कुल
1: पसंद का गीत सुनते हैं।

0: जब मैं 6-7 महीने की थी, आई ने बताया सब कुछ। एक गाना बहुत चला था सुमन कल्याणपुर जी का, वो छोड़ो छोड़ो मोरी बैया, सावरे छोड़ो छोड़ो मोरी बैया, ठीक से याद नहीं मुझे।
1: बहुत सुंदर।
0: तो आई, मैं बैठने लगी थी और ये आशा काकी जब घर में आती थी तो ये गाना वो गुनगुनाती थी कि वो सिर्फ मुझे ठुमके लगाते हुए देखना चाहती थी।
1: अच्छा।
0: तो मैं बैठे बैठे ठुमके लगाती थी और इतना हंसती थी वो, इतना एंजॉय करती थी। उन्होंने, वो हमेशा कहती थी, भैया इसे ना आप डांस सिखाइए, ये बहुत अच्छी डांसर बनेगी। और मंदाकिनी जी, मैं बचपन में डांस बहुत अच्छा करती थी
1: जी।
0: ये अलग बात है कि आज मैं लोगों को नचाती हूँ लेकिन तब मैं नाचती बहुत अच्छा थी
1: जी।
0: तो मतलब ऐसा था कि अब थोड़ा और, मैं जब बड़ी हो गई तो जो गाने आते थे, अब घर में जब कोई फंक्शन है, कुछ भी, दशहरा दिवाली सब मिलते थे, क्योंकि आई सबसे बड़ी थी, डैडी सबसे बड़े थे, तो हमारे घर में ही वो हुजूम लगता था। तो बस, तो एंटरटेनर एक ही थी, मुझे घर में सब गुड्डी कहते हैं, तो एक ही थी एंटरटेनर
1: जी,
0: गुड्डी
1: जी।
0: तो पहले तो ये कि डांस तो डांस भी ऐसे नहीं, मैं बाकायदा एंट्री लेती थी।
1: अच्छा।
0: हाँ, दूसरे कमरे से वो दो कमरों के बीच का जो पर्दा है वो बंद करके, फिर वो पर्दा हटा के, मतलब मैं क्या 5-6 साल की थी
1: जी,
0: और सारा म्यूजिक अपने में जुबानी मुझे याद रहता था। तो वो जो गाना चला था ना, उड़ के पवन के संग चलूंगी, तो उसका बिगनिंग म्यूजिक वो सब मुंह से बजा के फिर मैं एंट्री लेती थी।
1: अच्छा।
0: तो बहुत मजे लेते थे सब लोग और यही लगा था सबको कि ये डांसर बनेगी। लेकिन अभी हुआ यूं कि करते करते जब 7 साल की हो गई, गाती भी थी, तो एक मेरे मामा जी कृष्ण कुमार राणा जी उनका नाम था, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे
1: जी।
0: तो वो और मेरी सबसे छोटी मौसी रेखा राणा उनका नाम है, वो अभी जिंदा है, भोपाल में है
1: जी।
0: तो वो दोनों इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ थे कि मैं गाती भी हूँ। थोड़ा बहुत घर में मतलब ऐसे गवा देते थे, लेकिन उनको बहुत बहुत पता नहीं, मुझ पे बहुत एतबार था कि ये डांस से ज्यादा गाना अच्छा गाती है। तो मामा जी मेरे मुंबई में लायंस क्लब के मेंबर हुआ करते थे और एक शो था मुंबई के तेजपाल ऑडिटोरियम में। हाँ, मैं तारीख भी आपको बता सकती हूँ, 17 जनवरी 1967
1: जी।
0: तो ये शो अब मामा जी को ही ऑर्गेनाइज करना था, तो ये तय हुआ कि भाई तुम एक जो तुम्हारे एक दो डांसेस है वो करोगे। लेकिन बाद में जैसे जैसे शो की तारीख करीब आती गई, तो मामा जी और मौसी ने मुझे बोला कि देखो, डांस तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन गाना, उस वक्त की बात मैं करूं, 1967
1: हाँ, बिल्कुल,
0: लेकिन इतनी छोटी उम्र में गाना गाना बहुत बड़ी बात होगी, तो तुम ना गाना गाओ, बाद में डांस भी रखेंगे
1: जी,
0: पर तुम गाना गाओ।
1: अरे वाह।
0: तो ये बहुत नयापन होगा ऑडियंस के लिए, और मैं भी मान गई। उस वक्त ना बच्चे मान लिया करते थे।
1: हाँ, बिल्कुल,
0: ज्यादा हुज्जड़बाजी नहीं करते
1: जी
0: थे।
1: और आपको बनना था एक महान गायिका,
0: हो सकता है तो कुदरत ने शायद, हो सकता है कि दिमाग भी की बत्ती भी उसी तरह खोल दी।
1: बिल्कुल।
0: अब वो दिन आया तो एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा था, मुझे ना उस ऑर्केस्ट्रा का नाम याद नहीं, बाद में जहाँ गाने लगी उसका नाम था रॉयल म्यूजिक सर्कल।

0: वहां उनके साथ रिहर्सल्स हुई और मैं गई गाने। पहला गाना मैंने जब गाया वो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। तो वो पहला आलाप जो लिया ना मैंने, ओ माँ, वहीं पे लोग उठकर खड़े हो।
1: अरे वाह, अरे वाह।
0: और इतनी तालियां कि उसके बाद गाना उठाने के लिए मुझे 5-7 मिनट रुकना पड़ा।
1: अच्छा,
0: अब ऐसा हुआ कि 2 ही गाने रिहर्स हुए थे। अब मामा जी को भी क्या ही पता कि भाई ऐसा रिस्पांस मिलेगा
1: जी।
0: अब लोग ना छोड़े कि नहीं एक और एक और। और पता है मंदाकिनी जी, वो एक कहावत है ना कि होनहार बिरहा के होत चिकने पात। तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना मंदाकिनी जी, वो पहले से, ये मेरा मानना है
1: जी, बिल्कुल सही कह रही
0: है ना, वो उस बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में
1: ढाल देती है,
0: ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी देता है।
1: बिल्कुल सही
0: है ना
1: जी जी।
0: तो मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई जैसे घर में गाती थी। जिस गाने की जो लाइन मुझे याद है, 2 लाइंस तो 2 लाइंस, 4 लाइंस तो 4 लाइंस, छोड़े ही ना पब्लिक। फिर हुआ कि भाई और भी लोग हैं कलाकार, और भी परफॉर्मेंसेस हैं। तो फिर बस उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं मंदाकिनी जी, बस वहां से मैं 7 साल की थी तो,
1: जी।
0: और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया
1: जी, जी।
0: कि डांस तो रहने ही दो तुम,
1: बिल्कुल
0: तुम गाना ही गाओ,
1: आप लोगों को नचाएंगी, ये था खुद नहीं नचाएंगी लेकिन दुनिया को नचाएंगी, और आपने नचाया भी। बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

0: उधर बम्बई सो
1: दिल्ली नंबर पूरे सो
0: सो में लगा धागा
2: चोर निकल के भागा
0: चिड़िया घर में रानी बोले
1: जाए चिड़िया

0: आपका पहला गीत जो है फिल्म अंदाज के लिए आपने गाया था, शंकर जयकिशन का संगीत था
1: बिल्कुल,
0: और रफी साहब और सुमन कल्याणपुर के साथ आपने गाया, इतने बड़े बड़े लोग और आप एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची, ये अनुभव कैसा रहा और ये गीत कैसे मिला आपको?
1: ये शो मैंने जो किया ना मंदाकिनी जी, तो मेरे परिवार के तो सारे सदस्य आए थे, तो हमारे एक बहुत करीब के फैमिली फ्रेंड हुआ करते थे चंद्रकांत भोसले जी,
0: जी,
1: और वो मेरे नैनीहाल के, मतलब जहां मेरी नानी रहती थी, समझिए कि उनके बिल्कुल चाली में रहती थी नानी, नाना चौक, हरिनिवास चाल, बड़ी बड़ी बड़ी चौल, वहां समझिए नेक्स्ट रूम उनका, तो वो भी जानते थे, बचपन से उन्होंने देखा है, वो आए थे शो देखने, और उस वक्त देखिए, अब ये तो मैं जो कहती हूँ ना, किस्मत सही वक्त,
0: जी
1: उसी टाइम में ये फिल्म बनने जा रही थी अंदाज, और शंकर जी, जयकिशन जी नहीं,
0: अच्छा
1: शंकर जी ने ये गाना कंपोज किया था, तब तक शायद वो अलग हो चुके थे,
0: अच्छा
1: छोटा मुंह बड़ी बात, पर वो अलग हो चुके थे, तो शंकर जी ने अपने सारे, उस वक्त क्या होता था मंदाकिनी जी, अभी होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर जब तक मैंने पंचमदा के साथ भी काम किया, कुछ एक हद तक आनंद मिलिंद जी के साथ भी, हम सिटिंग्स करते थे, सिटिंग मतलब रिहर्सल, गाने पहले हमें सिखाए जाते थे, तो उस वक्त जो मैं कहूंगी म्यूजिशियंस हमारे साथ बजाते थे सिटिंग में, रिहर्सल्स में, उन्हें सिटिंग मेंबर्स कहा जाता था, तो जब शंकर जी ने अपने सारे सिटिंग मेंबर्स को ये बोला कि ये गाने का एक सिचुएशन आया है, अब उस वक्त तो सीनियर सिंगर्स गाया करते थे, है ना, बच्चों के गाने भी, सिर्फ एक बच्ची ने तब तक गाया था, रानू दीदी ने, हेमंत काका की जो सुपुत्री हैं रानू मुखर्जी, उन्होंने वो गाना गाया था, नानी तेरी मोरनी
0: तो मोर ले,
1: है ना,
0: जी जी,
1: पर पता नहीं क्यों उसके बाद उनके कुछ गाने नहीं आए, तो उसके बाद बस मैं ही आई, तो उन्होंने कहा कि कोई बच्चा अगर नजर में है तो मुझे बताना जरूर, उन्होंने ना ये चैलेंज दिया था सबको कि ये गाना जो है मैं बच्चों से ही गवाऊंगा, अब सब लोग तो डरे हुए थे कि ऐसा बच्चा तुम्हें मिलेगा कहाँ, सिप्पी साहब, जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस, रमेश सिप्पी जी की पहली फिल्म बतौर डायरेक्टर, कितने लोगों की वो पहली फिल्म रही मंदाकिनी जी, सलीम जावेद जी पहली फिल्म,
0: अच्छा
1: बतौर स्क्रिप्ट राइटर,
0: जी जी बिल्कुल,
1: गुलजार अंकल के तो डायलॉग्स,
0: हाँ,
1: और रमेश सिप्पी जी बतौर एक डायरेक्टर, तो वो रिस्क कैसे लेंगे ना,
0: और सुपर डुपर हिट,
1: सुपर डुपर हिट, वो रिस्क कैसे लेंगे, तो वो तो बिल्कुल नाराज थे इस उनके इस फैसले से, पर शंकर जी बहुत जिद्दी थे, वो माने ही नहीं, बोले मुझ पर छोड़ दो, मैं गवाऊंगा बच्चों को,
0: जी
1: तो ये भोसले जी ने, भोसले अंकल ने शंकर जी को बोला कि एक बच्ची है भोला जी की बेटी, बहुत अच्छा गाती, अब जाहिर बात है मंदाकिनी जी, वो बड़े पेड़ के नीचे तो छाया ही मिलती है,
0: बिल्कुल,
1: है ना,
0: पारिवारिक जो संगीत की पृष्ठभूमि थी वो आपके गायन कौशल को निखारने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई उसने,
1: तो डैडी का नाम सुनते ही बोले भोला जी की बेटी है, तो लेके आओ, पूछते क्या हो, अब मुझे

0: लेके गए मौसी और मामा उनके सिटिंग रूम पे। सिटिंग रूम हुआ करता था फेमस महालक्ष्मी
1: जी,
0: टॉप फ्लोर पे। तो जब मैं वहाँ गई, देखा इतना बड़ा हॉल उनका और सारे म्यूजिशियंस बैठे थे। शंकर जी ऐसे एक स्टेज जैसा बना था, शंकर जी वहाँ थे, हसरत जयपुरी जी थे और सबास्टियन अंकल उनके अरेंजर थे, जिन्होंने मेरे डैडी के भी कुछ गाने अरेंज किए
1: जी।
0: तो वहां गई मैं, शंकर जी ने बिठाया और पूछा, गाती हो तुम, सीखती हो? तब तक डैडी से सीखने लगी थी थोड़ा बहुत। तो बोली हाँ। मैंने कहा अच्छा तो क्या क्या गाती हो? मैंने सारे गम। अच्छा अच्छा किस सुर से गाती हो? मैंने कहा काली एक। अच्छा तो जरा सुनाओ सारे गम सुनाओ। दोनों ने सारे गम पंचम तक लेके गए। बोले बस। बोले भोसले किसको लेके आए तुम? अरे ये तो चलेगी नहीं, दौड़ेगी।
1: अरे
0: और बोले मौसी और मामा को, बोले इसको ना कल आप फिल्म सेंटर लेकर आइए
1: जी,
0: साहब के साथ और सुमन जी के साथ गाना है। तो मौसी ने पूछा रिहर्सल? अरे कोई रिहर्सल नहीं, वहीं सिखा देंगे गाना।
1: अरे वाह।
0: तो दूसरे दिन, वो तारीख थी 7 नवंबर 1969
1: जी जी,
0: फिल्म सेंटर में हमारी बारात गई। मेरे साथ एक और बच्ची भी, उसने भी गाया है, प्रतिभा बोर्डे का। वो भी भोसले काका की ही कोई जान पहचान की थी।
1: आगे उन्होंने फिर ज्यादा नहीं गाया,
0: उनको ना इंटरेस्ट, प्रतिभा को ना ज्यादा एक्टिंग में इंटरेस्ट था, जहां तक मैं मुझे याद है। ज्यादा गाने में उसको रुचि नहीं थी, वो एक ही गाना उसने गाया। बस वहां पहुंचे मंदाकिनी जी, उन्होंने गाना सिखाया
1: जी
0: और मुझे बोला तुम हंसती हो? मैंने बोला हाँ। गाने में हंसोगी? मुझे तुम्हारी हंसी डालनी है।
1: बहुत सुंदर हंसी थी आपकी वो।
0: मैंने बोला हाँ, तो मुझे बताओ कैसे हंसोगी? तो मैंने कहा पापा मम्मी मिलते हैं, चुपके चुपके हंसते हैं। बोले बस इसको पकड़ के रखना।
1: बहुत सुंदर।
0: बस उसके बाद फिर थोड़ी देर में रफी साहब आए, बहुत बाद में, मैं उनको साहब अंकल कहती थी। और सुमन जी आए
1: जी,
0: सब आए थे
1: जी,
0: रमेश सिप्पी जी सब आए। मुझे हमको ना बाहर खड़ा किया था, वह सिंगर्स कैबिन नया नया बना था फिल्म सेंटर में। तो शंकर जी ने कहा कि अगर बच्चों को अंदर खड़ा करेंगे तो हो सकता है हेडफोन लगाकर थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, डर जाएंगे, इनको बाहर खड़ा करो। तो हमको बाहर हॉल में सारा जो वायलिन सेक्शन म्यूजिशियंस, सारे म्यूजिशियंस के साथ ही हमको खड़ा किया था। और रफी साहब और सुमन जी सिंगर्स कैबिन, फर्स्ट टेक ओके
1: जी जी,
0: उन्होंने रिपीट ही नहीं करवाया।
1: बहुत सुंदर।
0: बाद में फिर साहब अंकल से मुलाकात हुई, मौसी ने बताया। उस वक्त ना बंदा के नीचे एक गाना चला था ना रफी साहब का, अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया
1: जी,
0: ये मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया।
1: बिल्कुल।
0: ये गा के मैं डांस करती थी और इसके पीछे किशोर काका पागल, क्योंकि किशोर काका और डैडी की बिल्कुल ऐसी दोस्ती जैसे आप समझिए एक माल के मणि
1: जी।
0: तो घर में आते थे और जब आते थे अमिता के साथ यही गाने में मुझे डांस करवाते
1: जी।
0: तो मौसी ने बोला तुम वो गाना गाती हो ना, ये वही है, जाओ पैर छुए।
1: अच्छा।
0: तो उस वक्त वो ना धनतेरस का दिन था मंदाकिनी जी, तो साहब अंकल ने वो बड़े बड़े 100 रुपए के नोट चलते थे उसको, तो मुझे और प्रतिभा को 100 रुपए बख्शीश दिए नजराना। ये एक हमारे गाने बजाने में एक ये एक तहजीब होती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: हम जब अपने छोटों को सुनते हैं
1: तो उसको
0: तो हाँ एक नजराना देते
1: प्यार
0: हैं
1: का प्रतीक,
0: बिल्कुल, और उनको एक प्रोत्साहन देने के लिए। तो उन्होंने वो दिया और बोला जाओ मिठाई खाओ।
1: अरे वाह।
0: फिर मौसी से पूछा कि भोला जी की बेटी है ना? तो मौसी ने कहा इसको ना बहुत प्यार दीजिएगा, बहुत अच्छे से सिखाइएगा, ये बहुत नाम करेगी।
1: क्या बात है। तो, यानी आप भाग्यशाली थी कि आपकी शुरुआत रफी

0: साहा और सुमन कल्याणपुर के साथ
1: ये आज महसूस होता
0: शंकर जी के साथ हुई और इतनी बड़ी फिल्म में आपने गाया तो वो गीत की दो लाइनें हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे और उसके बाद शायद यही हम सुने आपकी पसंद का
1: बिल्कुल बिल्कुल। और पता है मैं एक छोटी सी बात बताऊं मंदाकिनी जी, अभी एक दस है ना बुल बुल तारा है ना बुल बुल।

0: अभी तो हम आपको सुषमा जी भी कह लेंगे तो कोई अति नहीं होगी, क्योंकि अभी हम सुषमा श्रेष्ठ को ही सामने बैठा देख रहे हैं। तो आपने राहुल देव बर्मन के साथ भी कई गीत गाए, यादों की बारात और तेरी है जमीन, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई,
1: क्या हुआ तेरा वादा
0: है ना, क्या हुआ तेरा वादा, ये सब गाते गाते सिर्फ 11 साल की उम्र में आपको फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के रूप में नामांकित किया गया।
1: काश मिलता वो अवार्ड।
0: लेकिन नामांकन भी बहुत बड़ी चीज थी,
1: बड़ी चीज़।
0: तो ये अनुभव कैसा रहा और पंचमदा के साथ काम करने का जो संगीत की आपकी समझ पर क्या प्रभाव पड़ा होगा?
1: मैं जो कुछ भी गाती हूँ आज, जो कुछ भी थोड़ी बहुत अगर मैं समझती हूँ कि डायनामिक्स हम जिसे गाने में कहते हैं, उतार चढ़ाव और बहुत कुछ मैंने पंचम दादा से सीखा, क्योंकि उनके साथ बहुत उठना बैठना होता था। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ
0: जी।
1: एक तो क्या हुआ ना कि बर्मन चाचा मतलब एसडी बर्मन जी और डैडी, मैंने जो बताया आपको कि डैडी का जन्म कोलकाता में हुआ, तो वो पूरी तरह से अपने आप को वो बंगाली बाबू ही समझते थे अपने आखिरी सांस तक
0: जी,
1: और उनका सर्कल भी पूरा बंगाल
0: वैसे ही था
1: बिल्कुल। उस कारण भी मुझे ये सब बहुत प्यार करते थे, जैसे बर्मन चाचा, शक्ति सामन जी, प्रमोद चक्रवर्ती जी, इतना प्यार करते थे कि डैडी के जाने के बाद भी कोशिश यही उनकी रहती थी कि उनकी फिल्मों में कहीं ना कहीं मुझे एक लाइन ही मिल जाए। तो पंचम दास से फिर वही एक वही था कि तेरा मुझसे है पहले का नाता को, यूं ही तो वो एक रिश्ता आप समझिए ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे चलता आ रहा हो, एक अनोखा वो मंदा के नीचे क्या होता है ना, बड़ी देर के बाद जैसे जैसे बड़ी हुई ये एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते जो होते हैं ना अपने होने का ना एहसास नहीं दिलाते, वैसा रिश्ता मेरा पंचमदा के साथ रहा
0: जी
1: है और मेरे मरते दम तक रहेगा
0: जी। बहुत सुंदर।
1: मैं हमेशा उनसे कहती थी मंदाकिनी जी, मैं इतना प्यार करती थी उनसे, करती हूँ करती रहूंगी, कि मैं हमेशा पंचमदा से कहती थी मैं अगर बड़ी होती मैं आपसे शादी करती।
0: और क्या बात है,
1: इतने क्यूटली वो हंसते थे
0: जी।
1: तो मुझे लगता मेरे गाने में बहुत सारी छवि उनकी आती है, और बाल बराबर आशा का क्योंकि वो तो आई नहीं सकती, कोशिश बहुत की दादा ने, पर हाँ मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ और हुई उनसे, बहुत सीखा। वो बुलाते थे सिटिंग्स में, रिकॉर्डिंग्स में, सिर्फ सुनने के लिए कि सुनो कैसी गाती हैं वो, मतलब खास तौर पर आशा काके की रिकॉर्डिंग्स कि सिर्फ सुनो सुनो और देखो। मैंने पहला गाना जो दादा के लिए गाया वो परिचय फिल्म, फिर गुलजार अंकल देखिए,
0: अरे वाह,
1: ये मैं कह रही हूँ वक्त कैसे एक खेल रचता है। मंदाकिनी जी यहाँ एक छोटी सी बात मैं जरूर आपको और मेरे श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि ये वक्त और कुदरत का जो खेला होता है ना, मैंने अंदाज में गाया, जीपीसीपी प्रोडक्शंस
0: जी,
1: शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी जी, सुमन कल्याणपुर जी, रफी साहब, शमी कपूर जी, सही है?
0: बिल्कुल।
1: मैंने जब स्टेज पर गाना शुरू किया था 7 साल की उम्र से, तो मेरा सबसे पहला जो डुएट गाना था स्टेज पर, जो मैंने डुएट गाना गाया
0: जी,
1: वो फिल्म ब्रह्मचारी का गाना था,
0: हाँ,
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे,
0: हर जवान,
1: और यही पूरा था ना,
0: हाँ,
1: जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस,
0: हाँ,
1: शमी कपूर जी, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी जी, रफी साहब, सुमन कल्याण
0: जी,
1: वही पूरा देखे खेला।
0: बिल्कुल।
1: मुझे नहीं पता था तब कि कुछ साल बाद मैं इसी सर्कल, इसी ग्रुप का एक हिस्सा बनूंगी,
0: अभिन्न हिस्सा बनेंगे,
1: और अपनी जिंदगी का सबसे कामयाब पहला और सबसे कामयाब गाना मैं इन्हीं लोगों के साथ जुड़कर शुरू करूं।
0: जी जी।
1: देखिए
0: जी,
1: ये वक्त का खेला
0: जी, बिल्कुल सही कहा आपने,
1: तो
0: कि वक्त ही है जो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हमारी पहचान बनाता है
1: उसके आगे
0: या हमारी पहचान मिटा देता है।
1: एकदम।
0: बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

बिज्जू, ए बिज्जू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ।

0: सुषमा जी ही कहूंगी मैं फिर आपको अभी, क्योंकि मैं सुषमा जी को जी रही हूँ इस वक्त थोड़ी देर बाद मैं पूर्णिमा जी को जीना शुरू करूंगी। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी तब कि जब सुषमा जी पूर्णिमा जी आपस में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, लेकिन ये सवाल थोड़ी देर में होगा। अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप सुषमा श्रेष्ठ के नाम से गा रही थी तो आपने उस समय के सभी दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया था, मसलन शंकर जयकिशन में आप बताई रही हैं, मदन मोहन साहब के साथ, सलील चौधरी, एस डी बर्मन काका जो आप कह रही हैं, नौशाद साहब के साथ, बप्पी लाहिड़ी, रविन्द्र जैन, राजेश रोशन, कल्याण जी आनंद जी और चित्रगुप्त साहब के साथ भी आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चित्रगुप्त अंकल के साथ मैंने काफी भोजपुरी गाने गाए।
0: अच्छा,
1: और उस वक्त आनंद मिलिंद उनको असिस्ट करते थे
0: जी, और बाद में आपने उन्हीं के सुपुत्र आनंद मिलिंद साहब के साथ बहुत गाने गाए।
1: अच्छा मंदाकिनी जी, देखो मुझे आज कैसी कैसी बातें याद आ रही हैं
0: जी।
1: जो मैंने पहला शो अपना किया ना, पता आपको एक फिल्म आई थी औलाद,
0: जी
1: उससे पहले एक फिल्म आई थी, शायद वो फिल्म का नाम भी लाडला था,
0: लाडला,
1: उसमें निरुपा रॉय जी थी शायद। एक गाना था उसका, कांटों की दुनिया है

0: ये मैं इतना गाती थी सालों बाद। ये चित्रगुप्त अंकल का म्यूजिक है अगर मैं गलत नहीं
1: हूँ। जी बिल्कुल, बिल्कुल।
0: सालों बाद मैंने आनंद मिलिंद के लिए लाडला फिल्म में ही गाना गाया। देखिए आप देख रही हैं, मैं
1: समय खुद को
0: देखिए। एक गाना आया था कब तक हुजूर रूठे रहोगे औलाद फिल्म का, वो मैं इतना गाती थी। ये नहीं पता था कि ये जो मैं इतना गाती हूँ गाना, जिन म्यूजिक डायरेक्टर का ये गाना मैं गा रही हूँ, उन्हीं के बेटों के साथ सालों बाद मैं एक टीम बनाऊंगी, एक बहुत ही सफल टीम।
1: बहुत बहुत,
0: ये वक्त का खेला ये होता है।
1: और ये आपसे बात करके हम भी महसूस कर रहे हैं कि देखिए वक्त आपको किस तरह से कैसे कहां जोड़ता है
0: ना।
1: बिल्कुल।
2: बॉम्बे टॉकीज इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। ये बातचीत यही खत्म नहीं हुई, अगले हफ्ते इस बातचीत का दूसरा भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक इंतजार कीजिएगा अगले हफ्ते का। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग

0: होंगे। तब तक इंतजार कीजिएगा अगले हफ्ते का। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: बॉम्बे टॉकीज,
2: साइलेंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: देखिए कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज। 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जम्बो जेट, जम्बो जेट, लंडन मुंबई प्रवास थेट, जगलो वसलो पुन्ना भेट, जम्बो जेट, जम्बो जेट सोई।
3: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
2: रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग।
3: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
2: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
3: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारी आज की सभा में और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ ही देर में 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। राजस्थानी लोक संगीत में आज आपको सुनवाएंगे सीमा मिश्रा और निर्मल मिश्रा की आवाज में राजस्थानी लोकगीत। वहीं रात्रि 10:20 पर समय रहेगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। विविध भारती कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 5:30 पर एवं रात्रि 9:00। वहीं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों में शाम 7:00 आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। वहीं शाम 7:30 पर जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण की डेली हाइलाइट्स। हमारी शाम की सभा में समाचारों का समय कुछ यूं रहेगा। शाम 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार एवं 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। वहीं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या एवं रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार आप सुन पाएंगे।

हमारी कल की प्रातःकालीन सभा में प्रातः 6:30 पर आप सुनेंगे हमारे स्टूडियो से प्रसारित रामचरितमानस गान का प्रसंग। वहीं 6:45 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती निवाद। वहीं कार्यक्रम वागड़ी लोक संगीत का समय रहेगा प्रातः 6:50 पर। प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन। वहीं दिली जज्बातों कार्यक्रम कुछ दिल से आप सुन पाएंगे प्रातः 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत आप सुन पाएंगे प्रातः 8:45 पर। वहीं कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन पाएंगे प्रातः 9:10 पर एवं प्रातः 11:00।

कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे प्रातः 11:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 7:30 पर, प्रातः 9:30 पर और दोपहर 12:00। हमारी कल की प्रातःकालीन सभा में समाचारों का समय कुछ यूं रहेगा। प्रातः 6:00 हिंदी में समाचार एवं प्रातः 8:00 समाचार प्रभात आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। वहीं प्रातः 9:00 आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

श्रोता भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से हमारी आज की सायंकालीन एवं कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण जो यहीं संपन्न हुआ। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। राजस्थानी लोक संगीत में आज आपको सुनवाते हैं सीमा मिश्रा, निर्मल मिश्रा और साथियों की आवाज में राजस्थानी लोकगीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। राजस्थानी लोक संगीत में आज आप सुन रहे थे सीमा मिश्रा, निर्मल मिश्रा और साथियों की आवाज में राजस्थानी लोकगीत। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तराने नए पुराने।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में हम आपके हैं कौन इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। देव कोहली ने इसे लिखा, राम लक्ष्मण का संगीत।

0: भूपिंदर की आवाज में ये गीत घरौंदा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। यह है विविध भारती, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
1: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
2: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: रेलवे ने सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी ए कैबिन, शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 से अधिक रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर

0: खंड पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाल्ट की एक यूनिट से 25 किलोवाल्ट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए भी 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ में जानमाल का व्यापक नुकसान हुआ था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 3 बड़े पद जीते। एबीवीपी के यश डबास अध्यक्ष चुने गए, जबकि रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव बने। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन उपाध्यक्ष पद पर विजयी रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने डूसू चुनाव में एबीवीपी की जीत पर बधाई दी है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, तराने नए पुराने के शेष गीत लीजिए सुनिए।

0: उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाजों में गीत दिल तो पागल है फिल्म का नाम, आनंद बख्शी ने इसे लिखा और उत्तम सिंह का संगीत।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तराने नए पुराने।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 6:30 होने को हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 51,000 युवाओं को रोजगार की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में कहा, विकसित भारत के लक्ष्य में युवाओं की बड़ी भूमिका। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया पूरी। दक्षिण पश्चिम मानसून की राज्य के पश्चिमी जिलों से विदाई। अगले 3-4 दिनों में समूचे प्रदेश से मानसून विदा होने के आसार। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आगाज। 500 से अधिक भारतीय खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार करने पर ध्यान दे रही है। इसके लिए उन्हें आवश्यक कौशल से लैस करने के साथ ही अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं की प्रतिभा और कौशल ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं, नए मार्केट्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे Tier 2 और Tier 3 शहरों में हैं। श्री मोदी ने कहा कि गांवों, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा

0: रहे हैं। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। प्रदेश में जयपुर और उदयपुर में भी रोजगार मेले आयोजित किए गए। राजधानी जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी ने 8 विभागों में नवनियुक्त 140 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर श्री चौधरी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र प्रथम के संकल्प के अनुसार कार्य करने का आह्वान किया।
1: आज जो नीति राष्ट्रीय रोजगार मेला है उसमें 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। आज जो नियुक्ति पत्र 8 विभागों द्वारा दिया जा रहा है, मैं उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्र प्रथम इस भाव से आपको युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, ये भाव आपको रखना है। आप जिस भी विभाग में काम करें, ईमानदारी, कर्तव्यता, पारदर्शिता और सहनशीलता के आधार पर आपको कार्य करना है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
2: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस कार्यक्रम में कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। श्री यादव ने वनों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत के प्रयासों का भी जिक्र किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में अगले महीने से कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। योजना के पहले चरण में राजस्थान सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि अगले साल 31 दिसंबर तक 3.5 लाख से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जयपुर में आयोजित AHPI नेशनल लीडरशिप समिट को संबोधित किया। कल से शुरू हुए 2 दिन के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के स्वास्थ्य नीति निर्माता, अस्पताल प्रमुख, स्वास्थ्य प्रशासक और विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में स्वास्थ्य संस्थानों की प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की गई। इनमें कुशल मानव संसाधन की कमी, बदलती तकनीक, मरीजों की बढ़ती अपेक्षाएं सहित अन्य विषय शामिल हैं। सम्मेलन में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही संस्थानों और मरीजों के बीच विश्वास बनाए रखने की प्रभावी रणनीतियों पर भी विचार किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्थान निकाय चुनाव 2026 के तहत निकाय प्रमुख के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन रहा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में महापौर पद के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जयपुर से भाजपा ने सुनील कोठारी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने सुनीता मावर को इस पद के लिए चुना है। इन दोनों पार्षदों ने आज महापौर पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। उधर जोधपुर में भाजपा ने प्रसन्न लाल मेहता और कांग्रेस ने 4 पार्षदों के नामांकन भरवाए हैं। पार्टी की ओर से कहा गया है कि जिस प्रत्याशी के नाम पर सहमति बनेगी उसे सभी

0: पार्षद समर्थन देंगे। वहीं कोटा में कांग्रेस की सुनीता सुमन और भाजपा से अनुसुईया गोस्वामी ने नामांकन भरा है। पाली नगर निगम में मेयर पद के लिए भाजपा की नमिता बुबकिया, कांग्रेस की सुमित्रा जैन और निर्दलीय राजबाला हिंगड़ चुनाव मैदान में हैं। इस बीच नगर निगम चुनाव में महापौर पद के लिए मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन विभाग तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। 25 सितंबर को निकाय प्रमुखों के लिए मतदान होगा। इसे देखते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख राजनीतिक दल पार्षदों को साधने और रणनीति तय करने में जुटे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती हिस्सों से विदा हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार इसके विदा होने की सामान्य तारीख 17 सितंबर होती है। आज दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी रेखा रामगढ़, मोहनगढ़, फलौदी और खाजूवाला से होकर गुजर रही है। वहीं अगले 3-4 दिनों में राज्य के अन्य हिस्सों से भी मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार इस बार प्रदेश में बारिश 16% कम हुई है। 3 जिलों डीग, धौलपुर और सलूम्बर में सामान्य से अधिक पानी बरसा है। 25 जिलों में सामान्य और 13 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। इस बीच आज सवाईमाधोपुर सहित कहीं कहीं गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात हुई। कल कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, अजमेर, उदयपुर और डूंगरपुर सहित 13 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट है। वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों, उद्योगों और कारीगरों को बढ़ावा देने की मुहिम, ये मुहिम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: वोकल फॉर लोकल का अर्थ है स्थानीय वस्तुओं का उत्पादन और उनका उपयोग, साथ ही स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देना। नीति आयोग ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत इस पहल को बढ़ावा दिया, जिसमें सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ साझेदारी में लागू किया गया। जेम पोर्टल पर इसके लिए विशेष विंडो भी बनाई गई है। आकांक्षी ब्लॉक स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन इस पर कर सकते हैं। इससे कुटीर और लघु उद्योगों का विस्तार होने के साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। वोकल फॉर लोकल आयात निर्भरता कम करने के देश के संकल्प को भी दर्शाता है। यह नवाचार, निवेश और उद्यमशीलता की भावना से प्रेरित होकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में निर्णायक कदम है। समाचार कक्ष से सलीहा गाजी।
0: 20वें एशियाई खेलों का आगाज आज जापान के आइची नागोया में हुआ। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे पालोमा मिजुहो स्टेडियम में भव्य उद्घाटन समारोह की शुरुआत हुई। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत भारत के ध्वजवाहक रहे। एशियाई खेल 4 अक्टूबर तक चलेंगे। इनमें 43 खेलों में 469 स्वर्ण पदक के लिए मुकाबले होंगे, जिनमें 45 देशों के लगभग 11,000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 500 से अधिक भारतीय खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। इनमें पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन और अमन सहरावत भी शामिल हैं। जापान तीसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कर रहा है। इस बीच एशियाई खेलों में मौजूदा चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम कल जापान के निशिन में सेमीफाइनल में बांग्लादेश के साथ खेलेगी। ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। भारत ने कल मेजबान जापान को 8 विकेट से हराया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 51,000 युवाओं को रोजगार की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में कहा, विकसित भारत के लक्ष्य में युवाओं की बड़ी भूमिका। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया पूरी। दक्षिण पश्चिम मानसून की राज्य के पश्चिमी जिलों से विदाई। अगले 3-4 दिनों में समूचे प्रदेश से मानसून विदा होने के आसार। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आगाज। 500 से अधिक भारतीय खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश ने तैयार किया है। जिले में 17 सितंबर से विकसित भारत जनसेवा अभियान शुरू हुआ। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चले।

0: का गोविंदगढ़ पंचायत समिति में दीपोत्सव के साथ इस अभियान की शुरुआत हुई। अभियान के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवा से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 17 सितंबर को आशीर्वाद का दिया और रक्तदान कार्यक्रम हुआ। विद्यालयों में 7 अक्टूबर तक मेरे सपनों का भारत विषय पर चित्रकला भाषण और निबंध प्रतियोगिताएं हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 25 सितंबर तक नमो सेवा अंतही कहानियां कार्यक्रम और 19 से 25 सितंबर तक ग्रामीण सेवा सेतु आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा सेवा ज्योति कलश, सेवा मेरा योगदान, सेवा की कहानी और सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज जैसी गतिविधियां भी होंगी। जयपुर नगर निगम के 4 वार्डों में पुनर्मतदान हुआ। ईवीएम में तकनीकी खराबी के चलते ये पुनर्मतदान कराया गया। अब वहां अध्यक्ष पद के लिए कवायद शुरू हो गई है। आज 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए गए। 21 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 22 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। अध्यक्ष पद के लिए 25 सितंबर को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा और मतदान समाप्त होते ही वोटों की गिनती की जाएगी। जिले में नीट पीजी 2026 की पुनः परीक्षा 5 सितंबर को 5 केंद्रों पर आयोजित हुई। परीक्षा में 2416 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। नीट पीजी की मूल परीक्षा 30 अगस्त को हुई थी, लेकिन सीतापुरा के 2 केंद्रों पर आंतरिक विद्युत आपूर्ति में समस्या के कारण परीक्षा पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद इन अभ्यर्थियों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित की गई। जिले में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2026 भी आयोजित हुई। दोनों पारियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति करीब 57% रही। छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने की तारीख तय की गई है। सत्र 2024-25 के विद्यार्थियों के लिए ये प्रक्रिया 15 सितंबर तक और सत्र 2025-26 के लिए 15 अक्टूबर तक पूरी करनी होगी। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से जुड़े करीब 13,500 छात्रवृत्ति आवेदन शिक्षण संस्थान स्तर पर लंबित बताए गए हैं। विद्यार्थियों से निर्धारित समय में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने को कहा गया है। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए एंटी लार्वा गतिविधियां चलाने और मौसमी बीमारियों तथा सर्पदंश के मामलों की पोर्टल पर जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए गए। 16 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले कुष्ठ रोग अभियान की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। गैर संचारी रोगों की जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था, परिवार नियोजन, टीकाकरण और छूटे हुए बच्चों के टीकाकरण की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें जिले की 10 पंचायत समितियों के करीब 100 लाभार्थियों ने भाग लिया। जयपुर में हुई इस कार्यशाला में नए चयनित लाभार्थियों और वर्ष 2025-26 में स्वीकृत आवास पूरे करने वाले लाभार्थियों को योजना से संबंधित जानकारी दी गई। रक्षाबंधन के अवसर पर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने जामडोली स्थित राजकीय मानसिक विमंदित गृह की बालिका विंग में आवासरत बालिकाओं से रक्षा सूत्र बंधवाया। इस अवसर पर बालिकाओं को मिठाई और उपहार दिए गए। बालक और बालिकाओं ने संगीत तथा नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी। दिवाली के लिए आतिशबाजी के अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके लिए 25 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। लाइसेंस 12 अक्टूबर से 11 नवंबर तक की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे। आवेदन उपस्थित उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय में निर्धारित दस्तावेजों के साथ जमा कराने होंगे। 17 अगस्त को म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने उनका स्वागत किया। इसी के साथ जयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। देश में 51,000 नौजवानों ने नौकरी लागन रा कागज मिलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वां रोजगार मेला में कहो विकसित भारत रो लक्ष्य हासिल करने में नौजवानों रो मोटो काम। प्रदेश में नगरीय निकाय अध्यक्ष ओहदा

0: पर्चा दाखिल करण रो काम पूरो थियो। राज्य रा तुणी हल्का में चौमासारी बिरखा बंद हुई। आवता तीन चार दिन में आखा राज्य में चौमासारी बिरखा बंद हुए बन रहा आसार। घर 20वां एशियाई खेल जापान में शुरू किया। भारत रा 500 खिलाड़ी 37 होड़ा में भाग लेवेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहू है कि केंद्र सरकार लारला कुछ वर्षों नौजवानों ने आवता बगतरी चुनौतियां रे मुजब तैयार करण माथ ध्यान दे रही है। वह आज 20वां रोजगार मेला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोल रहा है। श्री मोदी न्यारा न्यारा सरकारी महकमा और संगठन में नवी नौकरी लग्या 51,000 भत्ता नौजवानों ने नौकरी लगन रा कागजात सौंपया। ये मौके वे कहो के आवता बगतरी चुनौतियां रो सामो करण लायक बनावन सारू वाने जरूरी कौशल री सिखावन देवन सा गई मौका मुहैया कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री कहो के सरकार गैर सरकारी हल्का माय नौकरियां रा मौका बधावन सारू ही काम कर रही है। वे कहो के भारत लाडला कुछ वर्षा माय करीब 40 देशों सागे मुक्त कारोबार रा करार कीना है, जहां देश रा नौजवाना सारू नौकरी धंधा रा नुआ मौका बन रहा है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं, नए मार्केट्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: प्रधानमंत्री कहियो कि भारत आज दुनिया रो तीजो मोटो स्टार्टअप इकोसिस्टम है। वह कहियो कि मान्यता मिलोड़ा स्टार्टअप माए करीब आधा Tier 2 और Tier 3 शहरा माए है। श्री मोदी कहियो कि गांव और कस्बा रा नौजवान देश की माली व्यवस्था में आगे बढ़ावन माए खास काम कर रहा है। ई बीचे देश माए 45 ठोड़ा आज 20वां रोजगार मेलो लगाईचियो। नवी नौकरी लगन वाला वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा समेत केंद्र सरकार रा न्यारा न्यारा मंत्रालय और महकमा माए सेवा देवेला। प्रदेश में आई जयपुर और उदयपुर माए रोजगार मेला लगाई चिया। जयपुर माए राखी जा कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी 8 महकमा माए नौकरी लग्या 140 नौजवानों ने नौकरी लगन रा कागजात सौंपया। ये मौके चौधरी कहो के साल 2047 ताई विकसित भारत रो संकल्प सांचो करण माए नौजवाना रो खास काम है। वे मोटियाराओं राष्ट्र प्रथम रा संकल्प सागे काम करण सारू कहो।
2: आज जो विश्व राष्ट्र रोजगार मेला है उसमें 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। आज जो नियुक्ति पत्र आज विभाग द्वारा दिया जा रहा है, मैं उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्र प्रथम है। इस भाव से आपको लाल जो नियुक्ति पत्र मिल रहा है ये भाव आपको रखना है। आप जिस भी विभाग में काम करें ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, पारदर्शिता और सहनशीलता के आधार पर आपको कार्य करना है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहे है कि प्रति व्यक्ति कार्बन पैदा करण में भारत रो योगदान दुनिया रा औसत रा आधा उमी कम है। वे आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य मुद्दा माथे राखी जिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र में बोल रहा है। श्री मोदी कहो कि कार्बन पैदा करने की जिम्मेदारी गलत तरीकों विकासशील देशों माथे डाली जाती रही है, जबकि विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना बत्तो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। श्री मोदी कहो कि लाडला 12 साल में भारत पर्यावरण जुड़िया हर हल्का में असाधारण प्रगति की नी है।
1: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत

0: की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
1: कार्यक्रम में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव कहो कि देश में बनवा वाली कुल बिजली में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% बत्तो है जो तय करी जी तादाद खूब बत्तो है। ग्रामीण विकास मंत्रालय रे ओर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना रा दूजा दौर में आवता महीना कई राज्य और केंद्र राज वाला प्रदेशों ना गांवई हलका माए करीब 34,000 नौजवानों ने सिखावन देवन रो काम शुरू करियो जावेला। योजना रा पहला दौर माए राजस्थान समेत 14 राज्य और केंद्र राज वाला प्रदेश शामिल करी जिया है। मंत्रालय रे मुजब आवता साल 31 दिसंबर ताई 3.5 लाख होमबत्ता नौजवानों ने सिखावन दी जावेला। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राजस्थान निकाय चुनाव 2026 रा तेत निकाय प्रमुख सारू पर्चा दाखिल करन रा आखिरी दिन आज जयपुर जोधपुर और कोटा नगर निगम माए महापौर ओहदा सारू खास सियासी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस रा उम्मीदवार समेत न्यारा न्यारा उम्मीदवार पर्चा दाखिल किया। जयपुर भाजपा सुनील कोठारी ने जबकि कांग्रेस सुनीता मावर ने उम्मीदवार बनाया है। दोनों पार्षद आज महापौर ओहदा सारू चुनाव बाबत नाम पाना दाखिल किया। जोधपुर माए भाजपा री ओर प्रसन्न लाल मेहता और कांग्रेस री ओर 4 पार्षद पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस मुजब जी उम्मीदवार रा नाम मत है एक राय बनेला पार्टी रा सगला पार्षद वारी हिमायत करेला। कोटा माए कांग्रेस री ओर सुनीता सुमन और भाजपा री ओर अनुसुईया गोस्वामी पर्चा दाखिल किया। पाली नगर निगम रा महापौर ओहदा सारू भाजपा री नमिता बुबकिया कांग्रेस री सुमित्रा जैन और निर्दलीय उम्मीदवार राजबाला हिंगड़ चुनाव मैदान में है। नगर निगम चुनाव माए महापौर ओहदा सारू शांति सागर निपक्ष मतदान तय करावन बाबत निर्वाचन विभाग तैयारियां पूरी करण माए लग्योड़ो है। 25 सितंबर ने निकाय प्रमुख रा चुनाव सारू वोट पड़ेला। अरब मौसम राज्य रा आतुई हलका माए चौमासारी बिरखा बन वेगी है। मौसम विभाग रे मुजब चौमासारी बिरखा सामान्य तौर 17 सितंबर बन वेजावे है। इन बीचे आज दक्षिण पश्चिम मानसून रे वापसी रेखा रामगढ़ मोहनगढ़ फलौदी और खाजूवाला होते निकल रही है। आवता 3-4 दिन माए प्रदेश रा दूजा हलका माए चौमासारी बिरखा बंद वेजावन रा आसार है। जल संसाधन विभाग रे मुजब इन दफा प्रदेश माए 16% कम बारिश हुई। केवल डीग धौलपुर और सलूम्बर माए सामान्य बत्तो पानी बरसियो। 25 जिला माए सामान्य और 13 जिला माए सामान्य कम बिरखा हुई। ये बीचे आज सवाई माधोपुर समेत कच्चे कच्चे हल्के मझला दर्जारी बरसात हुई। काल कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ अजमेर उदयपुर और डूंगरपुर समेत 13 जिला माए बरसात रो येलो अलर्ट जारी करी चियो है। वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय सामान उद्योग और कारीगर ने बधाओ देवन री मुहिम। आ मुहिम खुदरे पान उब भारत बनावन री दिशा माए घनी खास साबित हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वोकल फॉर लोकल का अर्थ है स्थानीय वस्तुओं का उत्पादन और उनका उपयोग, साथ ही स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देना। नीति आयोग ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत इस पहल को बढ़ावा दिया, जिसमें सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ साझेदारी में लागू किया गया। जेम पोर्टल पर इसके लिए विशेष विंडो भी बनाई गई है। आकांक्षी ब्लॉक स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन इस पर कर सकते हैं। इससे कुटीर और लघु उद्योगों का विस्तार होने के साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। वोकल फॉर लोकल आयात निर्भरता कम करने के देश के संकल्प को भी दर्शाता है। ये नवाचार निवेश और उद्यमशीलता की भावना से प्रेरित होकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में निर्णायक कदम है। समाचार कक्ष से सलीहा गाजी।
1: प्रदेश में SI भर्ती परीक्षा 2021 काल ओजुली चावेला। दो पारियां माए फेवन वाली ई परीक्षा सारू 11 जिला माए 666 सेंटर बनाई चिया है। परीक्षा माए 2,18,000 बत्ता उम्मीदवार ने शामिल फेवन रा आसार है। ध्यान जोग है कि साल 2021 माए लीरी जी ई परीक्षा रो

लीक वेजावण रा आरोपां पाछे आ परीक्षा दुबारा ली जा रही है। 20वां एशियाई खेल आज जापान रा आईची नागोया माय शुरू हुआ। इन माय भारत री ओरु निशानेबाजी, बैडमिंटन, कबड्डी, मुक्केबाजी और क्रिकेट समेत 37 होड़ा माय 500 खिलाड़ी शामिल हो रहा है। उद्घाटन जलसा माय भारत री ओरु निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सेहरावत भारत रो झंडो लेर चलिया। 4 अक्टूबर ताई चालन वाला आ एशियाई खेला ने महिला क्रिकेट होड़ रा सेमीफाइनल माय मौजूदा चैंपियन भारत रो मुकाबलो काल निशिन माय भारत रा समय रे मुजब सवेरे 10:30 बजे बांग्लादेश हूं फैला। इन पहली भारत काल मेजबान जापान ने 8 विकेट हरायो। भारत महज 5 ओवर रा खेल

0: जापान ने 8 विकेट हरायो। भारत महज 5 ओवर रा खेल में जीत हासिल कर लीनी। दूजी कानी बांग्लादेश और चीन बीच फेवन वालों क्वार्टर फाइनल मुकाबलो बारिश के कारण रद्द हुआ। पाछे बेहतर आईसीसी रैंकिंग रा आधार बांग्लादेश ने सेमीफाइनल में जगह मिल गई। आखिर में खास समाचार एक फिर सुन ले रहो। देश में 51,000 नौजवानों ने नौकरी लागण रा कागज मिलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वां रोजगार मेला में कहो विकसित भारत रो लक्ष्य हासिल करने में नौजवानों रो मोटो काम। राज्य में नगरीय निकाय रा अध्यक्ष ओहदारा चुनाव सारू पर्चा दाखिल करण रो काम पूरो कियो। प्रदेश रा चुनी हलका में चौमासारी बिरखा बंद हुई। आवता 3-4 दिन में आखा राज्य में चौमासारी बिरखा बंद हुए बन रहा आसार। और 20वां एशियाई खेल जापान में शुरू हुआ। भारत रा 532 खिलाड़ी 37 होड़ा में भाग ले वेला। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, शाम के 7 बजे हैं। अब आप सुनेंगे किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसानवाणी कार्यक्रम सुनवाला सगड़ा श्रोताओं ने थांगा भाई राजू भाई घणो घणो राम राम सा, और विशाल भाई तन भी राम राम सा।
7: राम राम राजू भाई, सगड़ा किसान बहन घणा घणा राम राम सा।
6: और देखो किसानवाणी कार्यक्रम है, और देखो अबार जो सितंबर महीना चल रहा है, जो अंतिम जो पखवाड़ा है, दिन जो अपना कृषि कार्य है वह अपना किसान भाई कर रहा है। तो देखो बाहर का टाइम में देखो मौसम भी थोड़ा बिगड़ो है, कदे बरसात ज्यादा भी हुई कदे कम भी हुई। किसान भाई जी का अगेती फसल लगा रखा है, बंक में देखो नुकसान भी हुए है, देखो मूंग की फसल है या कोई बाजरा की फसल है, कटाई होगी खेत में रहेगी तो पानी पर बहुत नुकसान हुए है या जड़गी। तो देखो अबार जी को काम करवा का जो है जो किसान भाई बने अपना यही के बताऊंगा कि जो अपनी फसल जो कटाई कर लिए बिन धूप कमे सूखा देर जो अपना सिट्टा है या कोई पड़ा है मूंगा की या और उड़द की या जो सोयाबीन की कटाई है बंद कर ली, तो बंद देखो सुरक्षित स्थान पर बन रख ले और बन ढके और बंद पानी से बचाव करे, धूप निकला जाना बंद सुखा देवे। और जो कड़बी है या चारों और भी जो है किसान भाई काटा की फसल बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, तो बन भी देखो छोटा छोटा पुड़ा बना और बन इकट्ठा कर ले, धूप कमाई ने सूख बदे हुए पानी भर बहु फसल खराब नहीं हो बदे हुए ताकि वहां को नुकसान हो बसू बच जाओ। और देखो

0: ਆਪਣੇ ਜੇ ਮੂੰਗ ਉੜਦ ਉਹ ਦਲਹਨ ਜਿੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਹੈ ਜੇ ਕਟਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਟਾਈ ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਨ ਦੇਖੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥ੍ਰੈਸਿੰਗ ਕਰਾਓ ਬੰਕਿ ਸੂਖ ਬਾਗ ਬਾਦ ਮੈਂ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਪਰ ਹੀ ਬੰਨ ਰੱਖ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕ ਦਾਣਾ ਹੈ ਵਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਦਾਨ ਮੱਕਾ ਬਾਜਰਾ ਸੋਇਆਬੀਨ ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਜੇ ਪਕਾਓ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੱਕਾ ਹੈ ਬਾਜਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦਾਨ ਹੈ ਬੰਨ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਕ ਜੇ ਕੀਟ ਕੋ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੀ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੈਂ ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਬੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ
1: देखो इस समय में आपने जी के हवा में जी के नमी हुए और दिन को जो तापमान है ये कारण हुए वो बुरा फूद का नाम को और सीस ब्लाइट झुलसा रोग को प्रकोप हुए वो तेजी में फैला करे जो गए फसल की जड़ा के अनुसार अपन किसान निरीक्षण करना चाहिए जिसमें गए कीट नियंत्रण पर काबू ले सके
0: बिल्कुल। और देखो आप बतावा आवाज देखो जो बरसात हो रही है ये मैं देखो ज्यादा बरसात हो रही है तो इनको पानी है तो इनको भी अपन जल प्रबंध भी करना चाहिए आपने फार्म पोंड है डिग्गी है और कोई व्यवस्था तो बिम कर लिया नहीं तो जो पानी है जो आपने फार्म पोंड ये भर जावे तो बी के बाद में जो ज्यादा पानी रहे तो बीको अपन जल निकास भी करना चाहिए ताकि अपनी जो फसल है खेत का माइन है वह खराब नहीं और आगे की जगह आप तैयारी करा जो अपनी जो फसल कटाई नहीं हुई की कटाई कर बाकी की मान लो या और आपने जो मूंगफली है या धान है बम ज्यादा पानी भर जाए तो देखो फसल खराब भी हो सके बम रोग और कीड़ा लाग बाकी भी समस्या रही हो तो बीक निस्तारण के लिए अपन उचित जल प्रबंध की भी आवश्यकता है और जो मूंगफली पक जाए या जो सोयाबीन पड़िया पकवा लाग रही है तो बम आप रोग कीट की निरीक्षण कर बम देखो पाके बाद में वहां को आप फसल खेत में समेट लिया मूंगफली निकाल लिया खुदाई कर लिया तो और सुरक्षित बन आप जगह रख दें ताकि मौसम का विपरीत परिस्थितियों में अपनी जो फसल है खराब नहीं हुए और जो आप वाली जो फसल है रबी की जगह आप तैयारी करा
1: जी
0: तो जो खेत खाली हो रहा है साथ ही आप जो सादा हल सू और जो अपना जो तवा वाला हल है फिर वो है जगह अपने पलेवा है जो अपन जुताई करके नमी सुरक्षित करनी चाहिए ताकि अपने जो अगली फसल है बन आप सही तरीका लगा सका और बंको पूर्ण रूप से आपने जो अंकुरन हो जाए कम नमी नहीं रहे और आपने जो पलेवा की रंग की आवश्यकता नहीं पड़े अगर जरूरत पड़ रही है आपन का नाम की शरीर गोबर की या कंपोस्ट का डाल बाकी तो वह भी अपन डालना चाहिए।
1: देखो राजू भाई कुल मिलाकर बात है कि देखो किसान के लिए वो जो को टेम है वो देखो एक प्रकार दोहरी जिम्मेदारी को टेम है एक तरफ तो देखो बन चार महीने की मेहनत खरीफ फसल संभाल और काटनो है दूसरी तरफ बनी रवि फसल की नींव रेखनो है
0: बिल्कुल
1: तो वो पकवाड़ो है बहुत महत्वपूर्ण है
0: तो देखो आपकी जो फसल है बन सुरक्षित कटाई छटाई कर लिए और जो बाको फसलों को जो खाद्यान्न दान है बन देखो सुरक्षित स्थान पर रखा ताकि खराब नहीं हुए और आप देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ाओ और ले चाहो जानकारी की ओर तो देखो आज जानकारी है मरुद्रा में ड्रैगन फ्रूट खेती का नया अवसर डॉक्टर विजय लक्ष्मी यादव जी आगे जानकारी दे बने और मधु जी जानकारी दे रहे हैं तो मिला लेवा जानकारी
2: किसान वाणी कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी यादव सस्य विज्ञान राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर से आज आप हमारे बीच आए हैं और आज की हमारी जानकारी का विषय है मरुधरा में ड्रैगन फ्रूट खेती का नया सुनहरा अवसर तो डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी हमारे स्टूडियो में आपका खूब स्वागत नमस्कार
3: नमस्कार
2: तो डॉक्टर विजयलक्ष्मी जी सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ड्रैगन फ्रूट की आज हम बात कर रहे हैं तो ये ड्रैगन फ्रूट क्या है इसके बारे में हमारे श्रोताओं को और किसान भाइयों को जरा बताइए और इसकी खेती क्या राजस्थान में संभव है
3: जी हाँ मैम ये ड्रैगन फ्रूट एक कैक्टस कुल का पौधा होता है ये बहुवर्षीय होता है
2: जी
3: एक बार लगा दिया तो आराम से आप बढ़िया 10-15-20 साल तक इसकी खेती ले सकते हैं इसका फल है वो काफी पौष्टिक होता है इसका फल आपने देखा होगा जैसे कई बार गुलाबी रंग का होता है पीले रंग का भी होता है और ये स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा होता है
2: जी
3: और बाकी बाजार में देखें तो इसकी बाजार में वैल्यू काफी अच्छी है मार्केट डिमांड काफी अच्छी है इसलिए इसकी काफी अच्छी कीमत आपको मिल जाती है इसके अलावा ये अपने राजस्थान में इसको क्या है कि कम पानी की जरूरत होती है अपने राजस्थान में पानी काफी सीमित मात्रा में है इसलिए ये अपने राजस्थान के लिए काफी अच्छी वैकल्पिक फसल हो सकती है
2: जी वैसे भी हमारा जो राजस्थान प्रदेश है इसमें पानी की अक्सर कमी हुआ करती है

0: और ऐसे फ्रूट को अगर हम जूस करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो इस फ्रूट को लगाने की कोई खास विधि है और इसे एक एकड़ में हम कितने पौधे लगा सकते हैं?
1: हाँ जी मैम, इसको लगाने के लिए लगभग दो विधियां हैं, जिसमें एक तो रिंग पोल मेथड है,
0: हाँ जी,
1: और एक ट्रेलिंग सिस्टम है
0: जी।
1: रिंग पोल मेथड में क्या होता है कि खंभा लेते हैं 6 से 7 फीट का, उस खंभे के ऊपर एक या तो आप टायर ले सकते हो या फिर कोई सीमेंट की गोलाकार आकृति ले सकते हो, जिससे क्या खंभे के सहारे प्लांट जाके प्लांट को ऊपर जो गोलाकार आकृति है उसमें फैला दिया जाता है, जिससे कि अच्छी फ्रूटिंग ली जा सकती है इसमें
0: जी।
1: और इसके अलावा दूसरा ट्रेलिंग सिस्टम है, ट्रेलिंग सिस्टम में थोड़ा सा प्लांट ज्यादा ले सकते हैं अपन, लेकिन ज्यादा बेहतर मैं रिंग पोल मेथड को मानूंगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा सा आसान रहता है
0: जी। ये तो आपने विधि बताई इस पौधे को लगाने की, अब बात हम करें पोषण की और सिंचाई की। तो इसे पानी देने की कौन सी विधि है और किस तरीके से इस पौधे का हमें खास ध्यान रखना चाहिए?
1: इस पौधे को लगाने के लिए सबसे पहले तो अपन को 3 फीट चौड़ी बेड बनानी चाहिए और जो पोल है पोल के चारों तरफ 1 फीट गहरा खड्डा, 1 फीट गहरा चौड़ा खड्डा बना लेंगे, उसमें लगभग 70% खाद और 30% मिट्टी का मिक्सचर डालेंगे। इस पौधे को कम पीएच की जरूरत होती है, लगभग 3.5 से 6 पीएच के आसपास की जरूरत होती है। अगर अपन अच्छी सड़ी हुई खाद लेंगे तो उससे वो पीएच मेंटेन रह जाता है इसका
0: जी,
1: इसलिए इसमें अपन अच्छी खाद डालेंगे। इसके बाद में जो पोल के सहारे एक पोल के चारों तरफ अपन 4 पौधे लगा सकते हैं, फिर उसको वो पौधा पोल के सहारे बढ़ के आराम से उसको अच्छे से फैला के अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं उसमें। इसके बाद इसमें पानी की अपन को सबसे कम जरूरत पड़ती है इसमें, लगभग गर्मियों में तो आप 3 दिन में एक बार पानी दे दो और सर्दियों में लगभग 7 दिन से आपको पानी की जरूरत होगी, और इसमें ड्रिप मेथड आप यूज करो तो वो ज्यादा बेहतर है। और अपने राजस्थान में तो लगभग भाई जुलाई से सितंबर तक तो अच्छी बरसात हो जाती है, तो लगभग जुलाई से लेके नवंबर दिसंबर तक पानी की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ती है इसमें
0: जी।
1: जनवरी से लेके जून तक आपको थोड़ा पानी की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, बाकी और फसल के कंपैरिजन में इसको बहुत कम पानी की जरूरत होती है। और पोषण की बात करें तो इसमें सिर्फ गोबर की खाद की ज्यादा जरूरत होती है, जो कि आप साल में 2 से 3 बार दे सकते हैं, ज्यादा खाद भी नहीं देनी होती है इसमें क्योंकि इसे ज्यादा फिर साइड इफेक्ट आ जाते हैं, इसलिए कम खाद की रिक्वायरमेंट होती है इसमें
0: जी। डॉक्टर विजयलक्ष्मी जी, जहां हम ड्रैगन फ्रूट की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में जहां पानी का अभाव अक्सर देखा जाता है तो वहां धूप में तेजी भी बहुत ज्यादा देखने को हमें मिलती है, तो जो ड्रैगन पौधा है या ड्रैगन फ्रूट है क्या ये धूप को सहन कर पाएगा राजस्थान की जो धूप होती है, या फिर राजस्थान की तपती धूप से इसकी सुरक्षा के कोई उपाय हो तो आप हमें बताएं?
1: जी हाँ, वैसे तो ये काफी ज्यादा टेम्परेचर तक उगाया जा सकता है, लगभग 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ये सहन कर सकता है गर्मी, लेकिन इससे भी ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो अपन इसमें एक तो शेडिंग की फैसिलिटी कर सकते हैं, इसके अलावा आप जैविक मल्चिंग कर सकते हैं, और जो सिंचाई है वो काफी नियमित टाइम पे देनी चाहिए जिससे गर्मी से इसको बचाया जा सकता है।
0: किसान भाइयों, कार्यक्रम चल रहा है किसान वाणी और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विजयलक्ष्मी यादव, शस्य विज्ञान राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर से आज आप हमारे आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में आए हैं, और आज जिस विषय पर आप हमें जानकारी दे रहे हैं वो विषय है मरुदरा में ड्रैगन फ्रूट, खेती का नया सुनहरा अवसर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा आपसे कि ड्रैगन फ्रूट की खेती में निवेश करने से पहले किसानों को किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए?
1: किसी भी फसल को बड़े क्षेत्र में लगाने से पहले किसान को उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, अच्छी तरह से योजना बना लेनी चाहिए, जैसे कि उसकी बाजार में कितनी मांग है, पौध की सामग्री अपन को कहाँ से मिलेगी, सिंचाई की फैसिलिटी अपने पास है या नहीं है, और जो ये सहारा प्रणाली है जो पिलर सिस्टम है वो कहां से लेना है, कैसे लेना है, कैसे लगाना है, इसके लिए जो लेबर की

0: कितनी होगी, उत्पादन की लागत क्या होगी, और जो फ्रूट होगा, फ्रूटिंग होगी, उसकी बिक्री की संभावनाएं हैं या नहीं है, इन सब चीजों का आकलन कर लेना चाहिए। और किसान भाई को पहले ये फसल लेने से पहले किसान भाई को पहले छोटे क्षेत्र में इस फसल को लगा लेना चाहिए, ताकि उससे वो अनुभव ले सके, देन उसको बड़े क्षेत्र में जाना चाहिए।
1: तो ये सब जानकारियां जो है हमारा किसान भाई कहां से जुटाए?
0: इसके लिए आसपास के किसी केवीके में जा सकता है, किसी कृषि विशेषज्ञ से मिल सकता है।
1: हमारा जो नजदीकी कृषि अनुसंधान केंद्र है वहां जाकर हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
0: इसके अलावा भी कहीं कहीं ड्रैगन फ्रूट के फार्म लगा रखे हैं कई किसानों ने, वहां जाके विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए कि उन्होंने किस टाइप से खेती कर रखी है, उनसे वो जानकारी एकत्रित करनी चाहिए।
1: जी, तो पहले जब भी हमें इस फ्रूट की खेती करनी हो या इसमें निवेश करना हो तो ये सारी जानकारी हमें सबसे पहले जुटा लेनी चाहिए। इसके अलावा और किसान भाइयों को आप ड्रैगन फ्रूट से संबंधित जो खेती है इसमें और कौन सी खास बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए? आप हमारे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी?
0: सिर्फ ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन ही पर्याप्त नहीं होता, अपन को इसके बाजार की जानकारी भी होनी चाहिए। इस फसल में कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे अगर जल भराव हो जाए तो जल भराव की वजह से इसकी जड़ें सड़ने लग जाती हैं।
1: जी,
0: कई बार अधिक गर्मी की वजह से भी थोड़ा नुकसान देखने को मिलता है, तो अधिक गर्मी के लिए मैंने आपको पहले बता ही दिया कि शेडिंग वगैरह करनी चाहिए।
1: हाँ जी,
0: और अगर जल भराव की समस्या है तो जल निकास की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा इसमें पोषक तत्वों की कमी भी देखने को मिलती है, तो निरंतर अपने फार्म का विजिट करते रहे, देखते रहे पौधे को, पौधे की निगरानी करते रहे, ताकि कोई पोषक तत्व की कमी आ रही है तो उसमें उसकी पूर्ति की जा सके। इसके अलावा इसमें एक फंगस भी लगती है, फंगस जिस पौधे के जिस भाग पे फंगस लग रही है उसको काट के मिट्टी में दबा दो या दूर फेंक दो, ताकि वो फंगस आगे और ना फैले। इसके अलावा एक जैसे फ्रूटिंग आ जाती है तब चींटियां लगती है फ्रूट में, तो उसके लिए आप नीम ऑयल में पानी मिला के उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए मिट्टी में कम पीएच की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए अपन को अच्छी सड़ी गली हुई खाद का उपयोग करना है, ताकि मिट्टी का पीएच कम रहे, ज्यादा ना बढ़े। इसके अलावा इसकी पौध को लगाने के समय का ध्यान रखना है। इसकी पौध नॉर्मली आप फरवरी से लेकर अक्टूबर तक लगा सकते हो, लेकिन सबसे सूटेबल समय होता है इसके लिए फरवरी का समय सबसे बेस्ट रहता है, बाकी साल भर में आप कभी भी इसको लगा सकते हो। और ड्रैगन फ्रूट की खेती में जो अपन पिलर सिस्टम लगाते हैं इसमें थोड़ा स्पेसिंग का ध्यान रख सकते हैं, कि 10x10 ले सकते हैं या फिर 10x8 ले सकते हैं या फिर 12x8 ले सकते हैं। मेरा सजेशन 12x8 का होगा, क्योंकि इसमें अपन साथ में इंटरक्रॉपिंग भी ले सकते हैं, जिससे कि किसान को दो गुना मुनाफा हो जाएगा, कि एक फसल के साथ में वो दूसरी फसल भी ले सकता है। दूसरी फसल में मैं सजेस्ट करूंगी कि जैसे अपने राजस्थान एरिया में जो वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि प्याज हो गया, लहसुन हो गया, गोभी हो गई, और भी अगर कोई छोटी मोटी सब्जी लगाना चाहे तो किसान ले सकता है।
1: जी,
0: इसके अलावा अगर पिलर की हाइट की बात करें तो पिलर की हाइट लगभग 6 से 7 फीट लेनी चाहिए, ताकि जो ड्रैगन फ्रूट है उसकी कटिंग में दिक्कत ना आए। इसमें 2 फीट तो मिट्टी के अंदर ले लेना चाहिए पोल को, और 4 फीट बाहर रह जाएगा, ताकि कटिंग आसानी से हो सके। और पिलर है वो काफी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जो कैनोपी है इसकी वो काफी हेवी हो जाती है, इसलिए पिलर काफी मजबूत लेना चाहिए। और इसमें सिंचाई की जरूरत के अकॉर्डिंग ही पानी देना चाहिए, अगर पानी ज्यादा दिया तो इसकी जड़ों में दिक्कत होने लग जाती है, फंगस लग जाती है, इसलिए सिंचाई उतनी ही देनी चाहिए, ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे, ना कि पानी ज्यादा रहे।
1: डॉक्टर साहब, इसमें फूल और फल आने में कितना समय लगता है?
0: लगभग ये पौधा 1 से 1.5 साल का होता है, तो उसमें फूल आने, फ्रूटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट तो लगभग 1 से 1.5 साल में हो जाता है, लेकिन अगर अपन बेचने के पर्पज से देखें तो लगभग 2.5 से 3 साल में इसमें अच्छा उत्पादन मिलता है, ताकि अपन बाजार में इसको बेच सके। बाकी फूल आने से लेके फ्रूटिंग तक इसमें लगभग 1 से 1.5 महीना लगता है, मतलब 30 से 45

0: ड्रैगन फ्रूट की खेती की हम बात कर रहे हैं तो इसमें खर्चा कितना आता है और जो किसान है वो सालाना कितना इससे कमा सकता है, यानी कि लाभ कितना कमा सकता है किसान?
1: ड्रैगन फ्रूट की खेती में खर्चे की बात करें तो इसमें मेजर खर्चा अगर अपन पिलर सिस्टम ले रहे हैं तो पिलर का आता है और पौध का आता है और जैसे खाद वगैरह का ये आ गया, तो कुल मिला के लगभग इसमें 3 से 5 लाख के आसपास पर एकड़ खर्चा आ जाता है
0: जी।
1: और इनकम की बात करें तो 2 से 2.5 साल बाद में इसमें लगभग 5 से 6 लाख रुपए आप सालाना इनकम ले सकते हो, तो ये एक अच्छी खासी इनकम है।
0: अंत में आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं किसान भाइयों के लिए यही संदेश देना चाहूंगी कि बदलते मौसम और सीमित संसाधनों के दौर में खेती में विविधता लाना अति आवश्यक है। ड्रैगन फ्रूट राजस्थान के कई क्षेत्रों के लिए नया अवसर बन सकता है, लेकिन सफलता केवल फसल चुनने से नहीं बल्कि सही पौध, उचित खेत, वैज्ञानिक प्रबंधन और मजबूत बाजार व्यवस्था से मिलेगी। इसलिए किसान भाई पहले जानकारी लें, कृषि विशेषज्ञों की सलाह लें, स्थानीय परिस्थितियों का आकलन करें और फिर योजनाबद्ध तरीके से खेती शुरू करें।
0: मरुधरा में ड्रैगन फ्रूट खेती का नया सुनहरा अवसर, इस महत्वपूर्ण विषय पर हमको जानकारी दे रही थी डॉक्टर विजय लक्ष्मी यादव, शस्य विज्ञान राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर से। आप हमारे बीच आए तो डॉक्टर विजय लक्ष्मी यादव जी आपका धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: चला बोल रहा
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता चलती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग पहली वाली बात कहा।
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच
2: है? बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जल्दी खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: हाँ तो विशाल भाई, बहुत ही चौकी जानकारी द्वारा मधु जी, मरुद्रा में ड्रैगन फ्रूट खेती का नया अवसर डॉक्टर विजय लक्ष्मी यादव अपन जानकारी दिया, तो एक लिए देखो आप एक लोकगीत स्वरूप चौको सो दिया धन्यवाद। तो मिलर सुना
6: सुना सर।

0: तो राजू भाई देखो, अब घड़ी की सुइयां भी कर रही है इशारों, तो लेवा किसान बने।
1: बिल्कुल सा, देखो विशाल भाई बहुत ही चोको, अपना लोकगीत सुनिया लगा दे बजरंगबली रामगोपाल योगी जी पार्टी की आवाज में, और देखो आज का किसान वाणी कार्यक्रम को टाइम उड़े पूरे हो, और देखो थका भाई राजू और
0: विशाल ने दिया आज्ञा
1: और करा राम राम सा।
2: कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी, यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:30 बजे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: रविवार शाम 7 बजे सुनिए ग्राम भारती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर।
1: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुन वाला सगड़ा है तालान राजू भाई को राम राम सा और देखो विशाल भाई थन भी राम राम सा।
2: राम राम राजू भाई और सगड़ा खेतीबाड़ी सुन वाला किसान भाई ने घना घना राम राम सा नून प्रणाम।
1: अब देखो किसान भाया खेतीबाड़ी के साथ साथ में अपना जो धंधा सांसर है वह अपनी आजीविका को साधन है, तो आपने देखो अपना स्वास्थ्य के जिया और खेती बाड़ी का स्वास्थ्य के जिया अपना डांडा सासरा को भी अपन ध्यान रखना चाहिए। आप रखा भी हाँ क्योंकि वे एक अपनी आजीविका में बहुत सहयोग करे। तो देखो अबार का जो टेम है बी कमान अपना जो डांडा सासर है वहां को अपन विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखो माखी माचर है और कई रोग बीमारियां हुए तो भी अपन बचवा के लिए पशुओं ने साफ सुथरा रखा नुआ धुआ और साफ सुथरा सूखा स्थान परिवहन आप बांधर रखा और हरे और सूखो चारा ने अपना संतुलित प्रबंध कर बन देवा चारों बाट जो दाणो देवा वो भी आप देखो उपयुक्त चोको देवा और देखो डॉक्टर की सलाह सुनी आपने जानवर ने कोई भी गोली दवाई या इंजेक्शन दवाना चाहिए जी टेम टेम पर ताकि अपना जो पशु है बम कोई भी कीड़ा या कोई भी का रोग बीमारी है वो नहीं फैले। इसलिए आपने पशु जो टीकाकरण और कृमिनाशक जगह है वह अपन जो अपना नजदीकी पशु चिकित्सक है बंक मार्गदर्शन और सलाह ले रही अपन दुआना चाहिए जी।
2: और देखो सर ये मौसम में जो खुरपका मुंहपका गलगोटू हेर जो अपने डांडा सासर ने बुखार भी हो जाए तो आके लिए अपन टीकाकरण कराना टेम में जरूरी है। एक लिए आप जो अपने नजदीकी सरकारी पशु अस्पताल में आप संपर्क कर सका हाँ बैठे जा आप टीका लगवा सका। बरसात के मौसम में एक चीज अपन और देखभाल मिले है कि जो पेट का कीड़ा बाका अपने पशुओं का माए चला जाए तो सितंबर अक्टूबर में जगह पशुओं का जगह पेट के कीड़ा मारने की दवाई अपने पशुओं जरूर देनी चाहिए। दवाई देने के बाद में पशुओं का जगह दूध उत्पादन और स्वास्थ्य दोनों के अंदर सुधार आसी
1: बिल्कुल। और देखो अपना जो बीमार पशु है बन जो स्वस्थ पशुओं न्यारा रखना चाहिए ताकि अपना जो स्वस्थ पशु है बम कोई बीमारी नहीं फैल जाए और बा को अपना समय रहता उचित बा को देखभाल कर।

0: चित मगो नियंत्रण करना चाहिए जी। जो देखो अपना जो दूध दे बड़ा जानवर है बन साफ सुथरा रखना चाहिए जी, बका थन वगैरह साफ कर बाद में दूध दोना चाहिए ताकि वहां अपना स्वच्छता बनी रहे। और जो आपने भेड़ बकरियां है गीला चरागा में लंबा समय तक न रखना चाहिए जी, बाका खुर त्वचा को नियमित जांच करनी चाहिए ताकि बस सुबह में कोई बीमारी नहीं फैले। और देखो अपना जो आस पास के मायने पड़ोसी और या का अपना जो गांव का मायने कोई का डंडा सांसर बीमार हुआ तो भी स्थान पर अपना जानवर ने चराबा नहीं ले जाना चाहिए जी। और देखो बारिश लगातार वो भारी बारिश जो अपना पशु है बंद देखो ऊपर भी कोई छत या टीन शेड है जो पानी नहीं टपकर पानी नहीं भरे साफ सुथरी जगह बड़े अपन बांधना चाहिए और संतुलित आहार के साथ में अपन देखो साफ सुथरो बन जिको जितनी प्यास है पर्याप्त मात्रा में ताजा पानी भी उपलब्ध कराना चाहिए। तो देखो या तो आपने देखो पशुओं की देखभाल की एक छोटी सी जानकारी हुई। अब आप खेती बाड़ी कार्यक्रम में आगे ले चलना और एक सुना छोको सो लोकगीत
1: सुनाओ सर।

0: हाँ तो विशाल भाई बहुत ही चोको लोकगीत आप मिलर सुने आप बजलो रामा पीर। और तो देखो आप ले चला जानकारी और कार्यक्रम ने तो दवा जानकारी मर्दा स्वास्थ्य कार्ड और भी उपयोगिता के बारे में।
1: राम राम किसान भैया, आज आपने सागे है उद्यान की महाविद्यालय में डॉक्टर हनुमान प्रसाद परेवा जी सह आचार्य मृदा विज्ञान कृषि रसायन। डॉक्टर साहब थाको घणो घणो स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद साहब।
1: तो डॉक्टर साहब आज आप बात करा मृदा स्वास्थ्य के बारे में, तो आज मगे किसान बहन थे बताओ कि मृदा स्वास्थ्य काई हुए।
2: मृदा स्वास्थ्य सबसे पहले तो हमें और जानना पड़े कि मृदा को स्वास्थ्य क्या को है। तो मृदा स्वास्थ्य के लिए तीन प्रमुख कारण होया करे छे।
1: जी सर।
2: पहलो है आपने भौतिक कारक
1: जी,
2: दूसरी बा है एक जैविक और तीसरा है रासायनिक कारक
1: जी सर।
2: यदि तीनों कारक सही समान में संतुलित छे जब तो मृदा स्वास्थ्य छे। जाना भौतिक कारक में आप बात करा मृदा हमारी भुरभुरी होनी चाहिए
1: जी,
2: मृदा की जो जल धारण करबा की क्षमता छे वह अच्छी होनी चाहिए
1: जी सर।
2: अब बात करा आप की रासायनिक कारक की, तो रसायन में कहे जाए कि जो पोषक तत्व है 17 पोषक तत्व पौधा के लिए आवश्यक छे
1: जी।
2: तो वो पोषक तत्व छे ना वे एक उपलब्ध मात्रा में होना चाहिए। यही छे कि जो धनायन विनिमय क्षमता छे वह अच्छी होनी चाहिए। पीएच इको सामान्य होना चाहिए। इनकी जो एसी है वह भी सामान्य होनी चाहिए
1: जी।
2: इनके अलावा जैविक कारक में जहां हमारा आ गया जैविक कार्बन की मात्रा एक पर्याप्त होनी चाहिए
1: जी।
2: हमारा क्षेत्र में बात करें तो हमारे क्षेत्र की जो मृदाएं छे माटी छे बीमें जैविक कार्बन की मात्रा बहुत कम छे। इसके अलावा इनमें जो सूक्ष्म जीवाणु छे आकी भी पर्याप्त मात्रा में संख्या होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी एक कारक की कमी छे या दो कारक ज्यादा छे तो बिना संतुलित कौन कह सका
1: जी सर।
2: तो ये तीनों कारक मतलब मृदा अच्छी भुरभुरी भी होनी चाहिए, बीमें कार्बन की मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए, सारा पोषक तत्व तो होना चाहिए। ये सब तीनों भौतिक रासायनिक और जैविक कारक जब संतुलित मात्रा में होला तो बिना आपा कहना कि मृदा स्वस्थ छे। जी आप अपनी बात करा अपना स्वास्थ्य खराब हो जाए अपने डॉक्टर के पास जावा जा
1: जी।
2: तो इस वास्ते मृदा स्वास्थ्य जांच करने के लिए कई प्रकार की तकनीका से जो हमें ध्यान देनी चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब अब मैं थाने पूछूंगा कि मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़े अपन।
2: देखो आज हम देखा तो हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है
1: जी।
2: और एक किसान के दो बच्चा भी छे, कम से कम दो तो हो ही आजकल
1: जी जी,
2: कोई कोई के तीन भी होला चार भी होला। तो वो जो खेती जो हमारे खेत की जोत बड़ी थी वह कहीं होगी आजकल छोटी होगी। तो खेती छोटे छोटे टुकड़ा होता गया, कह तो भी घर बनावा लाग गया या हमारा शहरीकरण हो रहा है। अंधाधुन किसान भाई कहीं कर रहे थे कि या तो बहुत जानकारी के अभाव से या फिर अनभिज्ञता के कारण भी वे कई बार केवल एक ही प्रकार के जो रासायनिक उर्वरक है वे अप्लाई करे
1: जी सर।
2: जिसको कहीं हो कि कई प्रकार का पोषक तत्व की हमारे माटी में कमी आ गई। इसके अलावा जो पशुधन को जो किसान भाई गोबर खेत में डाला था या जो जैविक कार्बन या जैविक खाद डाला था वहां को इस्तेमाल भी वे न के बराबर करवा लग गया। इसके अलावा जो हमारे हरी खाद हो जैविक खाद बी को भी इस्तेमाल किसान न के बराबर ही करे और एक ही प्रकार का रासायनिक उर्वरक को भी इस्तेमाल करवा लग गया। कुछ किसान भाई जहाँ की खेत जंगल ज्यादा है तो वह कहीं करे कि जो फसल अवशेष हो जाए जमीन जला दे। तो इन कई प्रकार का कारक है जिसकी वजह से हमारा जो मृदा स्वास्थ्य से है वो कमी आ गई और मृदा स्वास्थ्य में कमी की वजह से कई प्रकार के पोषक तत्वों की कमी आ गई। थाने में बताऊं कि लगभग यदि पूरा अपना भारतीय मृदा की बात करा तो लगभग 8 से 9 प्रकार का पोषक तत्वों की कमी आ गई। और हम आप यदि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करा तो लगभग 5 से 6 यहाँ का पोषक तत्व जो अपने कमी आ गई। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि मृदा स्वास्थ्य के प्रबंधन का बारे में आपने जानना चाहिए।
1: तो मृदा स्वास्थ्य के प्रबंधन के बारे में थे बताया डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी दी। तो अब थे थोड़ा सा आकर बारे में जगह कारक है बा के कारक के बारे में भी थोड़ो प्रकाश डालो
2: जी। अभी आपने बताया है कि किसान भाई कई प्रकार के कारण हो जो कि मृदा स्वास्थ्य प्रभावित हो जाए, जाने एक बताया

0: गोबर की खाद का न के बराबर इस्तेमाल करना
1: जी सर।
0: तो एक कारण तो हो गयो, दूसरा हो गया कि किसान का इंग्रेज है कि अपने पड़ोसी का ही बारिश है
1: जी।
0: तो ऐसे मान लो गेहूं बाया तो अगले साल भी वो गेहूं बा लो, तो अब कहीं चाहिए कि यदि आप गेहूं गेहूं बारना तो गेहूं की जो जड़ा है ना वे थोड़ी हल्की हो जाए और जो दलहनी फसलें जब आगे जड़ा थोड़ी गहरी हो जाए
1: जी।
0: तो एक कारण हो गया कि दलहनी दलहनी फसलें या धान्य धान्य फसलें जो है बनी है धान वाली फसलें से गेहूं हो गया जो हो गया बाजरा हो गया जो कम जड़ों वाली फसलें से वे किसान ले वे एक ही फसल पद्धति अपनाव से को मतलब कुछ। दूसरा हो गया एक ही प्रकार का किसान भाई उर्वरक को इस्तेमाल करे थे जाने यूरिया
1: जी
0: और डीएपी, इसके अलावा तीसरों किसान डाले कौन, कुछ किसान जो बड़े किसान से वे आपका पोटेशियम क्लोराइड जो आप म्यूरेट ऑफ पोटासियम बोला था
1: जी
0: वो किसान डाले से, नहीं तो यूरिया और डीएपी। तो एक ही प्रकार का पोषक तत्व तो केवल एक ही प्रकार की मृदा की मांग और फसल की मांग पूरी करेला, तो एक कारण ओबीसी जो मृदा स्वास्थ्य को प्रभावित करे से। तीसरा कारण आपसे है कि आपा जो फसल अवशेष जो छे जिनमें कुछ किसान जलाबा लाग गया
1: जी
0: वो भी एक कारण छे। चौथा कारण मृदा स्वास्थ्य को भी छे कि जब बालू मिट्टी छे बड़े भी किसान भाई घरी जुताई कर रहा छे वो भी एक गलत तरीको छे। तो एक कई प्रकार का कारण छे जिसकी वजह से हमारी मृदा स्वास्थ्य के जो कारक छे मन प्रभावित कर छे।
2: तो डॉक्टर साहब अब थे माने बताओ कि मृदा स्वास्थ्य को प्रबंधन आपा कीन करा।
0: यदि किसान भाई ये जान गया कि हमारी मृदा को स्वास्थ्य ने प्रभावित कर वाला कौन कौन सा कारक है
2: जी,
0: पाक उल्टा ही करना चाहिए बस।
2: अच्छा
0: जाने एक प्रकार का उर्वरक की वो लगातार यूरिया डीएपी डाल दिया से
2: जी सर,
0: तो बने समन्वित मात्रा में पोषक तत्व तो डालना पड़ती, जाने यूरिया भी दो आप फॉस्फोरस दो तो डीएपी से दो या एसएसपी से दो
2: जी।
0: आप यदि पोटेशियम की मिट्टी में कमी है तो आपने पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम सल्फेट से दो। यदि मृदा में आप दलहनी फसलें ले रहे हो तिलहन फसलें ले रहे हो तो सल्फर वाली उर्वरक डालो, ये आपने यदि जिंक की कमी है तो जिंक सल्फेट डालो, यदि आपने आयरन की कमी है या मैग्नीज की कमी है या बोरोन की कमी है तो मृदा की जांच आप करवाओ और मृदा की जांच करने बाद में कौन कौन सा पोषक तत्व की कमी है तो वो कमियां अपन पूरा करना चाहिए। तो हमें कहीं करना पड़ लो अलग अलग जो खाद है जो हमारा उर्वरक से भी डालना पड़ेगा, पहला तो हो गया हमारा उर्वरक। दूसरा किसान भाई ने कहीं करना पड़ती कि जो गोबर किसान भाई या एक जगह डाल दे जाए खेत में ढेर डाल दे जाए इस समय खेत खाली जाए तो किसान भाई जो गोबर की ढेर बढ़िया जाए छाव में या गड्ढा में वो ले जा बड़े ढेरिया बना दे जाए खेत में
2: जी
0: और बिना एक महीना तक यही पटका रखे से। तो बिना कहीं करना चाहिए कि भी जो गोबर में डाल तो दिया वो तो सोचे कि मार दो खेत में तो पोषक तत्वों से भरपूर गोबर डाल दो जो मारे पैदवार की कौन हो रही भाई भी मैं जो नाइट्रोजन से वो तो दूर से उठ गयो और जी के अंदर जो कार्बन बचे और तुमको फॉस्फोरस और पोटेशियम बारिश बीच में होगी तो भूख नुकसान हो गयो, इसके अलावा जो कुछ जो सूक्ष्म जीव चा
2: जी
0: वे भी धूप में मरमरा गया। तो बन कहीं करना पड़ लो कि जिया ही आप डालो गोबर भी डाले बाद में एक दिन के अंदर दो दिन के अंदर बिना मिट्टी में खेत में पलट वाल जो हल छे बीसू खेत में मिला दो अच्छे छू बिना मिला दिया तो कहीं लो गोबर हमारा मिट्टी में मिल गयो।
2: अच्छा मतलब था कि कहने का मतलब है कि बिना धूप और वर्षा में बचाव करनी होगी गोबर ने।
0: समय पर भी गोबर ने मिट्टी में आप जी ढेरिया बनाया तो बिना तुरंत एक दो दिन के मायनी खेत में पलट दो
2: जी।
0: इसके अलावा छे हरी खाद जी किसान के पास में पानी की व्यवस्था छे कुओ छे नलकूप छे तालाब की व्यवस्था छे तो बिना कहीं छे इस समय गर्मियों में हरी खाद की फसल लगानी चाहिए
2: जी।
0: जिससे कहीं से आबाली फसल के लिए तो न केवल नाइट्रोजन की कमी कर सका था अपितु मृदा को स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो सके
2: जी।
0: क्योंकि ये दलहन फसलियां हो चे जो हरी खाद जो लगावा था मान लो आपने बरसीम लगा ली आपने रिजको भी हो गयो आपने मूंग होगी आपने गवार हो गयो ये जो दलहनी फसलें से आने ग्रीष्मकालीन फसलें हरी खाद का रूप में आप लगवा लिया तो ये आम काम और गुटलियों का दाम क्योंकि ये जो फलियां आवे तो फलियां भी ले लो और बी के बाद में खेत में इन पलट दो
2: जी।
0: पलटे सुखाए बोलो कि इनमें जो इनकी जो जड़ और जो पत्तियां छे इनकी जो तनों से और सड़ गलर पोषक तत्व मिट्टी में मिले लो कार्बन में मिले लो और सूक्ष्म जीवा की मात्रा बढ़ा ली जो वातावरण से नाइट्रोजन से जो ये फिक्स करे से अपने स्थिरीकरण करे से माटी में तो वो अगली फसल में भी मिल जाए लो। तीन हो गया सर। चौथों का एक रहा है कि जो फसल अवशेष किसान बड़ा जो बड़ा किसान है जो फसल अवशेष जलाओ है बिन बंद करना चाहिए
2: जी।
0: बिल्कुल कुछ ही

0: जो है कुछ भी जो है बने भी यदि कर दिया तो कई प्रकार नुकसान से, तो जलाभ नुकसान से, लेकिन इन्हें इन्हें या तो आप मल्च के रूप में इस्तेमाल कर सका था, जिससे कि हमारे माटी शू कहीं जो पानी से वो उड़ने जाए, मिट्टी हमारे कहीं जाए ठंडी भी रेवली। एक अलावा यदि किसान भाई मल्च को बागन यदि मल्च को ले सके वो, तो भी जो अवशेष है खरपतवार हो गयो या अपने फसल को जो पशु पक्षी न खा रहा है, तो भी जो हमारे पास में चारों रह गयो जी उसो, तो भी नहीं कहीं चाहिए कि अभी हमारा बाजार में कई प्रकार का डिकम्पोजर आ गया, जिसे हमारे जीवन हट्टी को खेवा था
1: जी,
0: और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से मंगवा सको छो, नहीं तो गाजियाबाद में जो अपने जैविक खेती को केंद्र से बढ़ाऊ भी आप वो मंगा सको छो, डीको जैविक कीट जो टीको से बिना बढ़ार जैविक कचरा का इस्तेमाल के इस्तेमाल कर सको छो, बिना सड़ा गला सको छो, और वो जो हमारा जो कचरो है वो सोना वो काम कर लो, मतलब कचरा शू आप हमारे जो गोबर की खाद या कंपोस्ट बना सका था आपा
1: जी,
0: इंड्रीज कंपोस्ट बना सका था, जिसू न केवल आप रासायनिक रोग जो है बिकी कटौती कर सका था, साथ में मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा कर सका था, तो ये इस प्रकार आप मृदा को स्वास्थ्य को प्रबंधन कर सका था।
1: बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब थे, तो एक चीज और जानना चाहूंगा मगर सगला किसान भाई भी जानना चाहूंगा चीज की, किसान भाई क्या पता करे की आपके मृदा के स्वास्थ्य बाबू क्या है?
0: देखो जहाँ आपा बीमार हुआ
1: जी,
0: तो आपा सीधा कुंकन जावा था
1: डॉक्टर कन जावा,
0: तो बस आई चाहिए कि मर्दा का यदि आपने स्वास्थ्य को पता लगाना चाहे तो सीधो आपने जो आसपास की हमारी मर्दा परीक्षण प्रयोगशाला है
1: जी,
0: जो आसपास में आपने कृषि विश्वविद्यालय से या कृषि विज्ञान केंद्र से
1: जी
0: बड़े जार से संपर्क करे, किसान बड़े जावे तो भी के लिए कहेंगे ना जी अभी हम खेत में उठा तो ले जा सके
1: जी,
0: तो वो कहेंगे कि एक मुर्दा को नमूना सही तरीका से लेर जावे, तो भी नमूना ले जावे तो भी की जांच करा ले, तो भी की वास्तविक स्थिति जो पोषक तत्व कमी छे कौन सा पोषक तत्व की कमी कौन है, तो जी की कमी छे वो हम डाल दिया, जी की कमी कौन है तो भी आप अपना पिसो भी बचा सका था और दूसरो चीजों में भी लगा सका था,
1: तो मतलब थे कह रहे हो कि मुर्दा को नमूनो और भी को आप परीक्षण नजदीकी कोई भी कृषि विद्यालय है बटजार इको करवा सकते,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में सुनो, वो कहीं चीज हुआ करे
0: वो जाना आपने एक रिपोर्ट हो जाए आप बीमार हो गया तो आपने डॉक्टर कह सके भी आपका खून की जांच करा लाओ
1: जी,
0: तो खून में कई प्रकार का एक पैरामीटर हो जाए,
1: अच्छा
0: यही आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहीं से एक एक कार्ड से कागज से जी पे 12 पैरामीटर हो जाए
1: जी,
0: जिनमें आपने पीएच होगी बीकी इसी पता लग जाए छे, बीमें जैविक कार्बन कहीं छे, बीमें नाइट्रोजन कती छे, फॉस्फोरस पोटेशियम और सल्फर, ये तो हो गया अपना मुख्य पोषक तत्व और द्वितीय पोषक तत्व
1: जी,
0: सल्फर द्वितीय हो गयो, इसके अलावा 5 का हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व भी छे जिनमें हमारा बोरन हो गयो, मैग्नीज हो गयो, जिनमें आपका लोह हो गयो, इसके अलावा आपका मोलिब्डेनम हो गयो और एक तांबा हो गयो, एक कुल 12 पोषक तत्व से जो कहीं बांका 12 में लिखे हुए आवश्य
1: जी सर,
0: और मृदा स्वास्थ्य कार्ड से हमारा जो माटी है खेत की देखिए वास्तविक स्थिति के बारे में पता लग गया है कि 300 पोषक तत्व कत्ती कत्ती मात्रा में छे, तो अपन जब पता लग गया कि उस सही मात्रा में छे जब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और यदि कम छे तो फिर हम बी के सुधार की आवश्यकता पड़े, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड केवल एक कहीं से अंकित एक डॉक्यूमेंट से एक कागज से जिसमें सारी सारी चीजा आपने पता लगाओ छे,
1: तो डॉक्टर साहब थे ये बताओ कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए अपन मृदा को परीक्षण कौन सी जगह करवानी पड़ी?
0: आज जगह आपा पहले भी बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड का लिए आपने मृदा को परीक्षण, तो मृदा का परीक्षण करवा के लिए मृदा का नमूना हमारे हिसाब से किसान भाई जानता होला क्या ले
1: जी,
0: फिर भी मैं थोड़ा सा बता दू कि आप यदि एक हेक्टर से किसान भाई ने यदि नमूना लेना है, 2 हेक्टर बाकी यदि जमीन है तो 1 से 2 हेक्टर तो आप 15 से 20 जगह निशान लगा लो, जब बड़ा वी आकार से खड्डो खोदर मर्दा को नमूनो ले बिने छांव में सुखा और बिने थैले में बांधर, आसपास का जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है बड़े जार पतो लगाओ या आसपास में आपके कृषि विज्ञान केंद्र के अलावा कृषि विश्वविद्यालय है तो बड़े भी चार किसान भाई एक बार पतो लगाओ कि बड़े मर्दा परीक्षण प्रयोगशाला हो जाए तो कहीं बड़े या सुविधा उपलब्ध से की, इनके अलावा हर जिला पर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला हो जाए
1: जी,
0: तो बड़े यदि सुचारू रूप से चालू है तो किसान भाई जहां तक हमारी जानकारी है करीब करीब सभी जिला पर आ सुविधा है, तो किसान भाई अपने नमूनों ले जावे और ले जा करके बड़े जार जमा करा दे,

0: उस योजना का मायने बाकन बाकी मर्जा को जांच रिपोर्ट बाकन मिल जाएगी।
1: तो किसान भैया ये आपने सगा डॉक्टर हनुमान प्रसाद परेवा जी से आचार्य मृदा विज्ञान व कृषि रसायन उद्यान की महाविद्यालय से डॉक्टर साहब थे ये कार्यक्रम में आया और मगे किसान भैया ने अति चौकी चौकी जानकारी दी मृदा स्वास्थ्य के बारे में। थाको घणो घणो धन्यवाद सर।
2: रविवार शाम 7 बजे सुनिए ग्राम भारती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर।
3: तो विशाल भाई बहुत ही चौकी ते जानकारी दवाया मर्दा स्वास्थ्य कार्ड और भी की उपयोगिता बारे में। और देखो देखे लिए था को धन्यवाद तो देशिया पर ये चौका सा गीत के साथ में देशिया तो मिलर सुना लो गीत।

0: हाँ तो विशाल भाई बहुत ही चोखो गीत सुनिया पिया आओ तो
1: जी
0: बिल्कुल। और देखो अब आज खेती बाड़ी कार्यक्रम को टाइम तो पूरा हो भरो है तो मिलर लेवा आ गया था का भाई राजू ने और
1: विशाल गोड़ ने दिया आ गया
0: और करा राम राम सा।

हूं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। रात के 8 बजे हैं, समय हो चला है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का पहला गाना आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में, बोल होंगे कुमार के और संगीत शरीफ तोशी का।

यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गाना आपको सुना रहे हैं धड़क फिल्म से अजय और श्रेया घोषाल की आवाज में, बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत अजय अतुल का।

अगला गाना आप सुनेंगे भाग मिल्खा भाग फिल्म से, श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाजों में, बोल है प्रसून जोशी के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

0: अगला गीत आप सुनेंगे कैलाश खेर की आवाज में, बोल होंगे कैलाश खेर के, संगीत कैलाश परेश और नरेश का।
1: लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी।

कार्यक्रम का अगला गाना आप सुनेंगे अजहर फिल्म से अरिजीत सिंह और अंतरा मित्र की आवाजों में, बोल होंगे मनोज यादव के और संगीत प्रीतम का।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत और अगला गाना आप सुनेंगे लाल सिंह चड्ढा फिल्म से अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजों में। बोल होंगे अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत प्रीतम का।

कहानी के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:19

0: नमस्कार श्रोताओं, रात के 8:30 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की तरंगों पर खेल जगत का सबसे विश्वसनीय और आपका पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। उम्मीद, जज्बे और जुनून से सजे कार्यक्रम के आज के अंक में मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जया भारती। श्रोताओं, आज हवाओं में अलग सा रोमांच है क्योंकि हमारे भारतीय जाबाज वैश्विक मंच पर तिरंगा लहराने को पूरी तरह से तैयार है। आज की विस्तृत चर्चा से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खेल सुर्खियों पर। जापान की नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य और रंगारंग आगाज। परेड ऑफ नेशंस में मनु भाकर और पवन सहरावत ने गर्व से लहराया तिरंगा। टेक बॉल स्पर्धा के सेमीफाइनल में भारत की क्विंसी डिसूजा को निराशा मिली। हार के बावजूद जज्बा बरकरार, कल खेलेंगी कांस्य पदक मुकाबला। समरकंद शतरंज ओलंपियाड के तीसरे दौर में कल भारत ने दोहरी जीत दर्ज की और आज चौथे दौर की बिसात पर जंग जारी। और शिलांग में चल रही नॉर्थ ईस्ट जोन इंटर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप संपन्न हुआ। असम और मेघालय की टीम ने नेशनल गेम्स 2027 के लिए क्वालिफाई किया। श्रोताओं, सबसे पहले बात आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण की। बिल्कुल सही समझा आपने, हम बात कर रहे हैं एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह की। जापान के नागोया शहर से आज 19 सितंबर को इन ऐतिहासिक 20वें एशियाई खेलों का आधिकारिक और रंगारंग आगाज हो चुका है। लेकिन श्रोताओं, भारत का विजय अभियान आज से नहीं बल्कि कल से ही शुरू हो चुका है, इसलिए आज भले ही खेलों का औपचारिक उद्घाटन हुआ हो लेकिन हमारे खिलाड़ियों के हौसले तो कल से ही बुलंद है। और आज शाम जब नागोया के मिजोहु पार्क एथलेटिक्स स्टेडियम में परेड ऑफ नेशंस की शुरुआत हुई तो हमारे एथलीटों के चेहरों पर वो आत्मविश्वास साफ नजर आ रही थी।
1: सारे जहां से अच्छा हिंदोस्त

0: पेरिस ओलंपिक की हमारी डबल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी के किंग पवन सहरावत ने पूरे गर्व के साथ हमारे तिरंगे को थामकर आत्मविश्वास के साथ साफ नजर आ रही थी। और जब हमारी कबड्डी के किंग पवन सहरावत ने पूरे गर्व के साथ तिरंगे को थामे रखा था और मुस्कुराते हुए 501 सदस्यीय विशाल भारतीय दल का नेतृत्व किया, उसके बाद उद्घाटन समारोह के बाद हमारे स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: When I got to know yesterday, so I had all these flashback memories of my earlier days. And when I started, kabhi bhi nahi socha tha ki this is where I can reach in one day in my sport. So it definitely it's like a very heartwarming feeling. I feel really proud. I feel really honored, and I really really feel so happy being chosen as the flagbearer of my homeland.
0: कबड्डी किंग पवन सहरावत ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: ये मेरे लिए बहुत प्राउडली मोमेंट, अभी भी मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं अपने नेशन का फ्लैग अपने हाथ में लेके चलूंगा। मैं उनसे पहले भी एक बार मिला हूँ, काफी मोटिवेटेड एथलीट है, और मेरे लिए भी प्राउड मोमेंट है कि ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ मैं फ्लैग बैरियर में साथ जाऊंगा। वुमेन का वो कर रहे हैं, मैन का मैं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये अच्छा मोमेंट है, इतनी बड़ी एथलीट के साथ जाऊंगा।
0: श्रोताओं, रुख करते हैं खेल के मैदानों का। आज एशियाई खेलों के उद्घाटन की चमचमाती शाम से पहले मैदान पर हमारे एथलीटों ने

0: पदक की पहली जंग भी लड़ी। दरअसल पहली बार एशियन गेम्स का हिस्सा बने खेल टेक बॉल में भारत की विश्व रैंकिंग 24 की खिलाड़ी क्विंसी जोआकिम डिसूजा आज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में उतरी थी। हालांकि परिणाम थोड़ा निराश करने वाला रहा। इस प्रतियोगिता पर विस्तार से बात करने के लिए इस समय स्टूडियो में हमसे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश। मुकेश, हमारे श्रोताओं को बताइए कि वहां पर आज इस प्रतियोगिता में क्या हुआ।
1: जी हाँ जया, नागोया सिटी हिगाशी स्पोर्ट्स सेंटर में आज टेक बॉल महिला सिंगल सेमीफाइनल में क्विंसी डिसूजा का सामना इंडोनेशिया की मजबूत खिलाड़ी एमा सुमाया से था। क्विंसी ने पहले गेम में पिछड़ने के बाद दूसरे गेम में गजब की वापसी की और तीसरे निर्णायक गेम में भी 4-1 की मजबूत बढ़त बना ली। लेकिन इंडोनेशियाई खिलाड़ी ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए अंत में पासा पलट दिया और 2-1 से मैच जीत लिया।
0: तो मुकेश, क्या क्विंसी के लिए पदक की उम्मीदें पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है?
1: बिल्कुल नहीं जया, भले ही आज सेमीफाइनल का नतीजा निराश करने वाला रहा हो, लेकिन हमारी खिलाड़ी का प्रदर्शन और जज्बा वाकई कमाल का था और क्विंसी का मेडल का सपना अभी टूटा नहीं है। क्विंसी कल महिला सिंगल्स और मोहम्मद अनस इमरान बेग के साथ मिक्स डबल्स में कांस्य पदक के लिए दोबारा कोर्ट पर उतरेंगी और हमें पूरी उम्मीद है इस नए खेल में भारत का पहला ऐतिहासिक पदक जरूर आएगा।
0: बिल्कुल मुकेश, हार जीत खेल का हिस्सा है और असली मायने खिलाड़ी का जज्बा ही रखता है। और आज शाम जब उद्घाटन समारोह की परेड ऑफ नेशंस में हमारे तिरंगे को थामे भारतीय दल की अगुवाई पेरिस ओलंपिक की हमारी डबल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी के किंग पवन सहरावत ने की, तो खिलाड़ियों के चेहरों पर वो जज्बा साफ नजर आ रहा था। भारत के 501 सदस्यीय विशाल भारतीय दल के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। श्रोताओं, अब बात करते हैं उस खेल की जो लगभग हर भारतीय के रग रग में बसता है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि भले ही एशियाई खेलों का उद्घाटन आज हुआ हो, लेकिन भारत का विजय अभियान कल से ही शुरू हो चुका है। कल हमारी विमेन इन ब्लू ने जिस तरह से मेजबान जापान को हराया वह वाकई शानदार था। भारत ने 8 विकेट की विशाल जीत के साथ सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है और सेमीफाइनल में भारत का मैच कल बांग्लादेश से होना है। इस प्रतियोगिता पर अधिक जानकारी के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला। विशेष, 8 विकेट की यह जीत और सीधे सेमीफाइनल का टिकट।
2: बिल्कुल जया, भारत रैंकिंग के आधार पर पहले क्वार्टर फाइनल में तो जगह बना ही चुका था, लेकिन जो 8 विकेट से एकतरफा मुकाबला जीता उससे सेमीफाइनल का टिकट तो मिला ही, लेकिन साथ ही साथ एक स्ट्रांग मैसेज गया है बाकी टीम्स को कि भारतीय गेंदबाजी बहुत घातक हो चुकी है। भारतीय गेंदबाजों की जितनी बात करें उतनी कम है। अभी हाल ही में हुए जो एशिया कप में भारत ने अपनी गेंदबाजी के दम पर पूरे टूर्नामेंट को एकतरफा बना दिया था और उसकी ही कुछ झलकियां जो है वो हमको कल देखने को मिली। श्री चंडी ने शुरुआत से ही दबाव बनाकर रखा और सर्वाधिक 4 विकेट झटके। उनके अलावा शेफाली वर्मा ने 2, जो कि एक पार्ट टाइम गेंदबाज है, दीप्ति शर्मा और शंका पाटिल ने 1-1 विकेट अपने नाम किया और भारत में एक आसान जीत दर्ज की।
0: बिल्कुल विशेष, कल की जीत तो आसान रही, लेकिन अब असली परीक्षा कल है। सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होना है और बांग्लादेश की टीम को हम हल्के में नहीं ले सकते।
2: बिल्कुल जया, सेमीफाइनल का मुकाबला कल है और बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो किसी भी दिन एक बड़ा उलटफेर करने का मानदा रखती है। एशियाई परिस्थितियों में उनके पास बेहतरीन स्पिनर्स हैं जो हमारे बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। भारत के लिए चुनौती होगी कि वे कल के मैच की गलतियों को ना दोहराएं, खासकर पावर प्ले में बांग्लादेश के स्पिन आक्रमण से संभल कर रहें ताकि एक अच्छी शुरुआत भारतीय टीम को मिले।
0: बिल्कुल विशेष, और कल के नतीजों के बाद सेमीफाइनल की चारों टीमें तय हो गई हैं। क्रिकेट के इस शानदार स्थिति के बाद अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी की, जिससे भारतीय प्रशंसकों को मेडल की काफी उम्मीदें हैं। एशियाई खेलों में कल से हॉकी का महाअभियान भी शुरू हो रहा है। ये मुकाबले जापान के काकामिगाहारा में स्थित गिफू प्रीफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में खेले जाएंगे। हॉकी के अलावा अन्य बड़ी प्रतियोगिताओं का शेड्यूल भी आ गया है। जैसा कि हमने कल ही बताया था कि ये शेड्यूल वीकेंड पर जारी किए जाएंगे और कल होने वाले प्रमुख प्रतियोगिताओं की जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शक्ति सिंह हैं।
2: जया, अगर कल मुकाबलों की बात की जाए तो हॉकी के भारत के कल मुकाबले खेले जाने हैं, जहां सुबह 7:30 बजे भारत की महिला टीम पूल बी में उज्बेकिस्तान से खेलेगी, जबकि पुरुष टीम पूल ए में इंडोनेशिया के खिलाफ 11:30 बजे अपना मुकाबला खेलेगी। बैडमिंटन कोर्ट में कल भारतीय

0: टीम अपने अंतिम 16 यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबले खेलेगी, जहां सुबह करीब 11:30 बजे भारत का सामना कजाकिस्तान से होगा। क्रिकेट के मैदान पर भारत बांग्लादेश के साथ खेलेगा। सुबह 10:30 बजे मुकाबला खेला जाएगा। मार्शल आर्ट महिला ट्रेडिशनल में 60 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में सुरुचि तरियाल का मुकाबला जो है मंगोलिया की खिलाड़ी से होना है। यह मैच सुबह 7:10 पे होगा। वहीं पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में वरुण सान्याल का मुकाबला खेला जाना है। यह मुकाबला दोपहर करीब 2 बजे होगा। निशानेबाजी में कल कई भारतीय खिलाड़ी आपको निशाना लगाते हुए नजर आएंगे। जया महिला 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल में इला वैनिल वाडावेरिन, सोनम मस्कर और विदर्श विनोद सुबह 6:15 बजे पदक के लिए मुकाबला करते हुए दिखेंगे, जबकि महिला 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत फाइनल में इला वैनिल वाडावेरिन, सोनम मस्कर और विदर्श विनोद सुबह 11 बजे क्वालिफाइंग करेंगे और उसके बाद पदक के मुकाबलों के लिए दांव पेश करेंगे। टेकबॉल में भारतीय महिला सिंगल्स टीम अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेगी, जिसमें क्वींस में डिसूजा का मुकाबला यूना सकामोटो से होगा, जो कि जापान की खिलाड़ी है और सेमीफाइनल में प्रवेश किया है उन्होंने। ये मुकाबला सुबह करीब 6:30 बजे खेला जाना है। मिक्स्ड डबल्स में कांस्य पदक मुकाबला क्वींस की डिसूजा मोहम्मद अनस बेग और की जो जोड़ी है इसका मुकाबला होगा हुआंग मी तान गुएन जिया निंग त्यान वियतनाम की इन दोनों खिलाड़ियों से। ये मैच सुबह 7 बजे खेला जाना है। तो जया ये है कल के मुकाबलों का हाल।
1: बहुत बहुत शक्ति बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति इस विस्तृत रिपोर्ट के लिए। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईची नागोया एशियाई खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल को शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और लगन ने देश का मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत को उन पर गर्व है और वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, अच्छा खेलें और देश का नाम रोशन करें। श्रोताओं, रुख करते हैं उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद का, जहां इस समय 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का चौथा दौर खेला जा रहा है। कल रात जब हम कार्यक्रम के अंत तक तीसरे दौर का मैच की बात कर रहे थे, तब मैच निर्णायक मोड़ पर था और तब मैंने कहा था कि कभी भी परिणाम भारत के पक्ष में आ सकता है, और ठीक ऐसा ही हुआ। कल पुरुष टीम ने इटली को 3-1 से और महिला टीम ने ग्रीस को 3.5 के मुकाबले आधे अंक से हराकर समरकंद में भारत को दोहरी जीत दिलाई। कल रात अंतिम बोर्ड नतीजों में डी गुकेश और निहाल सरीन ने अपने मुकाबले शानदार तरीके से जीते, जबकि आर प्रज्ञानंदा, अर्जुन रेयसी और महिला वर्ग में दिव्या देशमुख ने अपने अपने मुकाबले ड्रॉ खेले। लेकिन आज इस समय एक और अच्छी खबर आ रही है कि भारतीय पुरुष टीम ने राउंड 4 के बेहद कड़े मुकाबले में स्पेन को 3-1 से करारी शिकस्त दे दी है। और इस मैच का सबसे बड़ा आकर्षण रहे वर्ल्ड चैंपियनशिप के चैलेंजर डी गुकेश, जिन्होंने बोर्ड नंबर 4 पर स्पेन के दिग्गज और आक्रामक खिलाड़ी अलेक्सी शेरों को एक बेहद रोमांचक एंड गेम में मात देकर भारत की जीत पर मुहर लगा दी है। दूसरी तरफ महिला सेक्शन में हमारी भारतीय टीम मंगोलिया के खिलाफ भी बेहद मजबूत स्थिति में आगे बढ़ रही है, और जिसके अंतिम नतीजे थोड़ी ही देर में स्पष्ट हो जाएंगे। शतरंज के इन हमारे जाबाजों ने शेरों ने साबित कर दिया है कि वे अपने स्वर्ण पदक बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अंत में बात करेंगे हमारे घरेलू खेल के मैदान की। शिलांग में चल रही नॉर्थ ईस्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप आज समाप्त हो गई है, और इस प्रतियोगिता की पूरी जानकारी के लिए सुनते हैं शिलांग से हमारी संवाददाता अनुमिता की रिपोर्ट।
2: 4 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट इंटर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आज शिलांग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में समापन हुआ। प्रतियोगिता के 5 इंडिविजुअल कैटेगरी में असम के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के 270 से अधिक खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। ये प्रतियोगिता वर्ष 2027 में मेघालय में होने वाले नेशनल गेम्स की टीम कॉम्पिटिशन के लिए क्वालिफाइंग प्रतियोगिता भी थी। खिलाड़ियों ने इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान अंडर 17, अंडर 19, सीनियर इंडिविजुअल एंड टीम चैंपियनशिप्स में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में मिजोरम और मणिपुर ने 2-2 स्वर्ण पदक जीते, जबकि अरुणाचल प्रदेश ने 1 स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं मेजबान मेघालय को 4 ब्रॉन्ज मेडल्स मिले। आकाशवाणी समाचार के लिए अनुमिता दास, शिलांग।
1: बिल्कुल, और इसके साथ इस टूर्नामेंट के जरिए असम और मेघालय की टीमों ने नेशनल गेम्स 2027 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स स्कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल मैदान की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स स्कैन की ईमेल आईडी स्पोर्ट्स

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोमबाध खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम बागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में कल तेज बारिश की संभावना। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटी बनती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
1: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज स्टार्टअप Tier 2 और Tier 3 शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोलकाता में शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विशाखापट्टनम में आयोजित 20वें रोजगार मेले में 200 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुंबई में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। एक रिपोर्ट।
2: इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133

0: करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ से अधिक रुपए की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। 4 लेन रोड ओवरब्रिज सड़क यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाट की एक यूनिट से 25 किलोवाट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मुहुल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी एक कैबिन, शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड के चुमाओ के दिमा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की।
3: यह सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा, पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सम्मेलन में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री के विशेष वित्तीय पैकेज पर विचार किया जा सकता है। कोहिमा से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रगति ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर करने और तेजी से फैसले लेने में मदद की है। इससे अधिकारियों में जवाबदेही की भावना भी मजबूत हुई है। इस साल फरवरी में राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्तर पर विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और उनमें तेजी लाने में मदद मिली है।
5: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बैठाया, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपए का काम प्रगति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
4: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीबी नगर हैदराबाद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि प्रगति तंत्र की मदद से एम्स से जुड़े पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में मदद मिली।
6: हमारे पास 2 मेजर मशीन थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम दोनों

0: धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
1: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति की 53 बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की।
3: I think close to 8 cargo planes have arrived.
4: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पनबिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
3: The Indian government is looking at the issue of assistance very positive.
2: इस बीच भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाई, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। नेपाल सरकार ने पिछले महीने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रघुनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जब भी जरूरत होगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में कल तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। टेक बॉल स्पर्धा के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसूजा को इंडोनेशिया की सुमाया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी कल सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर आज मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ राधा अष्टमी मनाई। उत्तर प्रदेश के बरसाना, मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के अन्य हिस्सों में श्री राधा रानी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत स्वीकार किया मैंने फिल्म से अभी आपने सुना। निदा फाजली ने इसे लिखा और उषा खन्ना का संगीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत रेशमा और शेरा इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। जयदेव ने संगीत दिया, इसे लिखा बाल कवि बैरागी ने।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत ब्लैकमेल फिल्म से अभी आपने सुना। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा कल्याण जी आनंद जी की तर्ज। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यही संपन्न होता है।

0: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
1: संगीतकार नौशाद।
0: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

0: वाले
1: मशाल फिल्म के इस गीत को सुनकर आपको चार फुटपाथी आवारा लड़के याद जरूर आए होंगे जिसमें अनिल कपूर भी थे और एक थे गुलशन ग्रोवर।

गुलशन ग्रोवर का नाम जब भी लिया जाता है तो अक्सर बैडमैन की उनकी इमेज को ज्यादा उभारा जाता है, लेकिन दोस्तों सच ये है कि उन्होंने हर कैरेक्टर को एक नया गेटअप दिया है।

مت

गुलशन ग्रोवर मध्यम वर्गीय परिवार से और उनका बचपन दिल्ली में बीता। पढ़ाई लिखाई के दौरान ही एक्टिंग का शौक उन्हें लग चुका था। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उनके इस शौक को हवा मिली और उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर कई नाटकों में अभिनय किया। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद गुलशन ग्रोवर मुंबई की ओर अपना रुख कर चुके थे और यहां आकर उन्होंने फिल्मी ख्वाबों को फिल्मों में अभिनय के जरिए हकीकत में बदलने की ठान ली।

मुंबई में एक्टिंग स्कूल में उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखी और जब तक इंडस्ट्री में काम न मिला तब तक अन्य छात्रों को बतौर टीचर उन्होंने एक्टिंग के गुर भी सिखाए। उनके स्टूडेंट में उस समय संजय दत्त भी थे। जब सुनील दत्त साहब ने अपने बेटे संजय दत्त को लेकर फिल्म रॉकी लॉन्च की थी तो उसने संजय दत्त के दोस्त की भूमिका के लिए उन्होंने गुलशन ग्रोवर को ही सिलेक्ट किया था, यानी गुलशन ग्रोवर की पहली फिल्म थी रॉकी।

उन्होंने हीरो नहीं बल्कि एक बेहतरीन एक्टर बनने के लिए खुद को तैयार किया। हम पांच में उनकी एक्टिंग देखकर अभिनेत्री शबाना आजमी ने निर्माता निर्देशक मोहन कुमार की फिल्म अवतार के लिए गुलशन ग्रोवर को रिकमेंड किया और बाद में सिप्पी फिल्म्स की सदमा और एफसी मेहरा की फिल्म सोहनी महिवाल में गुलशन ग्रोवर ने अपनी अदाकारी की मिसाल कायम की।

0: गुलशन ग्रोवर ने फिल्मकार महेश भट्ट के साथ भी काम किया। फिल्म अर्थ में गुलशन को महेश जी ने छोटी सी भूमिका दी थी, लेकिन बाद की फिल्मों में गुलशन के भीतर के कलाकार को उन्होंने नए अंदाज में पेश किया। इसकी मिसाल थी फिल्म सर। यही नहीं, सुभाष घई ने भी गुलशन ग्रोवर को मौका दिया और पर्दे पर एक अनोखा बैटमैन पेश किया।
1: करते हैं सब मुझे सलाम, लेते हैं सब मेरा नाम, करते हैं सब मुझे सलाम, लेते हैं सब मेरा।

کرتا نہیں کوئی مجھے سلام، لیتا نہیں کوئی میرا نام، دس

यूं तो गुलशन ग्रोवर ने हिंदी के अलावा कई क्षेत्रीय भाषाई फिल्मों में काम किया, जिसमें खास हैं साउथ की फिल्में। लेकिन बॉलीवुड के इस बेहतरीन अदाकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक्टिंग के जलवे दिखाए हैं। फ्रांस, इटली, जर्मन, यूके और हॉलीवुड की फिल्मों में उन्होंने बखूबी काम किया है। फिल्म जंगल बुक ने भी गुलशन ग्रोवर को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई है। फिल्म मारी गोल्ड, जिसे मेरी गोल्ड भी कहा जाता है, इस फिल्म में सलमान खान के साथ उन्होंने एक नया किरदार पेश किया है। हालांकि सलमान के साथ गुलशन ग्रोवर ने चंद्रमुखी और कुर्बान जैसी फिल्मों में भी काम किया था।

दोस्तों, गुलशन ग्रोवर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, लेकिन वो मानते हैं कि उनके पहले सईद जाफरी, कबीर बेदी और परसिस खंबाटा ने भी हॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है।

0: दोस्तों, आपको याद होगा कि गुलशन ग्रोवर ने यूं तो कई फिल्मों में और भी कैरेक्टर निभाए हैं, लेकिन सन 2006 में रिलीज गैंगस्टर, 2010 में रिलीज हुई फिल्में हैं नॉकआउट और प्लेबैक, 2011 में आई एम कलाम और 2012 में एजेंट विनोद में आपने उनका अभिनय जरूर देखा होगा।
1: और फिल्म एजेंट विनोद के बाद भी गुलशन ग्रोवर की अभिनय यात्रा बदस्तूर जारी है। दोस्तों, आपने इन्हें फिल्म राजधानी एक्सप्रेस, बुलेट राजा और यारियां फिल्मों में भी देखा होगा। ये था प्रोग्राम आज के फनकार, केंद्रित था जाने माने अभिनेता गुलशन ग्रोवर पर। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, अब दीजिए इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

0: छाया गीत हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा। पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम जो यहीं संपन्न हुए। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण की डेली हाईलाइट्स।
1: हमारी परंपराओं में हमेशा पूरी दुनिया को एक साथ लाने की बात कही गई है और स्पोर्ट्स यानी खेल शायद उसका सबसे बेहतरीन जरिया है।
2: एक गेंद हवा में उठती है, एक दौड़ शुरू होती है और शुरू होती है खिलाड़ियों की जद्दोजहद। दर्शकों की नजरें गेंद पर टिकती हैं, सांसें थम जाती हैं और फिर

एक पल आता है जाने कितनी धड़कने एक लय पकड़ लेती हैं, और जीत की खुशी में जाने कितने चेहरे एक साथ खिल उठते हैं। शायद खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। दुनिया में कितनी ही दूरियां हैं, कितने मतभेद हैं, कितनी दीवारें हैं, लेकिन खेल एक ऐसा जरिया है जो सबको एक साथ एक मंच पर ला खड़ा करता है। और एशियन गेम्स की तो शुरुआत ही इसी सोच के साथ हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के उथल पुथल से जूझ रही इस दुनिया के तमाम देश जब 1948 के लंदन ओलंपिक्स में एक साथ आए तो खेलों की सबको एकजुट करने की ताकत को गुरुदत्त सोढ़ी ने महसूस किया और सपना देखा एशिया के सभी देशों को ठीक इसी तरह एक मंच पर लाने का। इसी विजन के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की अगुवाई में भारत ने पहल करी और 1951 में नई दिल्ली में पहली

0: में भारत ने पहल करी और 1951 में नई दिल्ली में पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन हुआ।
1: आज 75 वर्षों बाद भी ये मंच एशिया को यानी दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहा है
0: और इसका एहसास आज जापान के पालोमा मिज़ुहू स्टेडियम में हुआ, जब एक भव्य उद्घाटन समारोह में 45 अलग अलग देशों के एथलीट्स एक साथ आए। सबकी भाषाएं अलग, पहचान अलग, रंग रूप अलग, खान पान अलग, इतिहास अलग, लेकिन खेल के इस मंच ने सभी को एक साथ ला खड़ा किया।
1: मेजबान देश जापान ने तो अपना कल्चर शानदार तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें संगीत की एक अमिट छाप, सांस्कृतिक कार्यक्रम और एशियन गेम्स के बड़े मंच के जरिए एशिया के सभी देशों को एकजुट लाने का संदेश दिया। ओपनिंग सेरेमनी की थीम थी हार्मोनिक हार्टबीट। यही नहीं, मंच भी दिल के आकार का था, जहां एक एक करके सभी देशों ने अपने अपने देश का ध्वज लेकर मार्च पास किया।
0: उद्घाटन समारोह में भारत की एंट्री भी खास आकर्षण का केंद्र बनी। पेरिस में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली मनु भाकर और स्टार कबड्डी खिलाड़ी भारतीय टीम के उपकप्तान पवन सहरावत को मौका मिला भारत के ध्वजवाहक बनने का। दोनों हाथ में तिरंगा लिए भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए नजर आए और पीछे भारत के खिलाड़ी भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सुनाई दिए।
1: भारतीय खिलाड़ियों में देश का जोश, गौरव और भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक साफ नजर आ रही थी। खास तौर पर भारतीय दल के परिधान ने सभी का ध्यान खींचा। महिला खिलाड़ी नेवी ब्लू कलर की साड़ी में गुजराती स्टाइल के पल्लू के साथ नजर आई, तो पुरुष खिलाड़ियों ने नेवी ब्लू कलर का बंद गला परिधान पहना था, जिसकी शोभा भारत के तिरंगे के 3 कलर बखूबी बढ़ा रहे थे। इस आधुनिक अंदाज ने भारतीय दल की प्रस्तुति को अलग पहचान दे दी। तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाते भारतीय खिलाड़ी जब स्टेडियम में पहुंचे, तो उनके परिधान में भारतीय परंपरा और आधुनिक खेल भावना का संगम दिखाई दिया और हमारे दोनों ध्वजवाहकों के नेतृत्व में भारतीय दल की ये तस्वीर एशियन गेम्स के मंच पर भारत की पहचान और आत्मविश्वास को सामने रखती नजर आई। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष शेख जोवान बिन हमाद अल थानी ने सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल के जरिए सभी देशों को एकजुट करने की बात कही।
2: To each and every one of you, the entire continent is behind. Give everything you have, hold nothing back. The impact of what you achieve here will stretch far beyond any medals or performances. Throughout our continent, across all nations, big and small, from urban cities to rural villages, millions of young people are watching. They may not yet know what they're capable of, but they're watching you, they're learning from you, they are dreaming because of you. And what you do on this stage speaks to them about what is possible, what can be achieved when you push the limits of human potential, and what it means to do so with fairness and respect. This is the spirit of Asia.
1: समारोह में टॉर्च लाइटिंग सेरेमनी भी हुई। कमाल की बात है कि खेलों का शुभांकर है होने हॉन, जिसका नाम पारंपरिक जापानी शब्द से आता है, अर्थ है फ्लेम यानी ज्योति।
0: समारोह में सभी खिलाड़ियों ने खेल भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करने की शपथ ली। रेफरी, अंपायर्स और खेल निर्णायकों ने भी निष्पक्ष होने की शपथ ली।
3: スポーツマンシップの精神にのっとり、大会の規則を尊重遵守し、公正なジャッジを

0: 行うことを約束します。
1: एशियन गेम्स 2026 में कुल 43 खेल हैं और 469 मेडल दांव पर हैं। ज्यादातर खेल नागोया शहर और आईची प्रेफेक्चर में होंगे, लेकिन स्विमिंग की प्रतिस्पर्धाएं टोक्यो और फुटबॉल का खेल ओसाका में खेला जाएगा। लगभग 17,000 एथलीट इस बार एशियन गेम्स में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। औपचारिक तौर पर भले ही एशियाड की शुरुआत आज हुई है, लेकिन फुटबॉल, क्रिकेट और टेकबॉल के कुछ मुकाबले बीते हफ्ते खेले जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं अब तक हुए मुकाबलों की।
2: सबसे पहले बात टेकबॉल की। टेबल टेनिस की तेजी और शरीर के हर मूवमेंट पर शानदार नियंत्रण, इन तीनों का रोमांच अगर एक खेल में देखने को मिले तो वो होता है टेकबॉल। तेजी से लोकप्रिय हो रहा यह अनोखा खेल पहली बार आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 में पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया है। यानी इस बार एशियाई खेलों में टेकबॉल के इतिहास पर पहला अध्याय लिखा जा रहा है। टेकबॉल की शुरुआत हंगरी में हुई। इसे घुमावदार टेबल पर फुटबॉल के साइज 5 की गेंद के साथ खेला जाता है। खिलाड़ी हाथ और बाजुओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पैर, जांघ, छाती, सिर और कंधे जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में गेंद को नियंत्रित करते हुए उसे विपक्षी की तरफ भेजना होता है। एक खिलाड़ी या टीम को गेंद को वापस भेजने से पहले अधिकतम 3 टच मिलते हैं और एक ही बॉडी पार्ट से लगातार 2 बार गेंद को छूना फाउल माना जाता है। डबल्स खिलाड़ियों के बीच तालमेल और टाइमिंग भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में भारत की भी टेकबॉल में एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। भारत के लिए एशियन गेम्स एक नई शुरुआत लेकर आया। भारत टेकबॉल दल में क्विंसी डिसूजा, मोहम्मद अनस इमरान बेग और डेक्लॉन मार्शल गोंसाल्वेस शामिल हैं। भारत ने पुरुष डबल्स, महिला सिंगल्स और मिक्स डबल्स में चुनौती पेश की। पुरुष डबल्स में अनस बेग और डेक्लॉन गोंसाल्वेस की जोड़ी को ग्रुप स्टेज में वियतनाम और दक्षिण कोरिया के खिलाफ दोनों मुकाबलों में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा और उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। लेकिन भारत की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। महिला सिंगल्स में क्विंसी ने शानदार शुरुआत की। उन्होंने जापान की वार्ड नंबर 7 और स्थानीय खिलाड़ी युइना सकामोटो को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। इसके बाद कंबोडिया की ओएमियन डीवाई को 2-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला इंडोनेशिया की इमा सुमाया से हुआ। क्विंसी ने पहला सेट 12-7 से जीत लिया, लेकिन सुमाया ने वापसी करते हुए अगला सेट 12-9 और निर्णायक सेट 12-8 से अपने नाम किया। इस तरह क्विंसी फाइनल से चूक गई, लेकिन अब उनके पास ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत के लिए पदक जीतने का मौका है।
1: दूसरी तरफ शुक्रवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम मैदान पर उतरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने। कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारत के खिलाफ जापान की मेजबान टीम थी। यूं तो जापान में क्रिकेट उतना लोकप्रिय है नहीं, लेकिन फिर भी अपने देश की टीम को देखने के लिए अच्छी खासी तादाद में दर्शक पहुंचे। भारतीय दर्शक भी मैदान में हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम की हौसला अफजाई करने पहुंचे। भारतीय टीम अभी अभी वुमेन्स एशिया कप जीत कर आई है और इसीलिए जापान पहुंच ट्रेनिंग करने का भी उन्हें समय नहीं मिला था। इसके बावजूद जैसी अपेक्षा थी, मुकाबला एक तरफा रहा। जापान को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतने के बाद दिया और फिर श्री चरनी की कमाल की गेंदबाजी के चलते भारत ने जापान की टीम को केवल 57 रन पर समेट दिया। शेफाली वर्मा के ताबड़तोड़ 40 की पारी के चलते भारत ने इस मुकाबले को आसानी से जीता, लेकिन कमाल की बात ये रही कि एशिया कप में जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला, उन खिलाड़ियों को मौका देने की कोशिश भारतीय टीम ने की। जी कामलिनी स्मृति मानधना की जगह ओपन करते हुए नजर आई, तो वहीं भारती फूलमली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आई। भारत इस जीत के बाद अब सेमीफाइनल में प्रवेश पा चुका है। आपको याद दिला दें कि पिछले संस्करण में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था और अपना ताज बचाने के लिए भारत महिला क्रिकेट में शिरकत कर रहा है। सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा कल यानी रविवार को भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे भारत के सामने बांग्लादेश की टीम होगी। उससे पहले सुबह 5:30 बजे श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अगर भारत कल जीतता है तो एक बार फिर क्रिकेट में महिला टीम का पदक सुनिश्चित हो जाएगा। दूसरी तरफ चेकबॉल में भी कल 2 पदक आने की पूरी उम्मीद है। रविवार को सुबह भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे क्विंसी डिसूजा महिलाओं के सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगी, जिसमें सामने होंगी जापान की युइना साकामोटो। उसके बाद ठीक 7 बजे एक और मुकाबला खेल

0: के लिए क्विंसी मैदान पर उतरेगी। इस बार चुनौती होगी मिक्स डबल्स की, जिसमें उनका साथ देंगे मोहम्मद अनस इमरान बेग और सामने होने वाली है वियतनाम से आने वाली मिनटैंग निगुयेन और जिया श्रिन की जोड़ी। ये मुकाबले नगोया सिटी स्पोर्ट्स सेंटर में खेले जाएंगे। टेकबॉल के अलावा रविवार को भारतीय प्रशंसकों की नजरें हॉकी के मैदान पर भी होंगी। पुरुषों की हॉकी टीम से एक डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद अब उम्मीदें बहुत ज्यादा गहन हैं, क्योंकि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने का मतलब सिर्फ अपना ताज बचाना नहीं है, बल्कि एलए 2028 के ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करना भी है, और इसीलिए गोल्ड मेडल लाना जरूरी है। भारतीय टीम यूं तो एशिया में बादशाह मानी जाती है और इसीलिए गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार भी है, लेकिन कुछ और टीमें भी हैं जो उनको चुनौती देने का दमखम रखती हैं। और बताते हैं पूर्व हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल।
1: तो ये सब गेम्स हैं दोनों मैन एंड वुमेन के लिए, और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा, ना कि ओनली हिंदुस्तान की टीम इस बात को सोच रही होगी, क्योंकि जापान इज अ होस्ट कंट्री, ऑल्सो पाकिस्तान भी है उधर, मलेशिया इज ऑल्सो देयर, साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। तो मेरे ख्याल में सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा, दिस इज द गोल्डन चांस एनीबॉडी हु विंस द गोल्ड, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कॉम्पिटिशन है एशियन गेम्स का। मगर अगर ये बात कहें कि वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स, उसका स्तर अलग है, यहाँ का स्तर अलग है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम, ये तो मुझे तो इसमें शक नहीं कि वी आर स्ट्रांगेस्ट टीम, बहुत मजबूत टीम है हमारी, बट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम जीत के गोल्ड ही लेके आएंगे, लाना चाहिए भी विद द सेम मेंटेलिटी अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन डू इट, मगर हर टीम के हाथ में भाई प्लानिंग भी है, स्टैमिना और स्ट्रेटेजी और सब लेके चल रहे होंगे कि कोई भी अगर जीतेगा जापान और साउथ कोरिया इवन पाकिस्तान इंडिया, तो ये जो 12 टीमों में से 4 टीमें ऐसा चाइना विल गिव अ गुड फाइट ऑल्सो, तो इसमें यही है कि हमारा अपर हैंड तो है, नो डाउट अबाउट, मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे इसमें।
0: कल भारतीय पुरुष टीम अपना पहला मुकाबला खेलेगी जीफू प्रेफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे, सामने पूल ए के मुकाबले में इंडोनेशिया की टीम होने वाली है। देखना होगा कि हरमनप्रीत सिंह के ड्रैग फ्लिक क्या एक बार फिर भारत के कैंपेन का आगाज जीत के साथ करेंगे। जहां पुरुषों से उम्मीदें पुरजोर है, महिलाओं से भी अपेक्षाएं कम नहीं है। भारतीय वुमेन्स टीम ने हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी उम्मीद बहुत कम लोग कर रहे थे। इसके बाद ये माना जा रहा है कि एशियन गेम्स में भी पोडियम फिनिश के लिए भारतीय टीम फर्म फेवरेट्स है। पूल बी में भारतीय टीम है और कल पहला मुकाबला खेलने वाली है। सुबह 7:30 बजे उज़्बेकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले की शुरुआत उसी स्टेडियम में होगी। हॉकी के बाद नजरें होंगी बैडमिंटन के कोर्ट पर, जहां पर वुमेन्स टीम इवेंट का पहला मुकाबला कल खेले जाने वाला है। भारत के सामने कजाकिस्तान की टीम है और भारतीय टीम में अनुभव और युवा जोश का एक अच्छा मिश्रण है। जहां 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु पर तो स्पॉटलाइट होने ही वाली है, तो वहीं उन्नति हुड्डा, देविका सिहाग और तन्वी शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी भी भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ईशानी बरुआ, काविप्रिया सेल्वम, सिमरन सिंघी और तनीषा क्रास्टो भी टीम का हिस्सा है। साथ के साथ BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल दिलाने वाली ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी भारतीय टीम का हिस्सा है। इस फिक्स्चर में 5 बैडमिंटन मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से 3 में जीत हासिल कर आप पूरे मुकाबले को जीत जाएंगे। बैडमिंटन के बाद नजरें होंगी टेबल टेनिस पर। टेबल टेनिस के मुकाबले खेले जाने वाले हैं स्काई हॉल में और सुबह 9 बजे सबसे पहले भारत की पुरुष टीम उतरेगी मैदान पर। नाना सेकरम साथियान, हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की ओलंपिक्स के अनुभव वाली तिगड़ी तो है ही, साथ के साथ मानुष शाह और पायस जैन भी इस टीम का हिस्सा है। कल भारत का पहला मुकाबला इंडोनेशिया के खिलाफ है। उसके बाद 3 बजे ये टीम दोबारा कोर्ट पर उतरेगी ईरान से टक्कर लेने। महिला टीम का भी कल एक मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार 12:30 पर सिंगापुर से भारतीय टीम लोहा लेगी। श्रीजा अकुला, यशस्वरी घोरपड़े, दिया चितले, सिंड्रेला दास, के साथ पिछले एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली सुतीर्था मुखर्जी टीम का हिस्सा हैं।

0: फिर चलेंगे शूटिंग रेंज की तरफ, जहां पर 10 मीटर एयर राइफल में महिलाओं की इंडिविजुअल प्रतियोगिता से आगाज होगा और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी विदर्शा विनोद, सोनम मास्कर और इलावनिल बलारीवन। फिर ये तिगड़ी 10 मीटर एयर राइफल की टीम प्रतिस्पर्धा में भी शिरकत करते हुए नजर आएगी।
1: अब बात करते हैं कुछ और खेलों की। जापान की धरती और खासकर नागोया, जहां इतिहास में समुराई की तलवार, अनुशासन और युद्ध कौशल की अपनी अलग पहचान रही है। ऐसे माहौल में जब एशिया के खिलाड़ी खेलों के सबसे बड़े मंच पर आमने सामने हैं, तो मार्शल आर्ट से जुड़े खेलों का रोमांच भी खास हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ वुशु से लेकर एमएमए तक की। एक तरफ वुशु में भारतीय खिलाड़ी अपनी तकनीक, गति और ताकत दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में पदक खेल के रूप में अपनी शुरुआत कर रहा है और इस ऐतिहासिक शुरुआत में भारत की चुनौती संभाल रहे हैं वरुण सान्याल और सुचिका तारियाल। वरुण सान्याल पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में उतरेंगे। वो दो बार के राष्ट्रीय चैंपियन हैं और जनवरी 2026 में चीन में हुई एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। वहीं सुचिका तारियाल महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सुचिका इससे पहले 2022 हांगझोउ एशियन गेम्स में कुराश में भारत के लिए खेल चुकी हैं। और अब बात सिर्फ एक मुकाबले की नहीं, ये उस खेल के इतिहास का हिस्सा बनने की है जिसने एशियन गेम्स के मंच पर पहली बार दस्तक दी है। अब बात करते हैं वुशु की। वुशु के मुकाबले सुबह से ही शुरू हो जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी अलग अलग खेलों में पदक की चुनौती पेश करेंगे। इन्हीं में वुशु भी शामिल है, जहां भारत की नजरें एक पदक मुकाबले के साथ साथ सांडा के नॉकआउट मुकाबले पर रहेंगी। वुशु के मुकाबले नागोया के आईची प्रीफेक्चुरल मार्शल आर्ट्स हॉल में खेले जाएंगे। भारत की ओर से सबसे पहले मैदान में उतरेंगे सूरज सिंह। सूरज सिंह सुबह 5:35 पर पुरुषों के जांग क्वान ताउलो फाइनल में अपना प्रदर्शन करेंगे। ये सीधे तौर पर मेडल इवेंट है, इसलिए भारतीय प्रशंसकों की नजरें इस मुकाबले पर रहेंगी। जांग क्वान वुशु की ताउलो यानी रूटीन आधारित स्पर्धा है, जिसमें खिलाड़ी अपनी तकनीक, संतुलन, गति और कलात्मक प्रस्तुति के जरिए अंक हासिल करते हैं। सूरज सिंह के लिए ये मुकाबला एशियन गेम्स में भारत के वुशु अभियान को पदक के साथ आगे बढ़ाने का मौका है। इसके बाद दोपहर में सांडा में भारत के दो खिलाड़ी नॉकआउट मुकाबलों में उतरेंगे। महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में अपर्णा का सामना ईरान की सोगंध सिकाई चेतन से होगा।
0: तो बैडमिंटन कोर्ट से लेकर हॉकी के मैदान तक, क्रिकेट के स्टेडियम से लेकर टेबल टेनिस के टेबल तक, स्विमिंग पूल से लेकर शूटिंग रेंज तक, हर जगह जहां भारतीय एथलीट्स शिरकत करते हुए नजर आएंगे, वहां हमारी नजर रहेगी। आकाशवाणी लगातार एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से आपको अवगत कराता रहेगा। आवरली लाइव अपडेट्स के साथ हम कल सुबह 9:30 आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल एडिटर वंदना भारद्वाज और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दर्पण टिकिया और कविता शर्मा को दीजिए इजाजत।
2: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 10:20 हुए हैं। डीजे पेशे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

ये सुन रहे थे आप फिल्म अस्तित्व से सुखविंदर सिंह की आवाज में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई से, आवाज अलका याग्निक की। गीत में बोल हैं कतील शिफाई के और संगीत अनु मलिक का।

गीत सुन रहे थे आप फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से शिवाजी चट्टोपाध्याय की आवाज में। अभी अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म परिंदा से, आवाज आशा भोसले और सुरेश वाडकर की।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म सदमा से सुरेश अटकर की आवाज में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म तुम बिन से, आवाज जगजीत सिंह की।

0: ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म तुम बिन से जगजीत सिंह की आवाज में। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 20

0: विकसित भारत बनाने का।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
0: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के

0: रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नागालैंड के चुमोकेमिटा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की। ये सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था एनईपी 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियों और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वाग्ले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ वाग्ले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। अगली सभा हमारी कल प्रातः 5:53 पर आरंभ होगी। तब तक आज्ञा दीजिए रेडियो शबाना परवीन को। शुभ रात्रि, शुभ खैर, जय हिंद।